0: see a lot of BJP leaders and Sarpanch leaders are on the way. They are discussing with me and my party president and various leaders. I have authorized all the district ministers also and the district office bearers also to just make a list of all of them. So who believes in our ideology, who believes with the party high command, Rahul ji, Kharge ji and all of us, Siddaramaiah ji, we all will work together. We'll give a space to them. You know how many of them we have accommodated in various capacities, we'll accommodate them. And we'll work together. This country is very much important. Who said Ganesh Utsava is going on, they will do it. Simply they are telling, they are trying to criminalize it. We will not do it.
1: देखिए कुछ सांकेतिक चीजें भी होती हैं. आप ने देखा ना, जैसे यूएई और ईरान की बातचीत ब्रिक्स में हुई कि नहीं हुई. वहां युद्ध भी हो रहा है, आपस की तो दूरियां भी हैं, कष्ट भी है एक दूसरे से, लेकिन बातचीत तो करी है. और बातचीत में कुछ सकारात्मक जो संदेश मिले हैं, जो संकेत मिले हैं, उनका भी सबने स्वागत किया है. तो ऐसा होता है जब कहीं पर अनबन हो जाती है और हम लोगों को एक दूसरे से कुछ कारणवश हमको दूरी बनानी पड़ती है, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो सब्सटेंटिव होती हैं, कुछ सांकेतिक होती हैं. लेकिन संदेश देने की आवश्यकता होती है कि संदेश कैसे दिया जाए. अब ये अगर क्रिकेटिंग बॉडी ने ये माना है, ये स्वीकार किया है कि इसको संदेश देने की आवश्यकता है और हम ऐसे संदेश देंगे, तो उस पर और क्या कहा जा सकता है. यही कहा जा सकता है कि उनका अपना निर्णय है और उचित निर्णय होगा, सोच समझ के किया होगा.

0: And our top focus is on the Gurugram hit and run case. Now, Gurugram victim Sia's first video statement is out. Victim biker Sia has slammed the goon Gurugram driver. Sia shows India Today exclusive interview with the driver, Kalyan Besla. And she says that car intentionally changed lanes and the car chased her and swerved to hit her. And she also rubbished the bikes were changing speed charge, which was actually claimed by the accused Kalyan Besla, speaking exclusively with India Today. And Sia has also slammed the driver, asking, "Why did you follow me?" And she has also rubbished the claim that driver did not know that a woman was riding, because this is what Kalyan Besla has claimed. He said that he did not know that it was a woman driver who was driving the bike. And he has also claimed that the bikers were, in fact, changing speeds and were overtaking his car. These are the claims which have been made by the accused. And now Sia, the victim, has rubbished all these claims, saying that the driver did know that it was a woman who was riding the bike and they hit her intentionally. And she has also claimed that she has long hair and it was evident that a woman was riding the bike. And she has also talked about the video, and she has asked that, is that video not enough proof? So, dramatic video of the Gurugram hit and run going viral. It is on India Today, and India Today exclusively also tracked down the accused Kalyan Besla and spoke with him, where he has made contradictory claims, but now the victim herself has issued the statement and has rubbished those claims made by the accused. Listen in.
1: Let's hear this and उसके बाद मैं बताती हूँ फिर चीजें।
2: बहुत जोर जोर से लेके कई बार, फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे खींच कर रहे पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं मैंने कर रहा, मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी, ये 22-23 जने थे टोटल, इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई, दो क्यों दिखा रहे, दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा, दिखाओ ना उसको, फ्रेंड को, नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में, तो कहने का मतलब ये है, मैं उस लड़की के लिए मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ वैसे।
1: ये इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे। वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें। और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने ऑब्वियसली, मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल हैं, मेरी छोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला। एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे और वो दो वीडियो ही क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए कि दो वीडियो इनफ नहीं है।
0: And my colleague Himanshu Mishra is now joining us on this story. Himanshu, India Today ne jo accused hai Kalyan Besla, usse bhi baat kari, uska bhi jo version tha wo samne aaya, aur ab Sia ne apna statement jari kiya hai. Sare jo claims lagaye gaye, jo bataye gaye Kalyan Besla ki taraf se, un sabko kharij karte hue kaha hai ki ye sarasar jhoot hai. Aur sabse bada sawal jo uthaya hai Sia ne, ki agar aapne galti se takkar maar di, agar aapko pata nahi tha ki kaun tha aur aapne galti se takkar mari, to aap ruke kyun nahi madad ke liye?
3: देखिए, इस पूरे मामले में आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि कंप्लेन फाइल कर दी गई है जो सिया के एडवोकेट हैं उनकी तरफ से गुड़गांव पुलिस के सामने, और गुड़गांव पुलिस अब कोशिश कर रही है जल्द से जल्द जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं सिया के द्वारा, उस ड्राइवर तक पहुंचने के लिए, उस कार ड्राइवर तक पहुंचने के लिए। और एक बार जब स्टेटमेंट दर्ज होगा, देखिए अब पुलिस के पास दोनों तरफ का स्टेटमेंट क्लियर है, अब पुलिस के पास है, पुलिस पूरा रूट वीडियोस लेगी। भले ही वो जो ड्राइवर क्लेम कर रहे हैं कि पूरा वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ दो वीडियो इस पूरे मामले के सामने लाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस, जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी अंजलि, तो पूरा सीक्वेंस देखेगी, शुरुआत से जो जो क्लेम किया गया है ड्राइवर की तरफ से और जो सिया की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पूरे वीडियो सीक्वेंस को देखेगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें सिया को कार से टक्कर मारी गई और वो सड़क पे गिरती है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पे जब कभी ऐसा अगर सिचुएशन बनती है, इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके के क्लेम्स होते हैं, तो ऐसे मामले में पुलिस एक्सपर्ट की भी सलाह लेती है। तो अब देखना ये होगा कि जब पूरी जांच की जाएगी, पूरे सीक्वेंस की जांच की जाएगी, तो क्या कुछ पुलिस के हाथ लगते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वीडियो वायरल है, उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से कार अचानक से एकदम से लेफ्ट की तरफ लेती है, वो आगे की तरफ जा रही थी किया, और एकदम से लेफ्ट लेती है, उनको टक्कर मारते हुए आगे चली जाती है। वहां पर आगे रेड लाइट पर दूसरा बाइकर पहुंचता है, वहां पर उनको रोकता है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से लेफ्ट टर्न लेकर भाग जाते हैं। बताया गया उनकी तरफ से क्लेम कि अगर वो रुकते तो उनके साथ मारपीट हो सकती थी, यानी वो ये जानते थे कि इनके साथ और भी लोग हैं। तो किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ, हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन दो चीजें जिन्हें झुठलाई नहीं जा सकती हैं, वो ये जो टक्कर मारना और टक्कर मार के मौके से निकल जाना। बस गनीमत हम इतना कह सकते हैं अंजलि यहाँ पर कि सिया को गंभीर चोट नहीं आई, वरना दोनों गाड़ियां, उनकी भी बाइक ठीक ठाक स्पीड में थी, कार भी आती है और हिट करके चली जाती है। जी
0: जी हिमांशु, हमारे साथ बने रहिए। सो दैट्स द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन आफ्टर इंडिया टुडे स्पोक विद कल्याण बैसला, द अक्यूज्ड इन दिस केस। नाउ द विक्टिम सिया हैज कम आउट विद अ स्टेटमेंट रबिशिंग ऑल द क्लेम्स दैट हैव बीन मेड बाय द अक्यूज्ड, दैट ही डिड नॉट नो दैट इट वाज अ वुमन ड्राइवर वाज ड्राइविंग द बाइक एंड दैट इट वाज नॉट इंटेंशनल एंड दैट ही ऑल्सो क्लेम दैट इट वाज द बाइकर्स फॉल्ट एंड नॉट हिज फॉल्ट। सम मोर न्यूज कमिंग इन। In fact, India Today has traced the Gurugram rogue driver who everyone is trying to trace. For the first time, the man accused of hitting a woman biker in Gurugram has spoken exclusively to India Today. Kalyan Besla denies deliberately ramming into Sia. Kalyan Besla claims that the bikers repeatedly overtook his car, moved ahead and then slowed down. He says that the collision happened when the motorcycle turned without looking into the car's mirror, and he insists that he did not hit the biker intentionally. He says that the viral videos do not show the complete sequence and asks everyone to check the CCTV images. The accused also claims that he did not know a woman was riding the motorcycle when the collision happened. He says that he is sorry that the woman was injured but maintains that it was a mistake, not a deliberate act. In fact, Besla also denies having any previous criminal case against him. His version, however, sharply differs from the woman rider's allegation that the car followed her and was being driven aggressively before hitting the bike. This is India Today's mega exclusive. The accused spoke only to India Today. Listen in.
4: जान से उस वीडियो को देखना। इस तरह कस्टमाइज कल की बात है। कल्ली डाल देते ना साथ साथ। अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी गलती है, ठीक है जी, हमने मार लग गई, हमसे रोड पे लग जाती, चलो तहसीलदार के ही बता देता हूँ। वो पीछे से आ रहे थे, आगे ले गए, ठीक है जी, मैं आगे आ गया। अब जो वीडियो हो जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं उससे। मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की पे ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक। मैंने उससे ये बोला था, और उसके साइड में लड़का, दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं, पूरी वीडियो डलवाऊँ ना जी।
5: अच्छा एक बात बताइए,
4: मैंने बोला था, पहले सुन लो मेरी बात, मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार, मैंने कि हमारे हमें टीच मत करो, बार बार टीच मत करो, लग जाएगी। अच्छा जी ठीक है, फिर मैंने कहा जाने दे। फिर वो, फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था, तो वो मेरे आगे कैसा है आप सोचो ना, जब मैं यूँ कह रहे थे कि निकल गया था भैंस, आप वीडियो में देखना, मैं निकल गया, अच्छा फिर आगे आगे चलो कोई नहीं। वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है। इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है साइड में, उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता। अच्छा सुनो, आप इनको देखना, मैं जो मैम है, ठीक है, इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, अब प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हैं। उस साइड वाली सफ़ेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी और वहाँ यू टर्न था, मैं यू टर्न के चक्कर में।
5: अच्छा,
4: अब जाती है थोड़ा सा। अच्छा,
5: अब नॉर्मली
4: लग गई मुझे तो। क्यों
5: ड्राइविंग में ये सिखाया जाता है कि अगर चलो हिट भी होगी कोई बात नहीं, सड़क पे चलते हैं।
4: मेरी गाड़ियों में कई बार लग ली।
5: आपको लगता नहीं कि आपको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए?
4: बताता हूँ उसका लिए, बिल्कुल सही जवाब। मैंने भाई से बोला, मैंने क्या रुक जाना चाहिए, ठीक है। मुझे दुख हुआ बड़ा उस लड़की को, देखो मैंने जानता, मुझे जमीन पता लड़की हो, उसने जब हेलमेट टच किया था तो मैंने कहा ओके वेरी गुड, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आप मुझे मंदिर में घुसा लो।
5: सुनो, आप सवाल वही है कि आपको रुकना नहीं चाहिए।
4: अच्छा, रुकने की बताता हूँ मैं। मैंने जैसे आगे बढ़े, वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पर लग रहे। मैं 22 जने, मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे? फिर भी मैंने बत्ती पर रोकी, मैंने शीशा डाउन किया। मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात। मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे समझ रहे हो मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने, वो लड़के ने, कि भाई फायदा नहीं है रुकने में, निकल लो।
5: अच्छा,
4: समझ रहे हो, ये बात थी। अरे मैं क्यों भागता भाई, मैं तो खुद हेल्प करता हूँ लोगों के।
5: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया या आपने अपनी बात क्लेरिफाई करने की कोशिश की?
4: मैंने अपने DSP साहब, मैंने उनसे बोला कि सर मेरे क्या नाम है, वीडियो डाली उन्होंने ऐसे एडिट करके, छोटे छोटे क्लिप जोड़ के मैं उसमें विलेन दिखा रखा हूँ, विक्टिम कार्ड वो है, विक्टिम कार्ड खेल रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उसके लिए किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा, अच्छी लड़की, मेरी गलती लगा लो, चलो मुझसे लगी बड़ी गाड़ी, लेकिन ना तो वो बाइकर्स की रोड है भाई, ना कुछ। अच्छा सुनो, मैंने करी है अपने DSP साहब, उनसे बोल दिया मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये सच्चाई है और ये बात, और मैंने कहा इसको हाईलाइट इतना क्यों करा जा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों करा जा रहा है, क्या कुछ पहली बार स्पेशल वो हुआ? क्या मैं, मेरे नाम आज तक एक केस नहीं है, हिट एंड रन का क्या मतलब है सर?
5: अच्छा,
4: मैं पिटता हूँ,
5: पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये बात आपको कब पता लगी?
4: मुझे तो आज ही पता लगी सारी चीज़ें, अगर अभी दोपहर पीछे CIA मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, CBI जा रही है, CIA जा रही है, क्या कर दिया मैंने, मुझसे संपर्क करो ना। और उस बहन जी से मैं बोलता हूँ, उस मैडम जी से, कि आप मुझे बताते, जब पता लग गई थी मुझे बताते, कोई मेरे लिए कुछ वीडियो डाल रहा है, अरे क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी क्या नहीं करी, वो तो मुझे पता।
5: फिलहाल अब आप क्या कहना चाह रहे हैं पुलिस से, क्या कहें?
4: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं,
5: अगर गुड़गांव पुलिस संपर्क करती है या आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुड़गांव पुलिस से?
4: हाँ बिल्कुल, मैंने बोल दिया सर से।
0: And my colleague Himanshu Mishra continues to stay with us. Himanshu, India Today ने ट्रैक डाउन कर लिया अक्यूज को, कल्याण बैसला को। 48 घंटे बीत चुके हैं इस पूरे इंसिडेंट को लेके, लेकिन अभी तक कल्याण बैसला को कस्टडी में नहीं लिया गया। और इस पूरी कॉन्वर्जेशन में हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुना, जिसमें कि वो बताते हैं कि उनकी DSP से क्या बात हुई, तो फिर क्या चैलेंजेस पुलिस फेस कर रही है उन्हें कस्टडी में लेने के लिए?
3: देखिए यहाँ पर अंजलि, जो बात थी कि जो कंप्लेन है, सबसे पहले तो ये वीडियोस वायरल होते हैं, शुरुआत में पुलिस को कंप्लेन नहीं दी गई थी, और उसके बाद जो जानकारी है कि कल जो सिया के एडवोकेट हैं, कल जाकर के उन्होंने गुड़गांव पुलिस को इस पूरे मामले में कंप्लेन दी है। अब एक बार जब पुलिस को कंप्लेन मिली है, तो उसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है, जो तमाम आरोप लगाए गए थे उनके आधार पर। और FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने इसमें जांच शुरू की, और साथ ही साथ कल्याण बैसला की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि जब एक बार कल्याण बैसला को पुलिस पकड़ती है, तो जो पूरे वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का, जो महत्वपूर्ण है, जिसमें एक्सीडेंट होता हुआ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से गाड़ी एकदम से लेफ्ट की तरफ जाती है, और वहां पर सिया बाइक पर जा रही थी, उसको टक्कर मारते हुए वो आगे चली जाती है। तो ये जो पूरा सिक्वेंस है, इसके पहले आपको मैंने पिंच किया, मैंने आपको पिंच किया, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि क्या आपने, कल्याण बैसला ने जानबूझकर सिया को टक्कर मारी? तो जो वीडियो सिक्वेंस है उसको देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ, उन्होंने जानबूझकर गाड़ी साइड की और टक्कर मारी। वजह कोई भी हो, इस तरीके से चोट पहुंचाना, इस तरीके से, और वो भी स्पीड में, आप सोचिए कि उस वक्त जिस तरीके से टक्कर लगी थी, उसमें कितनी भी गंभीर चोट लग सकती थी, वो खतरनाक हो सकता था। और इसके लिए निश्चित रूप से पुलिस को कार्रवाई, यहाँ पर जो विक्टिम्स की तरफ से मांग है कि पुलिस को निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करनी होगी। अब देखना ये होगा कि आज का दिन, जैसा हमने कहा था कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि कल शाम पुलिस ने FIR की है जब कंप्लेन मिली है उसके बाद, और उसके तुरंत बाद से पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेना शुरू किया है। जानकारी ये है कि पुलिस ने टीम्स बनाई है और टीम बना करके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जी
0: जी हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो द हंट मैन हंट इज ऑन टू नैब द अक्यूज, बट इट्स बीन 48 आवर्स एंड द गुरुग्राम कॉप्स हैव नॉट बीन एबल टू नैब दिस अक्यूज। ऑल्दो इंडिया टुडे ट्रैक डाउन द अक्यूज, ही स्पोक एक्सक्लूसिवली विद इंडिया टुडे एंड ही हैज मेड सम क्लेम्स व्हिच हैव बीन एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली रबिश बाय द विक्टिम। So a young woman biker chased on a city road, rammed by a speeding car and left injured. The shocking incident on Gurugram's golf course road has triggered a string of demands for strict action against the accused driver. The victim's family visited the Gurugram Sector 56 police station, alleging that the incident was an attempt to kill her and not just a hit and run case. The Suomoto case by cops was registered under Section 125 of the Bhartiya Nyaya Sanhita for an act endangering life or personal safety and Section 281 for rash driving. The victim's father, Roshan Chauhan, has spoken with India Today, calling the driver's mindset criminal and disgusting. He said that the incident was deeply worrying and warned that such behavior could normalize threatening women. India Today tracked the driver, Kalyan Besla, who remains brazen. The driver has claimed that the bikers were riding erratically and that he was only asking the victim to ride safely. He has blamed the victim, alleging that the video was edited to portray him in a bad light.
6: यूजुअली जैसा होता है कि भाई संडे राइड पे हम निकले, उतने में पीछे से गाड़ी आती है, कार वाला जो सियाज वाला जो भी है ये आता है, हॉर्न मारता है, ठीक है। अब हमें सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता, क्या है क्या नहीं हुआ, उतने में गाड़ी आगे निकाल लेता है, ड्यूक वाला अपनी साइड में कर लेता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल सी कोई पीछे से हॉर्न मारेगा तो बाइक वाला साइड में ही जाएगा, तो वो भी नॉर्मली साइड में चला गया। उतने में भाई आते हैं, अभी भाई या जो भी अप्रीले वाले भाई थे वो आते हैं, वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो कि भाई गाड़ी रोक। उस टाइम पे भी हमें कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इतना ही सुनाई दिया था कि भाई गाड़ी रोक, ठीक है। अब उतने में गाड़ी वाला अपनी गाड़ी निकाल लेता है, भगाता हुआ बत्ती तोड़ते हुए वहां से निकल लेता है।
0: And there's another angle in this story. Sia's family, the victim's family, has met with the cops and Sia's family is seeking attempt to murder charge. The family has submitted a complaint to Gurugram police and the victim has demanded that attempt to murder charge must also be added. In fact, hit and run charge must also be added to the FIR. Sia's father has claimed that the video shows her being dragged and Sia is still traumatized. This is what the family is claiming. So police now to record Sia's statement and the manhunt is on for accused Kalyan Besla.
7: तो उसके अंदर कोई नॉर्मल धाराएं ना लगाएं, क्योंकि ये कोई हल्की बात नहीं है। चलो वो तो भगवान का शुक्र था कि हमारी बेटी को कुछ हुआ नहीं, जिस प्रकार से इतनी दूर घसीटती हुई उसकी बाइक गई है, वो गिरी है भाई रोड के ऊपर गिरी है, ये जानबूझ के एक प्लान करके मारा गया हिट है। जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो उन पे होनी चाहिए और वही धारा लगनी चाहिए।
8: हमने हरासमेंट का अटेम्प्ट मर्डर का भी इसमें बोला है और इसमें कंप्लेंट दी है, उसमें भी यही बताया कि जो वीडियो है वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उस तरीके का कोई ऐसा हिट एंड रन का नहीं है, ये इंटेंशनली मारा गया है, इंटेंशनली ऐसे इस तरीके से हिट किया गया है और होने को कुछ भी हो सकते हैं। जब किसी को मारा जाता है और वो बच जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई ये तो गलती से लगा है, ऐसा भी नहीं है कि जब वो मर जाएगा तभी कंप्लेंट होगी।
0: So the family has made a big claim that this was intentional. This was intentional hit and run case, and they are now demanding that the charges must be increased. There should be attempt to murder and hit and run charges that must be added to the FIR. So that is the claim by the family. The family is also claiming that how the victim Sia is still traumatized. Meanwhile, there are differing versions that are coming to the fore, be it the accused and be it the victim. But the big question still remains, was the hit intentional? Because that is what the matter is based on, if the hit was intentional or not. let's take a look at the key developments in this case. So there are no tough charges in the FIR against the accused. VNS Section 125, Negligent Act, that puts human life in danger, and it is still bailable. Then comes the VNS Section 281, Rash Driving Causing Injury to a Person. This is also a bailable charge, and this is according to Gurugram Police. And that is the reason why the family is now demanding more charges must be added, attempt to murder and hit and run. Charges must be added to the FIR. Now, there's no name of accused in FIR. Now, that's very crucial. So, the name of the accused, Kalyan Besla, is not even mentioned in the FIR. And the name in the FIR says unknown person. So, that's also another crucial development, and which raises some very serious questions on the Gurugram police. Is this an attempt to shield the accused in this case? Some more news coming in. Relief for India's UPI users. UPI payments of up to 2,000 rupees were already free for users. Now the government has moved to ensure that banks and payment system providers cannot impose any direct or indirect charges on these transactions. The centre has formally notified the change under the Payment and Settlement System Act. This means no levy, no fee and no additional charge can be imposed on UPI transactions up to 2,000 rupees, whether you are making or receiving the payment. The government has also barred charges on RuPay-powered debit card payments. With a large majority of UPI transactions below the 2,000 threshold, the move provides a major breather to millions of digital payment users. Person-to-person UPI payments also remain free. So the government's move comes amid recent concerns and claims about possible charges on UPI payments. My colleague Karishma Sudani is now joining us with more details on this. Karishma, relief for the UPI users, but help us understand what happens beyond the 2,000 rupees threshold.
9: Well, all the backdrop of this is the imposition of MDR, which is the merchant discount rate, which has been on the talk of the town for past 2 months, for which the legal amendment was also made. Now, government's idea and message is simple and clear that large entities dealing with large transactions, say firms involved with an annual turnover of 4 crore or more, should pay basic MDR so that the government does not have to continue spending from its budget. And say big e-commerce entities who deal on these volume of transactions above rupees 2,000 via UPI could afford this MDR because they've already been paying on credit cards and debit cards to the banks. Government just wants to very clearly simplify and convey to a common user that until rupees 2,000, there are going to be no charges that the transactions will withhold. And even above rupees 2,000, any individual transactions will not have any additional charge. These are only going to be for large entities.
0: All right, Karishma, thank you for those details and for that context. So it's a relief for the UPI users because any payments below or 2,000 rupees or up to 2,000 rupees will not be charged, and people-to-people payments will also not be charged. And in fact, if you are paying it to business, that will also not be charged, but anything beyond that may be charged. So that's the amendment that is coming. The centre has formally notified this change under the Payment and Settlement Systems Act. This means no levy, no fee and no additional charge can be imposed on UPI transactions up to 2,000 rupees, whether you are making or receiving the payment. And now shifting focus, some more news coming in. Home Minister Amit Shah's UCC promises put JDU in a spot. BJP ally JDU opposes uniform law in Bihar. JDU says that Nitish Kumar made JDU's stance clear on UCC and UCC should be introduced only after talks. This is what the JDU is saying. And the JDU has also said that no community should be heard should be hurt with the implementation of the UCC. The JDU working president Sanjay Jha will be meeting Home Minister Amit Shah. Meanwhile, the RJD is demanding more clarity from the JDU. So the JDU has opposed the implementation of the UCC in Bihar. This comes after Home Minister Amit Shah had promised that all the NDA states will have UCC implemented by 2029. But now the JDU is saying that no community should be hurt because of the implementation. And in fact, the working president will also be meeting Home Minister Amit Shah on this.
10: Uniform Civil Code ke masle par Kendriya Grih Mantri Shri Amit Shah ji se Janata Dal United ke Rashtriya Karyakari Adhyaksh Shri Sanjay Kumar Jha ji shighr hi baatchit karenge. Is sambandh mein Sanjay Jha ji ne स्वयं ये जानकारी दी दी है.
0: So that is the concern that has been raised by the JDU, and my colleague Rohit Singh is now joining us with more details on this. Rohit, what are the concerns and that have been raised by JDU? Why is the JDU not comfortable with the implementation of UCC in Bihar?
11: Well, see, JDU claims to be a secular party in Bihar and has been working for all the communities and castes in the last 20 years when Nitish Kumar was the chief minister. But now when Amit Shah has in fact declared that UCC will be implemented in all the states before 2029 Lok Sabha elections, and this comment has not gone down well with the JDU and leaders like Shyam Rajak has reiterated that the party does not support the implementation of UCC in Bihar, and despite Amit Shah's announcement. And this has triggered, a debate that whether there was a difference of opinion between the two alliance partners of Bihar, that's the BJP and the JDU. And trying to sort out some differences, yesterday we saw that one of the senior leaders of the party, Rajiv Ranjan, he said that soon the party working president Sanjay Jha will be speaking to the Home Minister regarding the UCC thing, and then they will come out with their opinion as to whether they support UCC in Bihar or not. Back to you.
0: All right, Rohit, thank you for those details. So the JDU working president will be meeting Home Minister Amit Shah and will discuss the implementation of UCC in Bihar. So the centre's push for UCC has triggered fresh differences within the NDA, with the BJP's UCC agenda facing a cautious response from key allies in Bihar. While the Home Minister says that UCC will be implemented across all 21 NDA-ruled states by 2029, JDU has reiterated that it wants wider consultations before taking a final position. The party has stressed that no community should feel hurt and has also pointed to Nitish Kumar's earlier communication to the Law Commission as its guiding position. Meanwhile, JDU working president Sanjay Jha is expected to meet Amit Shah soon to convey the party's position. LJP RV chief Chirag Paswan has also called for greater consultation, arguing that India's social fabric is diverse. In fact, he has also sought the UCC draft be made public and said extensive discussions with stakeholders are necessary before his party finalizes its stand. Bihar opposition leader Tejasvi Yadav, on the other hand, has attacked both NDA allies, demanding that JDU and Chirag Paswan clearly spell out their positions on the UCC.
12: Janata Dal United se puchiye unka kya stand hai. ये तो उन लोग के नेताओं से पूछना चाहिए ना कि उनका क्या स्टैंड है.
13: चिराग और
12: देखिए गोल गोल बात करते हैं लोग, गोल गोल बात करते हैं, एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए.
14: यूसीसी ला के लोग यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी की कहाँ कर रहे हैं काम? यूसीसी ला के तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, मुसलमानों के हुकूक को छीनने की कोशिश कर रही है. 180 मुसलमानों के ऊपर अपना कानून डालने की बात हो रही है. ये हिंदू लॉ आपको इम्प्लीमेंट कर दे रहा है, ये इश्क नीयत है आपकी. लेकिन यूसीसी असंवैधानिक है, हम इसका अपोज करते थे, करते रहेंगे.
0: Let's now understand the nine ways in which UCC is Nitish Kumar's nightmare. It is a nightmare for the JDU. So Nitish needs to protect his secular credentials, and that is one of the biggest reasons why the JDU does not seem to be that comfortable with the implementation of the UCC. The UCC risks alienating the JDU Muslim vote bank. So the section of Muslims remain crucial to JDU base, and that is why we have statements like no Kapati particular community should be hurt because of the implementation of UCC. That is from the JDU side. Bihar's religious diversity makes UCC extremely sensitive, and hence the leaders are saying that there should be wider consultation before the implementation. The JDU fears political cost of UCC in Bihar, and hence it is raising those concerns. It is demanding that there should be consultations, there should be talks, and the JDU working president will be meeting the Home Minister very soon on this. Nitish Kumar wants to stay acceptable beyond BJP's core ideology, which largely focuses on the majority community. But the JDU has its large voter base in the minorities, and hence the JDU is very cautious with the implementation of UCC. Consensus is Nitish's political escape route on UCC. In fact, JDU is trying to have it both ways. It is trying to back NDA in Delhi, but also avoid paying the poll price in Bihar. So let's understand more about what is the One Nation, One Law. So complete ban on polygamy. This is what comes under UCC. So all marriages restricted to a single spouse. You cannot have multiple partners under UCC. Uniform marriage age for all. Same legal marriage age applies across communities. No matter which community you come from, there will be one legal age, and that will be applicable to all the religions under UCC. No underage marriage. So marriages below the legal age are not permitted, no matter which community you hail from. Common personal laws for all. So one civil law to govern personal matters for all. There will be no Sharia law or no particular community law. There will be one common law, and that will govern the personal matters for all the communities. Registration of live-in relationships is a must under UCC. So live-in couples will now have to register their relationship once UCC is implemented. So this is not necessary without UCC, but once UCC is implemented, all the live-in couples will have to register their relationship. Gender equal inheritance rights. So men, women will have equal rights to inherit property under the Uniform Civil Code, and exempts scheduled tribes from its ambit. So the UCC will not apply to scheduled tribes. That is the only exception. The rules will not govern the matters of scheduled tribes. And now shifting focus, some more news coming in. This is regarding the crucial Rajasthan civic poll verdict. BJP wins 41% of seats, gains 5%, but denied sweep. Congress wins 35% seats, loses 5%, but gains in key belts. BJP wins nearly 4,200 seats. Congress gets 3,600 seats over. 3,600 seats. Independents win a massive mandate in the chief minister's turf. Independents win massive 2,200 seats. BJP Congress to need independents to form the civic board. So the key takeaway is that local issues and candidates override party loyalty. So independents can emerge as the key makers because 2,200 seats have been won by the independents. And my colleague Sharad Kumar is now joining us with more details on this. Sharad, the BJP did have an edge in the civic polls, but it cannot be called a clean sweep, whereas the Congress has lost ground but has gained in significant seats. But it is the independents that have stolen the show this time.
13: बिल्कुल, इस बार जो निर्दलीय हैं वो बड़ी संख्या में जीते हैं, करीब 27% जीते हैं, 27% वोट लेकर गए हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी आप पिछले किसी भी चुनाव की तुलना पिछले चुनाव से होती है। पिछली बार प्रतिबंध से पहले यहाँ 196 सीट थी, वहां पर शहरों में क्लियर स्वीप था कांग्रेस का, 125 वार्ड थे और केवल बीजेपी के 61 वार्ड थे, 61 वार्ड थे। बीजेपी ने अपने परफॉर्मेंस को डबल किया है और कांग्रेस डबल घटी है। हम लोग देख रहे हैं इस प्रदर्शन को, बीजेपी और कांग्रेस कितनी है। कांग्रेस राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां शहरों में भी मजबूत रहती है। पिछली बार कोटा में पूरे दोनों वार्ड में कांग्रेस जीती थी, जयपुर में कांग्रेस जीती थी, जोधपुर में कांग्रेस जीती थी। तो कांग्रेस यहाँ पर शहरों में मजबूत रही है। पिछली बार की तुलना में भारी हार हुई है कांग्रेस की, मगर कांग्रेस उस नतीजे को दिखा रही है कि देखिए, हम बीजेपी के पास आसपास पहुंचे हुए हैं। ये नहीं बताइए कि पिछली बार क्लीन स्वीप था कांग्रेस का, जहां से पूरी तरह से लूज कर चुकी है। उस लिहाज से देखें तो भजन लाल शर्मा के लिए बड़ी उपलब्धि है पिछले चुनाव से अगर देखें तो। मगर जिस तरह से शहरों में सरकार बड़े शहरों में बननी चाहिए थी, वहां पर अजमेर में जहां से 36 साल का बच्चा सो था वो टूटा है, बीकानेर हाथ से गया है, और अलवर में अगर झूल बैठ के हैं, जोधपुर में मामला निर्दलियों पर है। तो बड़े शहरों में जो बड़े फैक्टर थे यूजीसी का, उसका असर दिखाई दिया है। निर्दलीय संख्या में, बड़ी संख्या में बीजेपी के जो वोटर हैं वो वोट डाल के आए हैं। टूटी हुई सड़कों का भी असर दिखाई दिया है। मगर दोनों बार की तुलना करें, अगर पिछली बार के 19 से लेकर और 23 की तुलना करें और अभी बीजेपी सरकार की तुलना करें कांग्रेस और बीजेपी में, तो अब बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई है पिछली बार के परिणाम के ऊपर। इसीलिए भजन लाल शर्मा हो या बीजेपी हो, अपनी खुशी मना रही है। लेकिन ये बड़ी बात ये है कि निर्दलीय जो 27% वोट लेकर गए हैं और कई नगर निगम और नगर पालिका में निर्दलीय फैक्टर हो गए हैं। अब देखिए बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जो हैं, अर्जुन राम मेघवाल वहां बीकानेर में कांग्रेस जीती है, गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर जोधपुर में बराबरी का मामला छूटा है, भागीरथ चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अजमेर में बीजेपी पीछे रही है, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री वहां अलवर में मामला फंसा हुआ है। तो जो केंद्र के बड़े नेता थे वहां पर ये सारे मामले फंस गए हैं। केवल कोटा में जहां पर क्लीन स्वीप किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के यहाँ, बाकी बड़े शहरों में बीजेपी फंसी है, लेकिन छोटे जगहों पर ये निकले हैं। अब कांग्रेस में जहां अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, वहां लोकसभा जोधपुर में फंसा हुआ है, सरदारपुर और उनके विधानसभा में पीछे रही है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में, वहां पर भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, निर्दलीय के भरोसे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली मालाखेड़ा में, वहां निर्दलीय के भरोसे हैं। केवल सचिन पायलट के यहाँ टोंक में स्पष्ट बहुमत मिला है। तो बड़े नेताओं के यहाँ, बड़े नेता कांग्रेस के और बीजेपी के यहाँ, दोनों ने ही जनता ने उन्हें क्लियर मैंडेट नहीं दिया है। हाँ, बीजेपी के लिए बड़े शहर जरूर एक परेशानी के सबब है, वो एक बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा था जब दिया कुमारी भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने निकल रही थी, बड़े नेता राजपूत बड़े नेता, तो राजपूत वोटर जो है या अगड़ी जातियों के वोटर जो यूजीसी के लेकर नारे लगा रहे थे, और भजन लाल शर्मा यहाँ बीजेपी में भी दो गुट है, वसुंधरा राजे गुट की भी एक भूमिका रही है इसमें बड़ी, हालांकि झालावाड़ में भी उनकी बड़ी हार हुई है। लेकिन बड़ा टेक अवे इस चुनाव से यही है कि कांग्रेस जो निर्दलियों का वोट ले सकती थी, अगर सरकार से नाराज थे वोटर तो वो उनके पास नहीं जाकर वो निर्दलियों के पास गए हैं, और क्लियर जो मेजोरिटी है देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा निकायों में, नगर पालिकाओं में निर्दलियों के पास है।
0: जी शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो दैट्स द वर्डिक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द की टेकअवेज ऑफ द राजस्थान सिविक पोल। सो द बीजेपी हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी। बीजेपी हैज 14,179 वोट्स, विच इज अहेड ऑफ कांग्रेस पार्टी 3,613, मेकिंग इट द बिगेस्ट पार्टी इन द राजस्थान सिविक पोल्स। बट इट इज द इंडिपेंडेंट्स दैट होल्ड द की। इंडिपेंडेंट्स हैव वन 2,273 wards, giving them significant influence in forming local boards. And there's no BJP sweep, although BJP has the largest numbers, but it cannot be called a sweep. BJP's losses in places like Jhalawar, Baran, Bharatpur, Pali and Ajmer show the verdict was not one-sided. And mind you, these were the strongholds of the BJP. Congress party has gained some ground. Congress has secured important wins in Ajmer, Jhalawar, Pali, showing signs of revival. These were the strongholds of the BJP. But overall, if we talk about the Congress performance, the performance has gone down. But yes, it has gained in some key seats. And the smaller parties have in fact also gained. So the Aam Aadmi Party and the CPIM have made notable gains, showing space for alternatives beyond BJP and the Congress in Rajasthan. The local issues matter. So the strong independent performance suggests that the local candidates and the local issues influence the voters in Rajasthan heavily. So the verdict is that BJP has the numbers, the Congress has some momentum, but it is the independents that have the leverage in Rajasthan civic polls. And It will also have an impact on the 2028 assembly elections because the results signal challenges for the BJP, while Congress may convert its local gains into a broader statewide advantage. But this time, it is the independents that have stolen the show in the civic polls in Rajasthan. And some more news coming in on the Rajasthan civic poll verdict. There's a big war of words that has now erupted. Prime Minister Modi lauded BJP's victory in the polls, attacking jhoot ki goonj. And that was the jibe by Prime Minister Modi, who said that truth trumps jhoot ki goonj. And a double engine government strong in Rajasthan. Meanwhile, the Congress has hit back at Prime Minister Modi's chest thumping. The Congress has said that BJP secured only 40.8% of ward seats. Vote share difference between the BJP and Congress is merely 0.94%. BJP wins 41% of seats, gains 5%, but denied sweep. The Congress, on the other hand, wins 35% seats, but loses 5% and gains in key belts. So the BJP wins nearly 4,200 seats. The Congress gets 3,600 seats nearly. But what is important to note is that the vote share difference is not much between the BJP and the Congress, which is merely 0.94%. So the takeaway is that it is the BJP, in fact, which has won 41% of seats and it has gained. So the vote share of the BJP has, in fact, increased by 5%. But of course, it has been denied a clean sweep in Rajasthan civic polls. And it, in fact, it is the Congress performance that has gone down. It has won 35% of seats, although it is claiming that the vote share difference is not much between the BJP and the Congress. But if we take a look at the overall performance, the Congress performance has, in fact, gone down and it has lost 5%. And on the other hand, it has, though, gained in key belts, but the overall performance has gone down, whereas the BJP, it is the BJP that has made gains in Rajasthan civic polls. And now shifting focus, amid criticism over his UK visit, Tamil Nadu Chief Minister Vijay has announced major investment commitments for the state. The Tamil Nadu government has signed investment commitments worth around 12,300 crore rupees, expected to create more than 9,400 jobs. The biggest deal is with Samvardhana Madhusan International, which has committed 11,000 crore rupees over 5 years for design, engineering, manufacturing, assembly and logistics facilities. The project is expected to create nearly 7,000 jobs. Ernst & Young has committed another 1,000 crore rupees for a global capability center with more than 2,000 jobs expected. But the opposition is not impressed. The AIADMK has questioned why Chief Minister Vijay travelled all the way to the UK to secure an investment from a company based out of Noida. It has also accused the Chief Minister of wasting the taxpayers' money. The BJP also slammed Chief Minister Vijay over his UK trip and questioned whether he had really gone there to attract investments. The party also questioned the people who accompanied Chief Minister Vijay, alleging that they travelled at the taxpayers' expense.
15: Which is headquartered in Noida, which was incorporated 40 years ago in 1986 with Sumitomo Corporation in Japan. Vijay goes all the way to UK and signs MOU deals with the same company seeking investments. This is nothing but the waste of public money, like how MK Stalin used to go all out to different countries on excursion and sign MOUs for those companies which were already present and doing operations in India. The same trait is what Mr. Vijay is following. This is nothing but excursion and fun activities at the public monies at the taxpayers' expense.
0: So let's take a look at the MOUs that have been signed, the investment that the TVK government, the chief minister, is claiming that he's attracted during his UK visit. So the total investment that has been attracted, that has been committed, is 12,300 crore rupees, out of which... and which will also attract 9,400 plus jobs that are also expected because of this investment in Tamil Nadu. Now, out of this 12,300, 11,000 crore has been committed by Madhusan International. Auto and advanced manufacturing will be, opportunities will be there in Tamil Nadu. 1,000 crore has been committed by Ernst & Young. It is a global capability center. And 300 crore has been committed by Wilson Power for electrical manufacturing. And now shifting focus, a fresh political twist in the ongoing TMC versus Rebel saga. One of the Rebel MPs, Jagdish Chandra Barma Basunia, has claimed that a majority of the leaders who broke ranks with Mamata Banerjee's party and joined the NCPI will soon switch over to the BJP. The Cooch Behar MP claims that 17 of the 20 MPs who announced merger with NCPI in June will cross over either before or after Durga Puja. He says that the remaining three Muslim MPs, Yusuf Pathan, Khalilur Rahman and Abu Tahir Khan, will stay with the NCPI but continue to support the NDA. The BJP, however, is distancing itself from the claim. Bengal BJP Chief Shamik Bhattacharya says that there have been no talks on inducting the rebel MPs, insisting that it

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
2: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
6: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: And we now get you the latest on the Gurugram hit and run case. Victim Sia has now issued a video statement. She has reacted to the exclusive interview of the accused with India Today. India Today has been the only channel which has been able to track down the accused and spoke exclusively to the accused. And now the victim has reacted to the claims which were made by the accused. Sia has said that the car intentionally changed lanes. The car chased her, swerved to hit her, and she has rubbished that the bikes were changing speed charge that has been made by the accused, Kalyan Besla. In fact, she has slammed the driver, saying that, "Why did you follow me?" And she has also rubbished the claim that the driver did not know a woman was riding the bike, because this is what Kalyan Besla, the accused, has said, that he did not know that it was a woman who was driving the bike. Sia says that she has long hair and it was evident that a woman was riding the bike. The car swerved to hit Sia's bike, and this dramatic video of the Gurugram hit and run is on India Today. Sia was riding superbike Aprilia RS457. Aprilia 457 cost a whopping 4.5 lakh rupees. And now there are conflicting versions that are emerging. India Today exclusively spoke with the accused. Accused claims that he did not know that it was a woman driver. He's saying that the bikers were in fact changing their speeds, and that is what led to the accident. But on the other hand, now Sia herself has issued a statement rubbishing all the claims which have been made by the accused. Listen in.
1: Let's hear this and उसके बाद मैं बताती हूँ फिर चीजें।
2: बहुत जोर जोर से ले गए कई बार, फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, खींच कर रहे हैं, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं मैंने करें। मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी, ये 22-23 जने थे टोटल। इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई, दो क्यों दिखा रहे, दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा है, दिखाओ ना उसको, फ्रेंड को नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में। तो कहने का मतलब ये है, मैं उस लड़की के लिए, मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ वैसे।
1: ये इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे, और हम इनको पिंच कर रहे थे। वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें। और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने ऑब्वियसली, मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल हैं, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला, एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे और वो दो वीडियो ही क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए कि दो वीडियो इनफ नहीं है।
0: And my colleague Anshul Singh is now joining us on this story with more details on this. Anshul, a very good morning to you. So conflicting versions now emerging. India Today exclusively spoke with the accused also, and now the victim has reacted to the accused version and has completely rubbished all the claims. But the big question that has been raised, and the big question on everybody's mind, is that if Kalyan Besla is claiming that the hit was not intentional, why did he not stop to help the victim?
3: Well, yes, there are three versions that have now come out. The first version is of obviously the victim who claims that this entire accident that had happened was actually not happened by chance, but it happened with due intention that was shown from the side of the accused. The second version is from the side of the accused, where he claims that the bikers were trying to go ahead and disturb him in some way or the other, and he tried to stop from hitting Sia, but there were 22 to 23 bikers who were present over there. He got scared and he fled from the spot. The third version that has come in from the side of the Gurugram police, where the Gurugram police has taken suo motu cognizance of the entire video and has registered a case under sections of rash driving. Now, it is pertinent to note that the victim has still not given any sort of an official complaint to the Gurugram police. If at all the victim in her complaint goes ahead and claims that she was harassed by the said driver, then definitely more serious sections could be added to the FIR, which would demand an immediate arrest. On the other hand, the accused has himself gone ahead and said very, very clearly that whatever happened, he regrets that, and it was not his intention to go ahead and hit Sia in any way or any manner. Now it's up to the Gurugram police to initially go ahead and record the statements of the said accused, and also make sure that the statement of the victim is also is also taken as soon as possible. And post that, the investigation will start, and then eventually it will be clear as to what transpired on that road, because the videos that have come to the fore, these videos are smaller videos. Now, the victim herself is claiming that this entire incident happened over a stretch of a few kilometers. So if that happened, there will be CCTV footages that will be taken and would be looked into from the side of the Gurugram police. And once they are convinced that this was an intentional accident that had happened and the said victim was also being harassed, then very serious sections of the BNS could be added, including harassment against a woman, and also sections of attempt to murder could also be added to the FIR, which would demand an immediate arrest and a non-bailable arrest as well. So it remains to be seen what eventually will transpire once
0: right.
3: the victim goes ahead and gives a complaint in this entire matter to the Gurugram police.
0: All right, Anshul, do stay with us. So, victim Sia has now issued a statement reacting to the accused version and clearly rubbishing all the claims that have been made by the accused driver. Some more news coming in. And India Today has exclusively spoken with the accused driver in this Gurugram hit and run case. India Today has been the only channel to trace the accused. The Gurugram police have also not been able to trace the accused as of yet. He has not been taken into custody despite 48 hours already over after the incident. And now the claims which have been made by the accused. So the accused claims that he did not deliberately hit the bike. And the woman biker, in fact, he also claims that he did not even know that it was a woman who was driving the bike. So Kalyan Basla, the accused, who spoke exclusively with India Today, he has denied deliberately ramming into Sia. And he has also claimed that the bikers repeatedly overtook his car, moved ahead and then slowed down. And he says that the collision happened when the motorcycle turned without looking into the car's mirror. And Besla insists that he did not hit the bikers intentionally. So he says that the viral videos do not show the complete sequence. And he is also asking everyone to check the CCTV visuals. The accused also claims that he did not know that a woman was riding the motorcycle when the collision happened. In fact, he also says that he's sorry that the woman was injured, but maintains that it was a mistake and not a deliberate act. Mesla also denies having any previous criminal case against him. His version, however, sharply differs from the woman rider's allegation that the car followed her and was being driven aggressively before hitting her bike. This is India Today's mega exclusive conversation. The accused has spoken only with India Today. Listen in.
4: ध्यान से उस वीडियो को देखना, इस तरह कस्टमाइज कल की बात है, ये कल ही डाल देते ना साथ साथ। अब अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी गलती है, ठीक है जी, हमने मार लग गई हमसे, रोड पे लग जाती है। चलो अब उसकी ड्राइवरी बता देता हूँ, वो पीछे से आ रहे थे, आगे ले गए, ठीक है जी, मैं आगे आ गया। अब जो वीडियो है जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं उससे। मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की पे ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक। मैंने उससे ये बोला था, और उसके साइड में लड़का, दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं पूरी वीडियो डलवाऊँ ना जी।
5: अच्छा एक बात बताइए,
4: मैंने बोला था, पहले सुन लो मेरी बात, मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार मैंने कि हमारे हमें टीच मत करो, बार बार टीच मत करो, लग जाएगी। अच्छा जी ठीक है, फिर मैंने कहा जाने दे। फिर वो फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था तो वो मेरे आगे कैसा है आप सोचो ना, जब मैं आगे, वो कह रहे थे कि निकल गया था फेस, आप वीडियो में देखना, मैं निकल गया। अच्छा फिर आगे आगे, चलो कोई नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है। इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है साइड में, उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता। अच्छा सुनो, आप इनको देखना, मैं जो मैम है, ठीक है, इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, अब प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो, उस साइड वाली सफ़ेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी, और वहाँ यू टर्न था, मैं यू टर्न के चक्कर में।
5: अच्छा
4: अब जाती है थोड़ा सा, अच्छा,
5: अब नॉर्मली
4: लग गई मुझे तो
5: क्यों, ड्राइविंग में ये सिखाया जाता है कि अगर चलो हिट भी होगी कोई बात नहीं, सड़क पे चलते हैं।
4: मेरी गाड़ियों में कई बार लग ली,
5: आपको लगता नहीं कि आपको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए,
4: बताता हूँ उसका लिए, बिल्कुल सही जवाब। मैंने भाई से बोला, मैंने क्या रुक जाना चाहिए, ठीक है, मुझे दुख हुआ बड़ा उस लड़की को, देखो मैंने जानता, तो मुझे जीवन पता है लड़की हो, उसने जब हेलमेट टेस्ट किया था तो मैंने कहा ओके वेरी गुड, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आप मुझे मंदिर में घुसा लो।
6: सुनो, आप सवाल वही है कि आपको रुकना नहीं चाहिए।
4: अच्छा रुकने की बताता हूँ मैं, मैंने जैसे आगे बढ़े वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पे लग रहे, मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे, फिर भी मैंने बत्ती पर रोकी, मैंने शीशा डाउन किया, मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात, मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे समझ गए मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने, वो लड़के ने, कि भाई फायदा नहीं है रुकने में, निकल लो।
6: अच्छा
4: समझ रहे हो, ये बात थी, मैं क्यों भागता भाई, मैं तो खुद हेल्प करता हूँ लोगों के।
6: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया या आपने अपनी बात क्लेरिफाई करने की कोशिश की?
4: मैंने अपने DSP साहब, मैंने उनसे बोला कि सर मेरी क्या नाम है, वीडियो डाली उन्होंने ऐसे एडिट करके, छोटे छोटे क्लिप जोड़ के मैं उसमें विलन दिखा रखा हूँ, विक्टिम कार्ड वो है, विक्टिम कार्ड खेल रहे, चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उसके लिए किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा, अच्छी लड़की मेरी गलती लगा लो, चलो मुझसे लगी बड़ी गाड़ी, लेकिन ना तो वो बाइकर्स की रोड है ना कुछ। अच्छा सुनो, मैंने करी अपने DSP साहब उनसे बोल दिया, मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये सच्चाई है और ये बात, और मैंने कहा इसको हाईलाइट इतना क्यों करा जा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों करा जा रहा है, क्या कुछ पहली बार स्पेशल वो हुआ क्या, मैं मेरे नाम आज तक एक केस नहीं है, हिट एंड रन का क्या मतलब है सर। अच्छा मैं पिटता हूँ,
6: पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये बात आपको कब पता लगी?
4: मुझे तो आज ही पता लगी सारी चीज़ें, अभी दोपहर पीछे CIA मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, CBI जा रही है, CIA जा रही है, क्या कर दिया मैंने, मुझसे संपर्क करो ना, और उस बहन जी से मैं बोलता हूँ, उस मैडम जी से, कि आप मुझे बताते, जब पता लग गई थी मुझे बताते, कोई मेरे लिए कुछ वीडियो डाल रहा है, अरे क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी क्या नहीं करी, वो तो मुझे पता।
6: फिलहाल अब आप क्या कहना चाह रहे हैं पुलिस से, क्या कहें?
4: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं,
6: अगर गुड़गांव पुलिस संपर्क करती है या आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुड़गांव पुलिस से?
4: हाँ बिल्कुल, मैंने बोल दिया सर से।
0: And my colleague Himanshu Mishra is now joining us from outside Sia's house. Himanshu, 48 ghante ho chuke hain is puri ghatna ko, is puri accident ko, lekin abhi tak Kalyan Vaisla, jo ki accused hai is case mein, use custody mein nahi liya gaya, aisa kyun?
7: देखिए ये तो गुड़गांव पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, और जो हमें जानकारी है कि कल्याण बैसला तक पुलिस की टीम पहुंच नहीं पा रही है, यानी अब इस पूरे मामले में जो दो नए ट्विस्ट आए, देखिए पहले जो पुलिस ने FIR दर्ज की थी गुड़गांव पुलिस ने, वो वायरल वीडियो था, क्योंकि शिकायत नहीं दी गई थी कोई भी सिया या सिया की फैमिली की तरफ से इस एक्सीडेंट के बाद, पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पे आता है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होता है, और उसके बाद पुलिस ने जब इस सोशल मीडिया पे वायरल इस वीडियो को देखा, इसके बारे में जब तफ्तीश की तो उसको लोकेशन पता चला, तो उसके आधार पर गुड़गांव पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की। उसके बाद कल अभी हमारी जो बात हुई है रोशन चौहान जो कि सिया के फादर हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि वो अपने वकील के साथ कल जब पहुंचे तो उनको ये जानकारी मिली कि पुलिस ने तो FIR ऑलरेडी दर्ज कर ली है, तो पूरे FIR में उन्होंने नई धाराएं जोड़ने के लिए की है। हम खुद बात कर लेते हैं एक मिनट, रोशन जी बताएं कि जो नई आपने शिकायत दी है डिमांड क्या क्या है आपकी, अलग से कौन सी धाराएं जोड़ने के लिए कहा और कौन कौन सी धाराएं जुड़ी?
8: डिमांड यही है कि हिट एंड रन की उसके ऊपर धाराएं लगाए, अटेम्प्ट टू मर्डर की उसके ऊपर धारा लगाए, जिस प्रकार से वो बेटी का पीछा करता हुआ आ रहा है और बेटी उसको बोल रही है कि अंकल आप अपनी गाड़ी दूर रखो, और वो पीछा करता आ रहा है, वो खुद अपनी रील के अंदर कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर से आ रहा था, 10 किलोमीटर रोड के ऊपर वाकई नहीं होता, रोड के ऊपर अगर कोई आदमी चल रहा है तो एक अगर बात हो जाती है 20 रास्ते आते हैं, एक आदमी उस साइड को चला जाता है दूसरा उस साइड को चलाता है, उनकी मानसिकता यही थी उसको हिट करने की और मारने की।
7: तो ये बताएं कि वो तो ये कह रहा है कि 25-30 बाइकर थे, कितने लोग आपकी बेटी से बात हुई कितने लोग थे?
8: वो तो आप वीडियो में देख लीजिए ना कितने लोग थे, अगर 25-30 होते तो वो अपनी गाड़ी लेके वहां से जा नहीं पाता।
7: कितने लोग रहे होंगे?
8: देखो ये तो एक ग्रुप होता है, सभी कोई एक दूसरे को जानते भी नहीं है वो लोग, तो वो तो अपना संडे वाले दिन लोग बच्चे चले जाते हैं भाई, अपना वहां गए घुमा के गाड़ी घुमा के अपना चाय पी के चले आए।
7: तो बैसला ने आज तक से बात करते हुए कहा कि उसे पिंच किया जा रहा था,
8: वो चार चार मुस्कंडे वहां पे उसमें बैठे हो, उन्हें पिंच करेगी वो भी एक महिला, कौन पिंच कर रहा था?
7: तो ये देखिए ये रोशन जायसवाल जी हैं जो सीधे जो आरोपी कल्याण बैसला है, जो जिस तरीके के आरोप वो लगा रहा था उसको सिरे से खारिज किया। सबसे पहले तो जो बाइकर की संख्या थी यहाँ पर अंजलि, उस बाइकर की संख्या को लेकर उन्होंने कहा कि कितने थे एग्जैक्टली, लेकिन वीडियो में कम दिख रहे हैं। उन्होंने कहा वीडियो में एक दो ही दिख रहे हैं, लेकिन जो लोग होते भी हैं अगर साथ में तो वो एक दूसरे को पहचानते नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाइकर सारे हैं तो एक दूसरे के दोस्त हैं और सभी लोग एक साथ जा रहे हैं। दूसरी चीज, पिंच करने पर उन्होंने कहा कि भला ऐसा कैसा संभव है। तो अब देखिए, ये पूरा मामला गुड़गांव पुलिस के पास है, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, एक फ्रेश कंप्लेन जो है वो दी जा चुकी है सिया की तरफ से। अब पुलिस सिया का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि सिया नहीं गई थी, उनके फादर गए थे, एडवोकेट गए थे, तो अब गुड़गांव पुलिस सिया का स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए यहां किसी भी वक्त आ सकती है। एक बार स्टेटमेंट दर्ज हो जाएगा तो इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। जी
0: हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। So, a young woman biker chased on a city road, rammed by a speeding car and left injured. India Today tracked down the driver, Kalyan Besla, who remains brazen. The driver has claimed that the bikers were riding erratically and that he was only asking the victim to ride safely. He has blamed the victim, alleging that the video was edited to portray him in a bad light. The shocking incident on Gurugram's posh golf course road has triggered a string of demands for strict action against the accused driver. Sia has also slammed Kalyan Besla and rejected the claims made by him. The woman biker has claimed that Kalyan intentionally changed lanes and swerved to ram into her. The victim's family has also made startling claims. In fact, the family visited the Gurugram Sector 56 police station, alleging that the incident was an attempt to kill her and not just a hit-and-run case. The Suomoto case by cops was registered under Section 125 of the Bhartiya Nyaya Sanhita for an act endangering life or personal safety, and Section 281 for rash driving. The victim's father, Roshan Chauhan, has also spoken with India Today. In fact, he again spoke with India Today, calling the driver's mindset criminal and disgusting. He said that the incident was deeply worrying and warned that such behavior could normalize threatening women.
4: ये साइड में से बहुत जोर जोर से लेके कई बार फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, पिंच कर रहे, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं मैंने कर रहे। मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी इसमें, ये 22-23 जने थे टोटल। इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाए, दो क्यों दिखा रहे, दूसरा दिखाया नहीं। वो फ्रेंड कौन सा है, दिखाओ ना उसको, फ्रेंड को नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में। तो कहने का मतलब ये है, मैं उस लड़की के लिए, मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ वैसे। मैंने भाई से बोला भी कि मैंने कहा यार दुख हो रहा मुझे। अब जो वीडियो हो जिसमें, उससे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं उससे। मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की पे ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक। मैंने उससे ये बोला था, और उसके साइड में लड़का, दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं, पूरी वीडियो डलवाऊँ ना जी। अच्छा एक बात बताइए, मैंने बोला था, पहले सुन लो मेरी बात, मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार, मैंने कि हमारे, हमें टीच मत करो, बार बार टीच मत करो, लग जाएगी। अच्छा जी ठीक है, फिर मैंने कहा जाने दे। फिर वो, फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था तो वो मेरे आगे कैसा ही,
1: ये इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे, और हम इनको पिंच कर रहे थे। वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें। और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने ऑब्वियसली, मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल हैं, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला, एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे, और वो दो वीडियो भी क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए क्या दो वीडियो इनफ नहीं।
0: In fact, victim Sia's family also met with the cops and they have made startling allegations against the accused. They are also demanding that the charges must be increased. Attempt to murder charges must also be added to the FIR. In fact, hit and run charge must also be added. So those are the claims which are being made by the family. The family is seeking attempt to murder charge in the FIR. The family has also submitted a complaint to the Gurugram police and it is now seeking addition of attempt to murder and hit and run charges in the FIR. In fact, victim Sia's father says that the video shows her being dragged and that Sia is still traumatized because of the accident. And the police will be recording the victim Sia's statement today. And the manhunt, meanwhile, is on for accused Kalyan Besla.
9: हमने हैरेसमेंट का अटेम्प्ट मर्डर का भी इसमें बोला है और इसमें जो कंप्लेंट दी है उसमें भी यही बताया कि जो वीडियो है वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उस तरीके का कोई ऐसा हिट एंड रन का नहीं है, ये इंटेंशनली मारा गया है, इंटेंशनली ऐसे इस तरीके से हिट किया गया है और होने को कुछ भी हो सकते हैं। जब किसी को मारा जाता है और वो बच जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई ये तो गलती से लगा है, ऐसा भी नहीं है कि जब वो मर जाएगा तभी कंप्लेंट होगी।
0: Now the big question, is there an attempt to shield the accused by the Gurugram cops? Let's understand. So there are no tough charges in the FIR against the accused Kalyan Besla. The BNS section 125, which is negligent act that puts human life in danger, that has been pressed against the accused, which is a bailable offence. So that is one of the charges that has been mentioned in the FIR. So there are no tough charges. The charges include the section 125 of the BNS, which is bailable. Then comes the BNS section 281, which is rash driving, causing injury to a person. Now, again, this charge is also bailable. And what is also important to note that even the accused name has not been mentioned in the FIR. So there's no name of the accused in the FIR. In fact, in place of the name of accused, it's written unknown person, despite it being now out in the open that the accused name is Kalyan Besla. Now, shifting focus, some more news coming in. Alarming fake cancer drug racket bust in Karnataka. Bengaluru cops bust massive counterfeit drug racket. Fake cancer drugs, ICU injections, shocker in Bengaluru. Fake life-saving drugs in 90 hospitals and clinics across Bengaluru. Pharmacy owner Viresh has been arrested by Karnataka CID. Fake drugs sold at discounts of nearly 50%. Expired drugs repackaged and sold as new. Low-cost medicine also rebranded, sold at high price, and the probe points to interstate drug fakery network. So this is not confined to Karnataka, but there are other states which are also involved in this fakery network. And 5 crore rupees worth fake drugs have been seized. Key accused Prashant, active for 5 years, absconding. So fake medicine racket has been busted in Bengaluru. The CID SIT is likely to take prime accused Viresh into custody today. The CID SIT officials have intensified the probe into the fake medicine racket, with prime accused Viresh likely to be taken into custody today. So Viresh is currently lodged in Parapanna Agrahara Central Prison after being remanded in judicial custody following his arrest. The investigators suspect that the entire racket was being operated under Viresh's monitoring, and the SIT is also probing the alleged links between Viresh and another accused, Prashant, with the accused yet to disclose details about their connection. My colleague Sage Raj is now joining us with more details on this. Sage, give us more details about this entire fake drug racket that has been busted in Bengaluru, and who all are the accused and what action can now be expected against them?
10: No, they have already been sent to a judicial custody. What we get to learn through our sources is that this particular racket was being exposed by the Karnataka Health Department and followed by the police raid which was being conducted in multiple places. And they have also found out that there was a person accused, identified as Viresh, who is currently lodged in Parapanagara prison after being remanded in judicial custody, claimed that he was just selling the medicines, whatever he was getting through. He claims that he was just a middleman. He has no clue whether those were fake medicines or not. Police are investigating further and trying to take him into custody to interrogate him.
0: We are learning that these medicines reached 90 hospitals and clinics across Bengaluru. Were these counterfeit medicines also administered to the patients?
10: No, the police are investigating on the same, because these are the counterfeit medicines which have been supplied to close to 90 Bengaluru hospital, and the pharmacy owner still claims that he had no knowledge about it, and he had just got the drug and supplying that. And if you notice that, acting on the leads from the earlier case, the SIT and Drugs Control Department had raided Krupa Healthcare, and that has been owned by Viresh, and that's when they got to know that he was selling these fake cancer medicine. And the investigation has also indicated the racket may have extended beyond Karnataka. So the chain might have crossed Karnataka, and probably the police are trying to ascertain the people behind this, whether it is a one person or multiple person who have involved in this particular fake cancer medicine racket.
0: And Sage, did the hospitals and the pharmacies fail to verify the authenticity of these medicines?
10: So far, the police have to give a clarification on this. They have taken the medicine, they have taken to the lab, they have found out that there were fake medicines. They doesn't have any kind of authorization, any kind of approval from the Medical Board of India. So they are investigating further. Probably once they take Veeresh into custody and interrogate further, that's when the real picture will be revealed.
0: All right, Sage, thank you for those details on the fake cancer drug racket that has been busted in Bengaluru. And it is also being suspected that this is not just confined to Karnataka, but there may be other states also which may be involved in this network.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो अब डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: ये लागू करना, ये तो जब हम तथाकथित आजादी मिला तो नेहरू जी को उसी समय कर देना चाहिए था। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, वोट बैंक के लिए अलग, यही तो हुआ। हमने अपना शादी विवाह करने के सारे कानून को उसमें मान लिया भारत सरकार के कानून के साथ, लेकिन इनका दूसरे धर्म पर वोट बैंक नजर आ रहा था। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, एक देश एक कानून।
1: क्या यूसीसी से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी? क्या यूसीसी से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या यूसीसी से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी? आप 21 स्टेट में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, का मतलब है सिविल कोड के अंदर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। आज हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का अलहदा अलहदा पर्सनल कानून है, आप उन कानूनों को 21 जगह बना देंगे? ये एक जिद है मुसलमानों के खिलाफ।
2: Is an upper caste vegetarian Hindutva North Indian political party. So they thrust their cultural views on everybody. See, in 80% of India, eats meat. So if you want to showcase Indian cuisine, there is no reason to withhold by serving serving meat, fowl or seafood, which is also part of our culture. So while whoever wants to be vegetarian can be vegetarian, but if you really want to showcase Indian culinary diversity, you must showcase all its diversity. Why withhold a significant part of the Indian dietary and cultural practice? That is my question.
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लगातार समय देकर के भारतीय जनता पार्टी को यह विजय दिलाने का काम किया है।
1: And my colleague Sharad Kumar is now joining us with more details. Sharad, BJP ki badhat hui hai, Congress party ki jo performance hai wo niche gayi hai, but jo independents hai unhone kamal karke dikhaya hai civic polls mein, to kya message bahar gaya hai civic polls ke result ke baad?
2: देखिए, इंडिपेंडेंट पिछली बार से अपने 2.5% वोट करीब आगे बढ़ाए हैं। पिछली बार 24.59% का वोट था, इस बार करीब करीब 27% 27% है, तो 2.5% ये अपना बढ़ाए हैं। इंडिपेंडेंट ज्यादा जीतते हैं छोटे चुनाव में, जैसे भरतपुर का इलाका है वहां पर दोनों ही पार्टियों को लेकर टिकट नहीं लेते हैं, इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं कि उसके बाद मोल भाव होगा और वो जिस पार्टी के साथ जाएंगे वहां पर अपना कुछ लेकर सरकार में शामिल होंगे। मगर जो इंडिपेंडेंट ज्यादा जीते हैं वो फार्मर बेल्ट है। आप देखिए, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये फार्मर बेल्ट है जहां पर फार्मर अनरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, वहां ये कांग्रेस के साथ नहीं जाकर इंडिपेंडेंट जीते हैं करीब करीब सभी नगर निकायों में। ये एक बड़ी चिंता की बात है कांग्रेस के लिए कि फार्मर्स ने इंडिपेंडेंट को चुना है, और बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है कि अजमेर में 36 साल से एक तरफा राज था, वहां पर पिछड़े हैं, झालावाड़ में जहां वसुंधरा राजे का 25 साल से राज था वहां पर पिछड़े हैं, जोधपुर में पिछले 10-15 साल से बेहतर कर रही थी बीजेपी, वहां पर बराबरी में छूटे हैं, अलवर में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। तो बड़े शहरों में जो बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं, जो यूजीसी की वजह से नाराज हैं, वो कांग्रेस के साथ नहीं गए हैं तो बीजेपी के साथ भी नहीं गए हैं, या तो घर बैठ गए हैं या निर्दलीय के साथ गए, इंडिपेंडेंट के साथ गए हैं। इससे बड़े शहरों में बीजेपी के लिए चिंता की बात रही है, लेकिन उसकी भरपाई जो है वो नगर पालिका और जिला परिषद में हो गई है। बीजेपी ने
1: जी शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो दैट्स द की टेक अवे फ्रॉम द राजस्थान सिविक पोल्स, वेयर द बीजेपी हैज मेड ओवरऑल गेन्स, बट द कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट ग्राउंड बट हैज मेड सिग्निफिकेंट गेन्स इन की सीट्स, बट इट इज द इंडिपेंडेंस दैट हैव बीन द स्टार ऑफ द शो, एंड ओवर 2,200 सीट्स हैव इन फैक्ट बीन वन बाय द इंडिपेंडेंस। And after the Rajasthan civic poll results, a war of words has also erupted between the BJP and the Congress. Prime Minister Modi reacted to the victory. He also took a jibe at the Congress party, calling it jhoot ki goonj that has been defeated in Rajasthan. And he lauded the BJP's victory in the polls. He attacked the jhoot ki goonj. He said that truth trumps jhoot ki goonj. And he also mentioned how the double engine government is strong in Rajasthan. After which the Congress party hit back at Modi's chest thumping. The Congress party said that the BJP secured only 40.8% of the ward seats. The vote share difference between the BJP and the Congress is merely 0.94%. This is what the Congress is claiming. BJP, remember, has won 41% of seats, which is a gain of around 5%, but it has been denied clean sweep. Whereas the Congress party has won 35% of seats, but it has lost 5% seats. And on the other hand, it has also gained in key belts. So the BJP has won nearly 4,200 seats. The Congress party has won over 3,600 seats. And now a war of words has erupted after Prime Minister Modi lauded the BJP victory, hailed the BJP victory, also attacked the Congress, taking a jibe, calling it jhoot ki goonj, which has been defeated, to which the Congress party has hit back, highlighting how the vote share difference is not much between the BJP and the Congress and is in fact merely 0.94%. So let's take a look at the key takeaways of the Rajasthan civic polls. What are the takeaways? What is the, in fact, the final verdict? So the BJP has emerged as the largest party. BJP has won 4,179 wards ahead of Congress party's 3,613, making it the biggest party. Independents now hold the key. So independents have won 2,200.

0: A very good morning to all our viewers. You're watching The Burning Question on India Today with me, Anjali Pandey, and our focus continues to remain on the Gurugram hit and run case. And now 50 hours on, Gurugram rogue driver still on the run. Police yet to nab the Gurugram goon driver. Manhunt for accused Kalyan Besla is still underway. Victim Sia's family meanwhile is seeking attempt to murder charge, and the victim has said that the attempt to murder charge and hit and run charge must be added to the FIR against accused Kalyan Besla. And the victim has also claimed that the car intentionally changed lanes and then hit and rammed her bike. The car chased her and swerved to hit her. And she has also rubbished that the bikes were changing speed, a claim which has been made by the accused while speaking exclusively with India Today. He was claiming that how the bikers were changing speed, and which was dangerous. And he's also claimed that he did not even know that it was a woman who was driving the bike. And the accused driver has said that bikers repeatedly overtook his car, and he did not hit the biker intentionally. And he did not even know that a woman was riding the bike. And all these claims by the accused have now been rubbished by the victim.
1: जान से उस वीडियो को देखना, इस तरह कस्टमाइज कल की बात है, कल ही डाल देते ना साथ साथ. अब अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी गलती है, ठीक है जी, हमने मार लग गई, हमसे रोड पे लग जाती. चलो तहसीलदार के ही बता देता हूँ, वो पीछे से आ रहे थे, आगे ले गए, ठीक है जी, मैं आगे आ गया. अब जो वीडियो हो जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं उससे. मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की पर ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक. मैंने उससे ये बोला था, और उसके साइड में लड़का, दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं, पूरी वीडियो डलवाऊ ना जी.
2: अच्छा एक बात बताइए,
1: मैंने बोला था, पहले सुन लो मेरी बात, मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार, मैंने कि हमारे हमें टीच मत करो, बार बार टीच मत करो, लग जाएगी. अच्छा जी ठीक है, फिर मैंने कहा जाने दे. फिर वो, फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था, तो वो मेरे आगे कैसा है आप सोचो ना. जब मैं ये कह रहे थे कि निकल गया था, फिर आप वीडियो में देखना, मैं निकल गया. अच्छा फिर आगे आगे चलो कोई नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है. इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है साइड में, उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता. अच्छा सुनो, आप इनको देखना, मैं जो मैं मेरे, ठीक है, इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हैं. उस साइड वाली सफ़ेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी, और वहाँ यू टर्न था, मैं यू टर्न के चक्कर में. अच्छा अब जाती है थोड़ा सा इधर, है
2: अब नॉर्मली
1: लग गई मुझे, तो
2: ड्राइविंग में ये सिखाया जाता है कि अगर चलो हिट भी होगी कोई बात नहीं, सड़क पे चलते हैं.
1: मेरी गाड़ियों में कई बार लग ली.
2: आपको लगता नहीं कि आपको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए?
1: बताता हूँ उसका लिए, बिल्कुल सही जवाब. मैंने भाई से बोला, मैंने कहा यार रुक जाना चाहिए, ठीक है, मुझे दुख हुआ बड़ा उस लड़की को, देखो मैं नहीं जानता, मुझे जीवन पता लड़की है वो, उसने जब हेलमेट टच किया था तो मैंने कहा ओके वेरी गुड, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आप मुझे मंदिर में घुसा लो.
3: उसके बाद मैं बताती हूँ फिर चीजें.
4: बहुत जोर जोर से ले गए कई बार, फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं, मैंने कहा रहने दो, मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी. ये 22-23 जने थे टोटल, इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई, दो क्यों दिखा रहे, दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा, दिखाओ ना उसको फ्रेंड को, नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में. तो कहने का मतलब ये है, मैं उस लड़की के लिए, मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ वैसे, मेरा भाई
3: इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे, और हम इनको पिंच कर रहे थे. वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें. और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. आपने ऑब्वियसली, मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल हैं, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला, एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे और वो दो वीडियो भी क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए कि दो वीडियो इनफ नहीं है।
0: And now shifting focus, some more news coming in. As per government sources, Meta has agreed to report child sexual abuse cases to law enforcement agencies. The government is continuously engaging with social media platforms to curb harmful information. Online safety of children is a fundamental principle for any social media to operate in India, and it is non-negotiable. The government has made this clear. Meta has now agreed to report child safety-related matters to the appropriate law enforcement agencies. It is a first step towards making the platform safe for children, and much more needs to be done. The government remains engaged with other platforms to proactively identify and remove such content. The government shall take action against platforms that do not take proactive steps for the safety of children. So the government has been very vocal about how child safety must be ensured on social media platforms. And now what we're learning as per government sources is that Meta has agreed to report child sexual abuse cases to law enforcement agencies. The government is continuously engaging with the social media platforms to curb harmful information. In fact, it has also stated that online safety of children is a fundamental principle for any social media platform to operate in India, and it is non-negotiable. And now Meta has agreed to report child safety-related matters to the appropriate law enforcement agencies. And this is being seen as a first step towards making the platforms safe for children. And of course, much more needs to be done apart from this as well. But the government remains engaged with other platforms also to proactively identify and remove such content from the platform. And the government has also clearly stated that it shall take action against platforms that do not take proactive steps for the safety of children. So the first step has now been taken by Meta, that has agreed to report child sexual abuse cases to the law enforcement agencies. My colleague Himanshu Mishra is now joining us with more details on this. Himanshu, badi jankari aa rahi hai government sources ki taraf se ki Meta ab unke saath milke kaam karegi aur jo platform hai use bachcho ke liye safe banane ke liye kaam karegi aur jo bhi is tarike ke matters honge unhe law enforcement agencies ko bataya jayega.
5: देखिए, बिल्कुल मेटा ने इस बात को एग्री कर लिया है कि जो बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की चीजें हैं उन पर जो भी लीगली चीजें हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग है, वो उस पर एग्री कर गए हैं. उसके साथ साथ इस तरीके की जो सेक्सुअल हरासमेंट के कंटेंट और वीडियोज हैं उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रोकने के लिए जो है मेटा के द्वारा जो है गाइडलाइन पूरी तरीके से की जाएगी और उसका पालन भी किया जाएगा. और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर जो है मीडिया प्लेटफॉर्म का एक जो कम्युनिकेटर है उसके साथ किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. मेटा बच्चों से जुड़े हुए जो मामले हैं कानूनी तौर पर एजेंसियों के साथ जो है रिपोर्ट पर सहमति जताई है और उसके साथ साथ ये पहला कदम है. लेकिन एक चीज मानकर चला जा सकता है कि मेटा आने वाले दिनों में जो सरकार की तरफ से बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की वीडियो एंड कंटेंट है उस पर जो सरकार की गाइडलाइन है उसको मानेगा, उससे इधर जाके कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि उन रूल्स का वायोलेशन हो.
0: बिल्कुल हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो मेटा विल नाउ बी रिपोर्टिंग द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वीडियोस टू द कंसर्न्ड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड टू मेक द प्लेटफॉर्म सेफर फॉर चिल्ड्रन. And let me now go across to Abha Bakaya of Business Today TV with all the updates of the markets in this business show. Abha, over to you.
6: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
7: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
8: Presented by National Stock Exchange.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: A mounting pile of indiscipline, as well as the saffron jersey, as well as other administrative issues, has led to this particular situation. What were the issues? Saffron jersey, no disciplinary action over players, misconduct, and the unavailability of ICC/POSH records. Now, what is the disciplinary action over players' misconduct that has been spoken about? You would remember that there was one particular incident in the tour to South Africa in which several senior players were hauled up for indiscipline. Why no action? What has the Hockey India statement said? Expressly directed RK Srivastava not to travel to World Cup because full attention was required for HIL franchisee coordination. Now, the Director General of Hockey India was given the task, like, look, the Hockey India League is there, franchisee coordination and every other things related to the league, you have to do it. But instead, Hockey India's former Director General went for the World Cup along with the Secretary Bholanath Singh. RK Srivastava bypassed the executive board on major decisions, including the jersey change. We all know what happened. There was no massive meeting that was held to say, oh, let us change the jersey color from orange to from blue to orange. Roughly ₹43.68 lakhs was spent on allowances for four office bearers. ₹12.38 lakh each on Bholanath Singh and RK Srivastava. That was also a major controversy. Amidst all the action that was going on in the Hockey World Cup, this particular incident was highlighted by few, but it was swept under the carpet. But now, this was raised by Narinder Batra.
1: मैंने कभी मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा कि ये गाड़ी उस रोड पे चल रही है मेरे आगे पीछे चल रही है पहली चीज जो उसने करी कि मैं बाइक चला रही हूँ एंड वो बहुत फास्ट मेरे साइड से निकलता है देन आई वाज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये गाड़ी इतने पास से क्यों निकली है मेरे फिर मैंने इग्नोर करा कि चलो छोड़ो देन उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है देन उसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट होता है जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके देन उसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट होता है जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है फिर उसके बाद वो उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो और ऐसे रुकने के लिए उस तब मैं डर जाती हूँ सी उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है उसके साइड में एक और लड़का था वो भी कुछ एक्शन कर रहा था और आई थिंक उसको पीछे भी दो लड़के थे पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं कितने लोग बैठे हैं और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे एंड सी मैं टू व्हीलर पे हूँ एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है उन लोगों का नहीं है तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ आप पास मत आओ ठीक है कि आपकी गाड़ी भी तेज चल रही है और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे आ रही है तो थोड़ा सा मैं तेज चली कि मुझे डर लग रहा था कि भाई वो कुछ कर ना दे एंड जो एक फेलो राइडर था जो पीछे चल रहा था ही ट्राइड कि वो मेरे पास आए कवर करे और उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि वो मेरे पास चल रहा है उसकी जस्ट साइड में गाड़ी चल रही है एंड इसी हफड़ा तफड़ी में कि वो लड़का उसको आगे नहीं आने दे रहा एंड जब एक गाड़ी बीच में आई मेरी बाइक स्लो हुई एंड वो फर्स्ट लेन से जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है एंड इट वाज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है एंड मैं स्लो हुई हूँ एंड वो टक्कर मार के जाता है मैं गिरती हूँ मुझे कोई होश नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे साथ एंड जैसे मेरे एक फेलो राइडर ने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई रुक जाओ आप रुक जाओ आपकी गलती है वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है उस लड़की की गलती है एंड वो रुकता नहीं है वो रेड लाइट भी तोड़ के उसको लेफ्ट का रास्ता मिलता है एंड वो भाग जाता है
2: राइडर थे आप कितने बजे कहाँ से निकली थी और कहाँ तक आपकी
3: और गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? क्या केवल मर्द थे या औरतें भी थी उस गाड़ी में?
1: उसमें सारे लड़के ही थे, कोई औरत नहीं थी जितना मैंने देखा। और मैंने जो राइड थी कि मैं अपने घर से निकल के गुड़गांव में एक बाइकर वन कैफे है जो मेजरली बाइकर्स के लिए काफी फेमस है, मैं वहीं जा रही थी। मेरा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके साथ मैं चलती हूँ, मैं कभी अपने ब्रदर के साथ भी राइड करती हूँ। सी मेरे पास जो बाइक है वो और भी लोगों के पास है, तो बाइकर कम्युनिटी में सब एक दूसरे को जानते हैं किसके पास क्या बाइक है, तो वो लोग मुझे जानते हैं। हाँ, मेरी हेलो हाय होती है और उन्होंने देखा कि मैं आगे चल रही हूँ। तभी मेरे एक काइंड ऑफ मेरा फ्रेंड है, हम एक दो बार में हमने ग्रुप राइड करा है अप्रीलिया वालों के साथ, तो उन्होंने देखा कि जब ऐसा हो रहा है उसने पहचाना कि वो मैं हूँ। तो अच्छा है उसका कैमरा चल रहा था और उसने सब चीजें रिकॉर्ड करी।
3: आपके फेलो राइडर ने भी जानकारी एनडीटीवी को दी थी कि किस तरह से वो लगातार आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, क्या इंटेंशनली आपको लगता है कि आपको हिट करने की कोशिश या परेशान करने की कोशिश की जा रही थी? क्या आपको लग रहा है कि इंटेंशनली आपको हिट किया गया?
4: अरे यार, आप उसके बाद का पूरा घटनाक्रम बताएं, जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद क्या
1: हुआ? एक्सीडेंट जब हुआ तो जितने भी जिन लोगों ने देखा, मेरी बाइक का पीछे का ब्रेक टूट गया था, आगे का ब्रेक टूट गया था और वो बाइक मतलब प्रॉपरली चलाने लायक नहीं थी। जो भी दूसरे वहाँ पे राइडर्स ने मुझे देखा, एक किसी ने मुझे पीछे बिठाया और हम पहले बाइकर बन लेके गए। मैंने वहाँ पे हीट पैच वगैरह जो भी चीज़ें थी मैंने वहाँ ऑर्डर करी, वहाँ पे मैंने लगाई। फिर उसके बाद एक घंटे, क्योंकि मैं लिटरली टेरिफाई हो गई थी, आई वॉज लिटरली शेकिंग, मेरे से बिल्कुल भी बाइक नहीं चल रही थी। एंड फिर एक दो राइडर्स ने मतलब मेरी एक ने बाइक चलाई एंड मैंने किसी और की बाइक राइड करके मैं यहाँ तक आई। देन फिर मैंने अपनी बाइक स्विच करी, फिर मैं अपने घर पे उस बाइक को लाके मैं पहुंची। सी जो वो लोग कह रहे हैं कि मैं पिंच कर रही थी, देखो मुझे कोई शौक नहीं है किसी गाड़ी वाले को पिंच करने का, ठीक है। मैं बाइक आज से नहीं, मैं एक साल से चला रही हूँ। आई नो कि मैं राइड कर रही हूँ तो मुझे अपनी सेफ्टी देखनी है, तो मैं किसी से फालतू में रोड पे क्यों पंगे लूंगी?
4: एंड
1: जैसे वो बोल रहे हैं पिंच कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, वो देखिए वीडियो में शो हो रहा है। एंड मुझे नहीं लगता कि अब उनकी कोई भी सफाई काम आएगी, कि जैसे उनका लॉयर या वो बयान देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है। आज से सारे देश के पास वो वीडियो है कि किसने क्या इंसिडेंट करा, एंड ऑब्वियसली वो गुनाहगार है, हिट एंड रन का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का, इंटेंशनली वो हिट करके गए हैं जैसे वीडियो में शो हुआ है।
4: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया?
1: गुड़गांव पुलिस ने मेरे से अभी इंस्टाग्राम के थ्रू किया था जब मेरा वीडियो ज्यादा हुआ। एंड मेरा मेन पर्पस वीडियो डालने का यही था कि लोग सोचते हैं कि हम मार के चले जाएंगे किसी लड़की को या किसी बाइकर को, वो क्या एक्शन लेंगे, उनका तो आए दिन गिरने का होगा। और इसलिए मेरा मेन पर्पस था वीडियो डालने का कि लोगों में डर नहीं है कि अगर आप रोड पे किसी को भी मार के चले जाएंगे, कोई मर रहा है कोई जिंदा है, किसी में वो डर नहीं है, तो वो डर पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है।
2: साइबर सिटी में इस तरह की घटना होना, इससे पहले भी बाइकर्स की कई बार जान गई है, पिछले दो साल में तकरीबन 3-4 इस तरह के हादसे हो चुके हैं और ये तो गनीमत है कि आप सही सलामत हमारे सामने खड़े हैं। क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खासतौर पर गुड़गांव जैसे?
1: सी लॉ एंड ऑर्डर को लेके वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। पुलिस का ये काम होता है, ट्रैफिक पुलिस वालों का ये काम होता है बाइकर्स को लेके कि भाई वो बाइक चला रहे हैं, एग्जॉस्ट है, आपने क्या कर रखा, आप बहुत जल्दी उनका चालान कर देते हैं। पर किसी बाइकर वाले को कोई मार जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, तो उन लोगों का क्या, उनकी जान आपके लिए कीमती नहीं है? जब तक कोई बाइकर वाला ठुक के मर ना जाए तब तक क्या लॉ एंड ऑर्डर उठ के आएगा? नहीं। अगर आप बाइकर पे इतनी पाबंदी लगाते हैं गुड़गांव में, तो आप ये भी तो देखिए जो फोर व्हीकल चला रहे हैं, जो लोग इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं?
4: एक्चुअली पहले कितनी देर पहले उसने आपको पहली बार इशारा किया, पहली बार क्या आप लोगों को, उसने आपको कब देखा और किस तरीके से, वो पूरा सीक्वेंस बताइए क्या हुआ?
1: मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कब देखा, क्योंकि देखिए देखिए मैं अपनी लेन में अपने आप को देख के मैं चलाऊंगी, कौन सी गाड़ी मेरे आसपास चल रही है, ठीक है, मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी कि उसमें कौन है क्या है
4: जी।
1: जो पहली चीज थी वो मेरे बाइक के साइड से बहुत तेज अपनी गाड़ी लेके गया, तब मैंने उसको नोटिस करा, मुझे लगा कि भाई ठीक है हुआ होगा, नहीं देखा होगा वो इंसान जल्दी में होगा। अगर आप इतनी तेज लेके गए हो तो आप सीधा निकलो ना, आपका क्या दुख बनता है, आप आगे रुक रहे हो, मुझे एक्शन कर रहे हो, फिर उसके बाद आप पीछे से आगे ठोक के भाग जाते हो।
5: गाड़ी में कितने लोग थे, आपने कुछ देखा?
4: महिला थी।
1: गाड़ी में जो जब उसने शीशा डाउन करे उसमें दो लोग मुझे आगे दिख रहे थे, ठीक है, और जितना मुझे लग रहा है पीछे भी दो लोग थे, काले शीशे थे पूरे गाड़ी के, तो मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं दिख रहा था एंड मैं इतना फोकस से भी नहीं देख पा रही थी क्योंकि मैं बाइक राइड कर रही थी और सारे लड़के
5: थे। आपको चोट भी लगी थी? आपको हाथ में चोट भी लगी, एक बार दिखाएं।
1: मेरे यहाँ पे चोट लगी है, मेरा मतलब पूरा ये नील वगैरह हो रखा है, मेरे को नीज पे चोट लगी है, मैं लिटरली मैं भगवान का शुक्र गुजार हूँ कि मैं मेरे पास मेरे राइडिंग शूज थे, मेरी ग्लव्स थे राइडिंग, जिसमें एक वो होता है कि आप अगर गिरते हो तो वो आपको स्लाइड करते जाता है, अगर इन केस मेरे पास मेरे राइडिंग शूज ग्लव्स नहीं होते तो जो मेरा पहला हाथ पड़ा तो उससे मेरी शोल्डर भी ब्रेक हो सकता था, मेरे लेग भी ब्रेक हो सकते थे, वो हम थोड़ी सेफ्टी लेके चलते हैं इस वजह से। देखो इतना इंसिडेंट कल से चल रहा है, लोग इतना मतलब बोल रहे हैं कि साफ दिख रहा है उस बंदे ने क्या किया है, वो किसी एक इंसान को मार के रोड पे मरने के लिए छोड़ के चला गया एंड अभी भी वो इंसान फ्रीली घूम रहा है, वो न्यूज़ रिपोर्टर को बाइट दे रहा है, वो अपनी सफाई पेश कर रहा है, उसको इतना टाइम कैसे मिल रहा है, पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? अब तो सारी डिटेल्स उसके पास है, बकायदा मैंने गाड़ी का नंबर वगैरह उसमें डाला अपने कैप्शन में एंड उसके बाद भी पुलिस उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, तो यही एक मतलब निग्लिजेंस है डिपार्टमेंट की, तभी तो लोग इतना फ्रीली सब रोड पे कर पा रहे हैं।
4: रफ्तार क्या रही होगी उस वक्त आपकी और कार की?
1: मेरी आई थिंक सो मैं उस टाइम पे 50-60 हो गई थी, मेरी स्लो हो गई थी क्योंकि गाड़ी बीच में आ गई थी एंड जो गाड़ी की रफ्तार है वो तो मुझे लग रहा है कि वो 100 या उसके अवर भी थी क्योंकि जिस तरीके से वो तेजी से लेके आया, और अगर मेरी बाइक स्लो नहीं होती तो मैं वहाँ पे डिवाइड।
4: अच्छा, आप लोग अक्सर जाते हैं, वो बाइक है कहाँ है बाइक?
1: मेरी बाइक यहाँ पे आई है, यहाँ मैं ज्यादा देर So that was victim Sia briefing the media on what exactly happened, and she mentioned how she was being chased and the accused had asked her to stop the bike and she did not stop the bike, after which she was hit, and she has clearly stated that it was intentional. She was hit intentionally by Kalyan Besla, the accused in this case. She has also mentioned that how the car had tinted windows. She could not exactly see who all were inside the car, but she has mentioned that there were four men inside the car, and the driver was pissed off because a fellow driver was trying to provide cover, because she has claimed that she was being chased by the driver, and a fellow driver was trying to help the victim. But she has mentioned that the driver was pissed off because he was not able to overtake because of the fellow driver, and hence he, after which he eventually hit her intentionally. And after the accident, the fellow driver also confronted the accused, and when he said that it's not his fault but the biker's fault, and she has mentioned how there were all men who were present inside the car, there were four men, and she's also said that how she was terrified and was

0: interview. And she has raised some very serious questions on the Gurugram cops, asking as to why has he not been arrested. And she is questioning, it's already been 2 days, and if reporters can track down the accused, then why can't the cops arrest him? And why is he not in the custody as of yet? It's already been over 50 hours of the accident, and still the manhunt is on. The accused is not in custody. So these are the concerns which have been raised by the victim, Sia. She has also claimed that it's clearly a case of hit and run. It was intentional hit. And she has also raised concerns over the law and order situation in Gurugram. And she has highlighted the law and order situation, saying that people are not afraid to hit others like this. My colleague Arvind Oja is now joining us with more details on this. Arvind, jo victim hai Sia, unhone ab pura bayan diya hai ki kya kuch hua, kaise hua. Unka saaf kehna hai ki intentional hit tha aur unko chase kiya ja raha tha. Aur jab unhone bike nahi roki, tab unhe jo Kalyan Baisla hai, jo gaadi chala rahe the, unhone jaan boojh ke unko hit kiya.
1: बिल्कुल. और देखिए, कल जो सिया के फादर हैं, उन्होंने भी यही कहा था, फादर ब्रदर ने भी, और अब सिया भी सामने आई है और उसने बताया है कि किस तरह से इंटेंशनली जानबूझकर जो कार में सवार लोग थे, उन्होंने बाइक को टक्कर मारी, जिस वजह से जो बाइक है डिसबैलेंस होकर गिर गई, जो सब कुछ तस्वीरों में है. कल गुरुग्राम पुलिस के सामने जो सिया की फैमिली है, उसने एक कंप्लेंट फाइल किया. हालांकि जो गुरुग्राम पुलिस है, जाहिर सी बात है, वो फादर या वकील के बयान के आधार पर आगे सेक्शंस उसमें ऐड नहीं कर सकती, विक्टिम के स्टेटमेंट की जरूरत है. तो बहुत मुमकिन है कि आज गुरुग्राम पुलिस जो सिया है उसका स्टेटमेंट भी वो बिल्कुल लेगी, और उसके बाद जो केस है उसको आगे बढ़ाएगी. लेकिन एक बड़ा बयान है, दो दिन से ये पूरा मामला चल रहा था, और अब सिया वो सामने आई है और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किस तरह से जब वो बाइक राइडिंग कर रहे थे, उसके वो और उसके जो दोस्त थे, उस दौरान इंटेंशनली जो कार ड्राइवर है उसने आके बाइक में टक्कर मारी, और जिसके बाद बाइक डिसबैलेंस होकर गिर गई. गनीमत यह रही कि उसमें बहुत ज्यादा उसको इंजुरी नहीं आई है, अब वो सेफ साउंड है, और उसने मीडिया के सामने आकर जो पूरा हादसा था उसकी जानकारी सामने रखी है.
0: जी अरविंद, हमारे साथ बने रहिए. लेट्स वंस अगेन लिसन इन टू व्हाट द विक्टिम सिया हैड टू से अबाउट द एंटायर एक्सीडेंट.
2: एक्सीडेंट जब हुआ तो जितने भी जिन लोगों ने देखा, मेरी बाइक का पीछे का ब्रेक टूट गया था, आगे का ब्रेक टूट गया था, और वो बाइक मतलब प्रॉपरली चलाने लायक नहीं थी. जो भी दूसरे वहाँ पे राइडर्स ने मुझे देखा, एक किसी ने मुझे पीछे बिठाया और हम पहले बाइकर बन लेके गए. मैंने वहाँ पे हीट पैच वगैरह जो भी चीज़ें थी मैंने वहाँ ऑर्डर करी, वहाँ पे मैंने लगाई. फिर उसके बाद एक घंटे, क्योंकि मैं लिटरली टेरिफाई हो गई थी, आई वॉज लिटरली शेकिंग, मेरे से बिल्कुल भी बाइक नहीं चल रही थी. एंड फिर एक दो राइडर्स ने मतलब मेरी एक ने बाइक चलाई, एंड मैंने किसी और की बाइक राइड करके मैं यहाँ तक आई. देन फिर मैंने अपनी बाइक स्विच करी, फिर मैं अपने घर पे उस बाइक को लाके मैं पहुंची.
0: So the victim has narrated the ordeal, what exactly transpired, how she was being chased, and how eventually the driver hit her intentionally and then also fled the spot. And she has also raised concerns about the law and order situation. But the big question that has been raised by the victim herself is that it has already been 2 days and the accused is giving interviews and bites to the media. But why are the cops not able to arrest him as of yet? So that's the big question. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. We'll get you more news and updates on the other side. Stay with us.

0: first up, we get you breaking news coming in the Gurugram case, where the goon driver who is roaming around absolutely free, biker Sia, who's spoken out. She said that the car chased me and I got scared. She's also said that the driver and the others in the car were visibly drunk. She stated that the only male occupants who were there in that car when they hit her, Sia has said that attempt to murder charge must be added because this is a hit and run case, is what she has claimed. Biker Sia, who's mentioned the India Today interview, where she said that the driver, Besla, who is openly speaking to the media, but the cops have still not been able to nab him. She's also said that I warned the driver not to come close. Despite that, he did what he did. She said that I was shaken, terrified after he hit my bike. 50 hours on, where is the goon driver, Besla, is the question that is being asked. Let's listen in to what she said.
1: आपको पहली बार इशारा किया, पहली बार क्या आप लोगों को उसने आपको कब देखा और किस तरीके से, वो पूरा सीक्वेंस बताइए क्या हुआ?
2: See, मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कब देखा, क्योंकि देखिए मैं अपनी लेन में अपने आप को देख के मैं चलाऊंगी, कौन सी गाड़ी मेरे आसपास चल रही है, ठीक है, मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी कि उसमें कौन है क्या है
1: जी।
2: जो पहली चीज थी वो मेरे बाइक के साइड से बहुत तेज अपनी गाड़ी लेके गया, तब मैंने उसको नोटिस करा। मुझे लगा कि भाई ठीक है, हुआ होगा, नहीं देखा होगा, वो इंसान जल्दी में होगा। अगर आप इतनी तेज लेके गए हो तो आप सीधा निकलो ना, आपका क्या तुक बनता है? आप आगे रुक रहे हो, मुझे एक्शन कर रहे हो, फिर उसके बाद आप पीछे से आगे ठोक के भाग जाते हो। गाड़ी में जो जब उसने शीशा डाउन करे, उसमें दो लोग मुझे आगे दिख रहे थे, ठीक है, और जितना मुझे लग रहा है पीछे भी दो लोग थे, काले शीशे थे पूरे गाड़ी के, तो मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं दिख रहा था एंड मैं इतना फोकस से भी नहीं देख पा रही थी क्योंकि मैं बाइक राइड कर रही थी। एक्सीडेंट जब हुआ तो जितने भी जिन लोगों ने देखा, मेरी बाइक का पीछे का ब्रेक टूट गया था, आगे का ब्रेक टूट गया था, और वो बाइक मतलब प्रॉपरली चलाने लायक नहीं थी। जो भी दूसरे वहाँ पे राइडर्स ने मुझे देखा, एक किसी ने मुझे पीछे बिठाया और हम पहले बाइकर बन लेके गए, मैंने वहाँ पे हीट पैच वगैरह जो भी चीज़ें थी मैंने वहाँ ऑर्डर करी, वहाँ पे मैंने लगाई। फिर उसके बाद एक घंटे, क्योंकि मैं लिटरली टेरिफाई हो गई थी, आई वॉज लिटरली शेकिंग, मेरे से बिल्कुल भी बाइक नहीं चल रही थी, एंड फिर एक दो राइडर्स ने मतलब मेरी एक ने बाइक चलाई एंड मैंने किसी और की बाइक राइड करके मैं यहाँ तक आई। देन फिर मैंने अपनी बाइक स्विच करी, फिर मैं अपने घर पे उस बाइक को लाके मैं पहुँची। लॉ एंड ऑर्डर को लेके वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, पुलिस का ये काम होता है, ट्रैफिक पुलिस वालों का ये काम होता है बाइकर्स को लेके कि भाई वो बाइक चला रहे हैं, एग्जॉस्ट है, आपने क्या कर रखा है, आप बहुत जल्दी उनका चालान कर देते हैं। पर किसी बाइकर वाले को कोई मार जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, तो उन लोगों का क्या, उनकी क्या जान आपके लिए कीमती नहीं है? जब तक कोई बाइकर वाला ठुक के मर ना जाए तब तक क्या लॉ एंड ऑर्डर उठ के आएगा? नहीं। अगर आप बाइकर पे इतनी पाबंदी लगाते हैं गुड़गांव में, तो आप ये भी तो देखिए जो फोर व्हीकल चला रहे हैं, जो लोग इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: इस वक्त हमारे साथ रोशन चौहान जी हैं। रोशन जी, पुलिस आई थी गुड़गांव? पुलिस आई थी
3: गुड़गांव, पुलिस यहाँ नहीं आई थी, हम गुड़गांव पुलिस के वहाँ पे गए थे, गुड़गांव 56 सेक्टर में
1: कंप्लेंट देने के लिए। एफआईआर दर्ज हो गई?
3: हाँ, एफआईआर दर्ज उन्होंने एक नॉर्मली मीडिया के आधार पर उन्होंने कर ली थी, और दूसरी कंप्लेंट हमने राइटिंग में जाकर दी है, जिसकी रिसीविंग भी उन्होंने हमें दे दी थी, और उसके अंदर यही था कि भाई ये जो धाराएं हैं इनको और सख्त करा जाए, हिट एंड रन का और अटेम्प्ट टू मर्डर वाली धाराएं उन पे लगाई जाए, क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं दिख रहा, ये एक्सीडेंट करने की बहुत जबरदस्त कोशिश की जा रही है। वो तो किस्मत अच्छी थी बच्चे की, जो इतनी दूर चोट लगने के बाद वो घर तक आ गई, नहीं तो खुदा ना खास्ता वो तो वहीं रोड पे ही जिस प्रकार से उन्होंने हिट करा था तो बहुत चोट आ सकती थी और कुछ भी हो सकता था।
1: क्या सिया का स्टेटमेंट गुड़गांव पुलिस ने अभी तक दर्ज किया है?
3: नहीं, अभी उन्होंने दर्ज नहीं करा, वो अब बयान लेने के लिए आएंगे और उनके बयान भी कराएंगे और 164 वाले भी बयान कराएंगे उनके।
1: आपने सुना होगा कि जो बैंसला है, जो ड्राइव कर रहा था कार, उसका कहना था कि पिंच किया जा रहा था।
3: अरे भाई, कौन किसको पिंच कर रहा था? चार चार लोग आप गाड़ी के अंदर आ रहे हो और ये आपको पिंच कर रहे हैं, और वो एक अपनी स्टेटमेंट में करा थे जी 28 बाइकर थे, वीडियो तो हम भी देख रहे हैं, 5 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर एक से दो से ज्यादा कोई लोग नहीं थे, और आप ही गाड़ी को आगे लेकर आ रहे हो, आप ही गाड़ी को जबरदस्ती हीट करके जा रहे हो, और जबकि आपको बिटिया कह रही है कि अंकल थोड़ा आप डिस्टेंस बनाइए, आप गाड़ी थोड़ी दूर रखिए, और आप यूं कह रहे जी आप स्टेट कर रहे थे उसको, और उसके बाद जब वो गाड़ी आगे लेके साइड पे चलती है तो आप एकदम गाड़ी की रेस देके उसको हीट करके फिर निकल रहे हो।
4: वो तो गनीमत थी कि चोट ज्यादा नहीं लगी,
3: उन्होंने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी।
4: और जो बाइकर ने आगे जाकर के रेड लाइट पे उसको रोका था तो क्या बातचीत हुई थी?
3: उसमें
4: आपकी बात
3: ना, मेरी तो बात नहीं हुई, उसके अंदर यही था कि वो तो लोग कह ही रहे थे आप एक मिनट रुक जाइए, पर कहीं ना कहीं उनको ये डर था अभी मौका वारदात पे अगर पुलिस अरेस्ट होते हैं तो उनकी जो जिस प्रकार से बेटी गाड़ी थी कि उसको लगा कि उन सभी ने नशा कर रखा है, वो बात भी उजागर हो सकती थी, इसलिए भाग गए होंगे।
5: ध्यान से उस वीडियो को देखना, इस तरह कस्टमाइज कल की बात है, कल ही डाल देते ना साथ साथ। अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी गलती है, ठीक है जी, हमने लग गई हमसे रोड पे लग जाती, चलो हाउसीलर नहीं बता देता हूँ, वो पीछे से आ रहे थे आगे ले गए, ठीक है जी, मैं आगे आ गया। अब जो वीडियो हो जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं उससे। मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की पे ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक। मैंने उससे ये बोला था, और उसके साइड में लड़का, दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं पूरी वीडियो डलवाऊ ना जी।
6: अच्छा एक बात बताइए,
5: मैंने बोला था, पहले सुन लो मेरी बात, मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार, मैंने कि हमारे हमें टीज मत करो, बार बार टीज मत करो, लग जाएगी। अच्छा जी ठीक है, फिर मैंने कहा जाने दे। फिर वो फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था तो वो मेरे आगे कैसा है आप सोचो ना, जब मैं यूँ कह रहे थे कि निकल गया था फेस, आप वीडियो में देखना मैं निकल गया, अच्छा फिर आगे आगे चलो कोई नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है। इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है साइड में, उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता। अच्छा सुनो आप इनको देखना, मैं जो मैं मेरे, ठीक है, इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, अब प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो, उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी, और वहाँ यू टर्न था, मैं यू टर्न के चक्कर में। अच्छा अब जाती है थोड़ा सा इधर, है
6: अब नॉर्मली
5: लग गई मुझे, तो
6: ड्राइविंग में ये सिखाया जाता है कि अगर चलो हिट भी होगी कोई बात नहीं, सड़क पे चलते
5: हैं। मेरी गाड़ियों में कई बार लग ली,
6: आपको लगता नहीं कि आपको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए?
5: बताता हूँ उसका लिए, बिल्कुल सही जवाब, मैंने भाई से बोला मैंने क्या रुक जाना चाहिए, ठीक है, मुझे दुख हुआ बड़ा उस लड़की को, देखो मैंने जानता, मुझे जमीन पता लड़की है, उसने जब हेलमेट टेस्ट किया था तो मैंने कहा ओके वेरी गुड, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आप मुझे मंदिर में घुसा लो।
6: सुनो आप बात है कि आपको रुकना नहीं चाहिए।
5: अच्छा रुकने की बताता हूँ मैं, मैंने जैसे आगे बढ़े वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पे लग रहे, मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे, फिर भी मैंने बत्ती पर रोकी, मैंने शीशा डाउन किया, मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात, मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे समझ रहे हो मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने, वो एक लड़के ने, कि भाई फायदा नहीं है रुकने में, निकल लो।
6: अच्छा
5: समझ रहे हो, ये बात थी, अरे मैं क्यों भागता भाई, मैं तो खुद हेल्प करता हूँ लोगों के।
6: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया या आपने अपनी बात क्लेरिफाई करने की कोशिश की?
5: मैंने अपने DSP साहब, मैंने उनसे बोला कि सर मेरे क्या नाम है, वीडियो डाली उन्होंने ऐसे एडिट करके, छोटे छोटे क्लिप जोड़ के मैं उसमें विलेन दिखा रखा हूँ, विक्टिम कार्ड वो है, विक्टिम कार्ड खेल रहे, चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उसके लिए किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा, अच्छी लड़की मेरी गलती लगा लो, चलो मुझसे लगी बड़ी गाड़ी, लेकिन ना तो वो बाइकर्स की रोड है ना कुछ। अच्छा सुनो मैंने करी है अपने DSP साहब, उनसे बोल दिया मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये सच्चाई है और ये बात, और मैंने कहा इसको हाईलाइट इतना क्यों करा जा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों करा जा रहा है, क्या कुछ पहली बार स्पेशल वो हुआ क्या? मैं मेरे नाम आज तक एक केस नहीं है, हिट एंड की सारी चीज़ें कर, अभी दोपहर पीछे CI मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, CBI जा रही है, CIA जा रही है, क्या कर दिया मैंने, मुझसे संपर्क करो ना, और उस बहन जी से मैं बोलता हूँ, उस मैडम जी से, कि आप मुझे बताते, जब पता लग गई थी मुझे बताते, कोई मेरे लिए कुछ वीडियो डाल रहा है, अरे क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी क्या नहीं करी, वो तो मुझे पता।
6: फिलहाल अब आप क्या कहना चाह रहे हैं पुलिस से, क्या कहें?
5: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं,
6: अगर गुड़गांव पुलिस संपर्क करती है या आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुड़गांव पुलिस से?
5: हाँ बिल्कुल, मैंने बोल दिया सर से।
0: So there you heard from Kalyan Baislan how he's trying to completely change the narrative, because the video itself of what was captured on that bike does the talking of what may have happened during those crucial moments. But the fact that he's free even now, the fact that the police has still not nabbed him and he's openly speaking to the media, a point that has been raised by biker Sia, who has spoken out. She's put out her entire version to say how her car, how that particular car chased her, how she got scared, how the driver was certainly inside, but because the car had dark glasses, her suspicion is that there were about 3 to 4 people in that car. But she's also stated, according to her version, that the men looked visibly drunk. There were only male occupants in the car. And even as the FIR has been filed, she has stated that attempt to murder and hit and run charges that must be pressed against Kalyan Baislan. Biker Sia, who's mentioned the India Today interview, she said that this man is openly speaking to the media, but the cops have still not nabbed him. He's at free right now. And he was the one who had warned that she should not mess with him. And that is how he came after her and raised the car against her bike. It could have cost her her life. It could have had very serious implications. But Kalyan Baislan, who continues to be on the defensive, and there you see how he changes the narrative completely. Biker Sia, who said that I warned the driver not to come close. I was shaken with what happened. I was terrified after that hit. It's been 50 long hours that that man has still been free. He has not been caught. The goon driver, Kalyan Baislan, who thinks he was entitled enough to hurt the rider, and how he ran from there. Another point that Sia has raised, who has said that if his intentions were not faulty, then why is it that he did not stop after that? Why is it that he ran away from the site? Now, the bigger question, Gurugram goon, who's been let off very easily, no tough charges that have been pressed against him in the FIR. BNS Section 125, negligent act that puts human life in danger. And remember, this particular charge is bailable. The other charge that has been pressed, PNS Section 281 of rash driving, causing injury to a person. This, again, is a bailable charge. Now, this is according to the Gurugram police and the details that have emerged of the FIR so far. No name of the accused that has been mentioned in that FIR. The name of the accused in the FIR says unknown person. So there you see how the story is now turning out. Kalyan Baislan, the man who's out there, the man who's been identified in those videos, the CCTV footage, the camera that was installed on Sia's bike, the man who's openly talking to the media, the man who's out there, his identity is established, but the police in its FIR has said unknown person in the FIR that they have filed. All of this is according to the Gurugram police, and that is exactly where Sia is raising questions to say that when that man has been identified, why is it that he is still roaming around free? Why is it that the cops have still not nabbed him? Himanshu Mishra joining us live on the broadcast. Himanshu has been tracking all the developments in this case. Himanshu, aapko police se aur kya jankari aa rahi hai? Kyun FIR mein Kalyan Baislan ka naam mentioned nahi hai? Abhi tak usko pakda nahi gaya hai. Kya version hai police ka?
4: देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो स्वतः संज्ञान पुलिस ने किया था, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, पुलिस ने उस वायरल वीडियो को देखा, न तो उसमें कंप्लेनेंट और न ही एक्यूज, किसी की आइडेंटिटी क्लियर थी उस वक्त जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तो ये पुलिस ने अपनी तरफ से वायरल वीडियो के आधार पर उस एफआईआर को दर्ज किया था, और तब तक पुलिस के पास कोई भी कंप्लेन शिवानी चौहान की तरफ से नहीं दिया गया था। और उसके बाद चूंकि हुआ क्या था कि एक्सीडेंट, जैसे हमारी अभी शिवानी से बात हुई, शिवानी ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद वो लोग पहले तो मैनेज किए, उसके बाद उन्हें चोट लगी थी, वो मेडिकल के लिए गए, फिर घर आए, रास्ते में बाइक उन्होंने चेंज की, उसके बाद वो घर पहुंचती हैं, और यहां पर आने के बाद जब वो अपने घर वालों से बात करती है, फिर कल वो एडवोकेट के साथ उनके फादर जाते हैं, और वहां पर जाकर के पुलिस को उन्होंने कंप्लेन दी, और उसमें उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर और हिट एंड रन के चार्जेस लगाने की मांग की, और उसके पहले पुलिस ने इस एफआईआर को दर्ज कर ली थी, और उस एफआईआर में अननोन के अगेंस्ट और जो धारा है, क्योंकि चोट बहुत ज्यादा नहीं थी उसमें जो पुलिस ने देखा, और उस आधार पर एफआईआर की थी। अब चूंकि कंप्लेन दी गई है। जानकारी यह है कि गुड़गांव पुलिस कुछ देर में यहां पर आएगी और यहां पर आने के बाद वो सिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद जो डिमांड्स होंगी, जो वीडियो एविडेंसेस कहेंगे, उसके आधार पर न सिर्फ नाम जुड़ेगा बल्कि और धाराएं जुड़ने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि वीडियो एविडेंस जो है वो सब कुछ कहता है। हालांकि उसके आगे की क्या कहानी है, उसके पहले क्या कुछ हुआ था, ये कितना मायने रखेगा ये पुलिस पे तय करता है, उसकी जांच पे तय करता है। जी
0: मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बने रहिए हमारे साथ। लेट्स वंस अगेन लिसन टू व्हाट सिया हैज सेड, आफ्टर व्हिच वी विल गो बैक टू माय कॉलीग हिमांशु।
2: Let's hear this and उसके बाद मैं बताती हूँ फिर चीजें।
7: बहुत जोर जोर से ले गए कई बार, फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं, मैंने कर रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी, ये 22-23 जने थे टोटल। इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई, दो क्यों दिखा रहे, दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा, दिखाओ ना उसको फ्रेंड को, नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में। तो कहने का मतलब ये है, मैं उस लड़की के लिए, मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ वैसे।
2: ये इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे। वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें। और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने ऑब्वियसली मेरे बाल पीछे, बहुत लंबे बाल हैं, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे और वो दो वीडियो भी क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए क्या दो वीडियो इनफ नहीं है।
0: I'll take this back to my colleague Himanshu, who continues to track all the developments. Himanshu, कल से ये story सभी news channels पर है, सबको पता है इस incident में क्या हुआ है, क्यों गुरुग्राम police का action इतना slow है। अभी आपने कहा कि वो सिया से मिलेंगे, उनका record statement record करेंगे और उसके बाद इस बात की गुंजाइश है कि और charges add किए जाएंगे और शायद कल्याण बैस्ता को arrest भी किया जाएगा, but slow क्यों है process अभी तक?
4: देखिए, शुरुआती 24 घंटा तो कंप्लेन जब नहीं पहुंची थी तो पुलिस ने उस बारे में स्वतः संज्ञान लेके एफआईआर की। लेकिन अगर हम बात सिया की करें यहां पर, तो देखिए सिया खुद कह रही है कि अगर बाइकर से कोई गलती हो जाती है तो तुरंत चालान काट दिया जाता है, लेकिन जब एक्सीडेंट हो, उसको चोट लगे, तो कोई जल्दी उस पर एक्शन नहीं होता है। ये सिया ने अभी खुद कहा और कहा कि अगर बाइकर की जान चली जाती है तो उसके बाद ही एक्शन होता है। तो ये गंभीर सवाल जो बाइक लवर है आपका, ये क्योंकि वो पूरा इनका ग्रुप होता है, ये लोग बाइक लेके जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन ये लोग निकलते हैं और लंबे ट्रिप पे जाते हैं, तो ऐसे में उनके ये सवाल जो है वो अपने जगह पे कहिए कि वाजिब है उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि आखिर जब बाइकर को चोट लगती है तो उस पर त्वरित एक्शन पुलिस की तरफ से क्यों नहीं लिया जाता है। अब जाहिर तौर पर अब यहाँ पे ये देखना होगा कि पुलिस की टीम कब आती है, कब स्टेटमेंट दर्ज होता है और कब आगे की कार्रवाई होती है। तकरीबन आप देखिए 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, एफआईआर दर्ज हुए, कंप्लेन दिए भी दर्ज काफी वक्त हो गया, तो यहाँ पे सवाल तो निश्चित रूप से खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे, अब तक की अगर हम बात करें, अब तक की इन्वेस्टिगेशन का ये पहलू है कि कंप्लेन दिया जा चुका है, सिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, अब आगे पुलिस का क्या एक्शन रहता है, आगे पुलिस इस पूरे केस को कैसे लेके जाती है, जो वीडियो एविडेंसेस हैं या फिर जो पूरा सीसीटीवी, क्योंकि देखिए जगह जगह सीसीटीवी भी लगे, जो कैमरे बाइक्स में लगे हैं, जो बाइकर्स अपने लगा के चलते, इसके अलावा पूरा सीसीटीवी का ट्रेल भी पुलिस निकालेगी, क्योंकि जगह जगह रोड पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो ऐसे में वो सीसीटीवी फुटेज भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी सारी चीजें देखते हैं कि पुलिस ने जो टीम बनाई है वो कैसे इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ती है। जी
0: हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से सुनेंगे कल्याण बैस्ला ने क्या कहा है।
5: ध्यान से उस वीडियो को देखना, इस तरह कस्टमाइज, कल की बात है, कल ही डाल देते ना साथ साथ। अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी गलती है, ठीक है जी, हमने मार लग गई, हमसे रोड पे लग जाती है, चलो तहसीलदार को बता देता हूँ, वो पीछे से आ रहे थे, आगे ले गए, ठीक है जी, मैं आगे आ गया। अब जो वीडियो जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं उससे। मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की पर ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक। मैंने उससे ये बोला था, और उसके साइड में लड़का दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं पूरी वीडियो डलवाऊँ ना जी।
6: अच्छा एक बात बताइए,
5: मैंने बोला था, पहले सुन लो मेरी बात, मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार मैंने कि हमारे हमें टीच मत करो, बार बार टीच मत करो, लग जाएगी। अच्छा जी ठीक है, फिर मैंने कहा जाने दे। फिर वो फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था तो वो मेरे आगे कैसा है आप सोचो ना, जब मैं ये कह रहे थे कि निकल गया था फेस, आप वीडियो में देखना मैं निकल गया, अच्छा फिर आगे आगे चलो कोई नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है। इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है साइड में, उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता। अच्छा सुनो आप इनको देखना, मैं जो मैम ये ठीक है, इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो, उस साइड वाली सफ़ेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी, और वहाँ यू टर्न था, मैं यू टर्न के चक्कर में। अच्छा अब जाती है थोड़ा सा,
6: अब नॉर्मली
5: लग गई मुझे तो
6: पूरा। ड्राइविंग में ये सिखाया जाता है कि अगर चलो हिट भी होगी कोई बात नहीं, सड़क पे चलते
5: हैं। मेरी गाड़ियों में कई बार लग ली,
6: आपको लगता नहीं कि आपको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए?
5: बताता हूँ उसका लिए, बिल्कुल सही जवाब। मैंने भाई से बोला, मैंने क्या रुक जाना चाहिए, ठीक है, मुझे दुख हुआ बड़ा उस लड़की को, देखो मैंने जानता, मुझे जीवन पता लड़की है, उसने जब हेलमेट रेस किया था तो मैंने कहा ओके वेरी गुड, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आप मुझे मंदिर में घुसा लो।
6: सुनो आपको रुकना नहीं,
5: अच्छा रुकने की बताता हूँ मैं। मैंने जैसे आगे बढ़े, वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पे लग रहे, मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे, फिर भी मैंने बत्ती पर रोकी, मैंने शीशा डाउन किया, मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात, मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे समझ रहे हो मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने, वो लड़के ने, कि भाई आयदा नहीं है रुकने में, निकल लो।
6: अच्छा
5: समझ रहे हो, ये बात थी, मैं क्यों भागता भाई, मैं तो खुद हेल्प करता हूँ लोगों के।
6: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया या आपने अपनी बात क्लेरिफाई करने की कोशिश की?
5: मैंने अपने DSP साहब, मैंने उनसे बोला कि सर मेरी क्या नाम है वीडियो डाली उन्होंने ऐसे एडिट करके, छोटे छोटे क्लिप जोड़ के मैं उसमें विलन दिखा रखा हूँ, विक्टिम कार्ड वो है, विक्टिम कार्ड खेल रहे, चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उसके लिए किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा, अच्छी लड़की मेरी गलती लगा लो, चलो मुझसे लगी बड़ी गाड़ी, लेकिन ना तो वो बाइकर्स की रोड है ना कुछ। अच्छा सुनो मैंने करी अपने DSP साहब उनसे बोल दिया, मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये सच्चाई है और ये बात, और मैंने कहा इसको हाईलाइट इतना क्यों करा जा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों करा जा रहा है, क्या कुछ पहली बार स्पेशल वो हुआ क्या? मैं मेरे नाम आज तक एक केस नहीं है, हिट एंड रन का क्या मतलब है सर? अच्छा मैं पिटता हूँ
6: आप, बताऊँ पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये बात आपको कब पता लगी?
5: मुझे तो आज ही पता लगी सारी चीज़ें, अगर अभी दोपहर पीछे CI मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, CBI जा रही है, CIA जा रही है, क्या कर दिया मैंने, मुझसे संपर्क करो ना, और उस बहन जी से मैं बोलता हूँ, उस मैडम जी से, कि आप मुझे बताते, जब पता लग गई थी मुझे बताते, कोई मेरे लिए कुछ वीडियो डाल रहा है, अरे क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी क्या नहीं करी, वो तो मुझे पता।
6: फिलहाल अब आप क्या कहना चाह रहे हैं पुलिस से, क्या कहें?
5: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं,
6: अगर गुड़गांव पुलिस संपर्क करती है या आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुड़गांव पुलिस से?
5: हाँ बिल्कुल, मैंने बोल दिया सर से।
0: And we cut across to more breaking news coming in. Christian groups who have met with Congress Chief Mallikarjun Kharge, the delegation has sought repeal of Karnataka anti-conversion law. The latest coming in after last BJP government had passed anti-conversion law in 2022, Christian groups are now seeking 1% quota in Karnataka. Seeking Christian nominee in Karnataka Legislative Council, Christian groups who sought larger share in government posts. The Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Act, often called as the anti-conversion law that was passed in 2022 to regulate and penalize unlawful religious conversions. The Christian delegation has sought Mallikarjun Kharge's intervention on issues including the repeal of the Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Bill 2021, commonly referred to as the Anti-Conversion Bill, and greater political and administrative representation for the Christian community. The delegation has also demanded the nomination of a Christian representative to the Karnataka Legislative Council and sought 1% exclusive reservation for the Christian community under the backward class classification. It highlighted the socio-economic challenges that are faced by sections of the Christian community and urged the government to take measures to improve opportunities in education, employment and other areas of development. Nagarjun Dwarka joining us live on the broadcast. Naga, do give us details of what the delegation has demanded in front of Mallikarjun Kharge and how the Karnataka government is responding to it.
8: In fact, the Archbishop himself met the Congress president about having 1% reservation for Christian community under the backward class quota, and also saying that Christians should get a nomination in the Legislative Council. Now, four such seats are up for grabs, and Congress party should nominate a Christian member, is what Archbishop also said. And also, telling Kharge that Christians also should be given a chance to get boards and corporations post as chairman and vice chairman when the government appoints, and so that Christian community should not be ignored as minority, because a lot of Muslims get representation while Christians don't get. They are seeking as of now 1% reservation in backward class quota, and also telling them that to repeal the anti-conversion law that was passed in the 2022 BJP government, where forceful conversions cannot happen and only legally conversions can happen. And that's what the Archbishop, the memorandum has been given. We'll have to yet to wait and hear what the government has to say about this.
0: All right. Many thanks for getting us those details. Meanwhile, Tamil Nadu cops have registered a case against DMK MP A. Raja. This is based on a complaint filed by TVK Neta Karthik for allegedly making derogatory remarks against State Minister C.T. Nirmal Kumar during a DMK protest held at Saidapet on the 12th of September. DMK MP A. Raja, who made a personal attack on Minister Nirmal Kumar, where he said, "I have doubts who you were born to," unquote. Yet another statement by DMK Neta against women, where Minister Nirmal Kumar had earlier stated no records to show Stalin was arrested under MISA. This statement that was the reason that DMK MP A. Raja attacked Minister Nirmal Kumar personally. Listen in.
9: Raja Pondavargal, Munnal Amaichar Sagar Babu Pondavargal, Matrum Palver Nirvahil, Avargal Pesuvathu Migunda Varuthathai Erpaduthirukkirathu. Tamil Nadu Arasil Edhai Nokki Pogirathu. ஒரு அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்கள் எல்லாம் போய் பெண்களையும் குடும்பத்தினரையும் இடித்து வசைபாடுவது என்பது மிகுந்த வருத்தத்திற்கு வேதனைக்கும் உரியது. இதையெல்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற உணர்வு கூட இல்லாமல் இவர்கள் பேசுவது, இவருடைய பதட்டத்தை அவர்களுடைய அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகிவிட்டதோ என்ற ஒரு பதட்டத்தோடு அது பேசுறதாகத்தான் தெரிகிறது. இது திமுகவுக்கு எந்த வகையிலும் பயன் தராது. இது போல பேசுவது மேலும் தனக்குத்தானே குழி தோண்டிக் கொள்வதற்கான சமமாகத்தான் இருக்கும்.
0: And let's now listen in to what A. Raja had said against Nirmal Kumar that led to an FIR against him.
10: இப்ப ஒருத்தர் இவர் அதற்காக போகவில்லை, இதற்காக போகவில்லை, எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு. நீ யாருக்கு பிறந்த? I am doubting your paternity. Fight against. Fight against. Nonsense. In the Tarvala Kutathukku or Mugana Machal or Thalaivar. Thalai eppidi yerudho. Kaikya laadrathukane vandha.
0: Let me take this to my colleague Anagha Keshav joining us on the broadcast. Anagha, really not new in the manner in which these personal comments that have been leveled by the DMK time and again that continue to take an ugly turn, TVK once again having taken action. Do give us all the details.
11: Well, in fact, Suvesha, the case has been filed against former DMK Minister Shekhar Babu and the current Member of Parliament in DMK, Mr. A. Raja, for derogatory statements made directly against the Chief Minister and the Electricity Minister, C.T. Nirmal Kumar. In fact, the Member of Parliament, A. Raja, even questioned the paternity of C.T. Nirmal Kumar, saying he doubts to whom he was born to. Really low comments that has been made by a member who was democratically elected by the people. Very shameful comments, in fact. Many DMK leaders, including the likes of Kanimuri Karnani, they have also condemned A. Raja's statements, not really welcoming the kind of dirty personal attacks that he has chosen to make. In fact, the protest was against the Chief Minister's speech in the assembly about Nisa, and therefore, in order to condemn Chief Minister's speech, both these politicians have taken to really low depths, targeting the personal lives of Chief Minister and also another minister, even questioning his paternity, and therefore separate cases have been filed, one in Saidapet police station and the other one by Chennai Cyber Crime Wing against these two DMK netas.
0: Anika, I request you to stay on with us as we cut across to more breaking news coming in. Meanwhile, Tamil superstar Vijay Sethupathi has landed himself in a soup. Sethupathi's Big Boss remark that has sparked a massive row, where the actor spoke on leadership. Netizens smell a jive. Netizens have linked that remark to the Tamil Nadu Assembly session. The actor said that the leader does not blame opposite team during crisis. The actor also said that running away is not leadership quality. Actor stating on that show that a leader does not give tall promises and then passes on the blame. Big Boss streaming TV network that has also issued a statement saying that the comments are not to be linked to any one person. But the internet that is certainly going all about with regards to this particular comment that has been made by Vijay Sethupathi. Let me take this to my colleague Pramod Madhav, joining us live on the broadcast. Pramod, the exact details of what he said, what he meant by that, and how netizens are reading into it.
12: Well, it's very interesting to see kind of like, parallel drawing that has been happening inside Big Boss Season 10 show and what happened in the Assembly Suresha. Because what's happening right now is that on one end, BJP government promised ₹2,500 per month for women in the state of Tamil Nadu, which for now it's only at ₹1,000. And also, six LPG cylinders were promised, but for now the Chief Minister has initiated with three LPG cylinders and which came under severe criticism. What's happening here is that like Vijay Sethupathi was actually making comments about what was happening inside the Big Boss Season show, and he actually made one of the person who has been elected as a leader, and he was actually addressing that particular person, stating that you should, like, without knowing what's leadership quality or what being a leader, making tall promises and then running away when a crisis comes, blaming the opposition is not leadership, it's called cheating. This is what Vijay Sethupathi said, but it was completely on the particular show and the person who has been chosen as a leader in that particular show. However, now netizens are drawing a parallel between these two, even forcing the private channel to go ahead and even give issue a clarification coming, stating that this is not connected to any particular person or organization, Suresha.
0: All right, Pramod, many thanks for getting us those details. Moving on, amid criticism over his UK visit, Tamil Nadu Chief Minister Vijay has announced a major investment commitment for the state. Tamil Nadu government has signed investment commitments worth around 12,300 crore rupees, expected to create more than 9,400 jobs. The biggest deal is with Samvardhana Motherson International, which has committed 11,000 crore rupees over 5 years for design, engineering, manufacturing, assembly and logistics facilities. The project is expected to create nearly 7,000 jobs. EY has committed another 1,000 crore rupees for a global capability center with more than 2,000 jobs expected. But the opposition is not impressed. AIADMK has questioned why Vijay travelled all the way to the UK to secure an investment from a company based out of Noida. It has also accused the Chief Minister of wasting taxpayers' money. BJP also slammed Chief Minister Vijay over his UK trip and questioned whether he had really gone there to attract investments. The party has also questioned the people who accompanied CM Vijay, alleging that they travelled at taxpayers' expense.
13: A company which is headquartered in Noida, which was incorporated 40 years ago in 1986 with Sumitomo Corporation in Japan, Vijay goes all the way to UK and signs MOU deals with the same company seeking investments. This is nothing but the waste of public money, like how MK Stalin used to go all out to different countries on excursion and sign MOUs for those companies which were already present and doing operations in India. The same trait is what Mr. Vijay is following. This is nothing but excursion and fun activities at the public monies at the taxpayers' expense.
0: And what exactly is Chief Minister Vijay's big UK investment push? 12,300 crore rupees that he has raised, where he said that that is the total investment commitment that has come in. More than 9,400 jobs that are expected to happen as a ripple effect. He's also said that 11,000 crore rupees have been raised by Motherson International Company, Auto and Advanced Manufacturing, that is part of this deal. 1,000 crore rupees have been raised by Ernst & Young, where they've said that Global Capability Center will be formed. 300 crore rupees that has been raised by Wilson Power, that is an electrical manufacturing company. And in all of this, Vijay is saying that not only is it a huge investment that is coming in the way of the state, but also more than 9,400 jobs that will be created as part of it. And we cut across to more breaking news coming in. Mutton shops that have been demolished after meat sale reportedly defied Ganesh Chaturthi ban in Agar Malwa in Madhya Pradesh. Administrative action that was taken in Agar Malwa district today to demolish shops that have opened in violation of a ban. Despite the prohibition in place for the auspicious festival of Ganesh Chaturthi, mutton and chicken shops in the Lal Gadha area of Agar were openly operating and selling meat. Upon receiving this information, the municipal corporation team and the Kotwali police arrived at the scene. Taking stern stance, the municipal authorities demolished three shops using a JCB machine. Kushal Singh Dorwe, who is the chief municipal officer of Agar, has clarified that the licenses of the shopkeepers who violated the rules will be cancelled. Strict action will continue against those who flout administrative orders, is what he said. And there you see how bulldozer action was taken against these mutton shops. They were demolished after meat sale reportedly defied Ganesh Chaturthi ban in Agar Malwa in Madhya Pradesh. Administrative action that was taken as part of this particular exercise in Agar Malwa district. The shops were demolished. They had opened in violation of a ban during Ganesh Chaturthi, and despite the prohibition in place for the auspicious festival, mutton and chicken shops in Lal Gadha area of Agar that were openly operating and selling meat. Upon receiving this information, the municipal corporation team and the Kotwali police arrived at the scene, and there you see the sort of action that was taken. Ravish Pal joining us with further details. Ravish, aur kya jankari aa rahi hai? Ye shops ne violate kiya meat ban Ganesh Chaturthi ke mauke par, aur saath hi kuch other aur violations bhi the jiski wajah se municipal corporation ne action liya.
14: Dekhiye yahan pe dekhiye, abhi tak dusre kisi violation ki khabar nahi hai, lekin mana ja raha hai ki jo nagar palika hai usne in dukano ko itni bulldoze kiya hai kyunki yahan pe Ganesh Chaturthi par bhi जो है वो मांस और मदिरा और मटन की जो दुकान है वो खुली हुई थी. हालांकि ये इतने ज्यादा विवादित हो गया है क्योंकि इस तरीके का कोई भी आदेश जो है सरकार के स्तर पर नहीं निकला था. ये स्थानीय स्तर पर अगर किसी ने निकाला है तो अब इसकी जांच हो रही है कि ये आदेश कब निकला था और इसका पालन क्यों नहीं हो पाया था. फिलहाल ये पता करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो कल से शुरू हुआ है और मटन की दुकानों को लेकर चिकन की दुकानों को लेकर के गणेश चतुर्थी का जो है जो 10 दिनों तक पूरा त्यौहार चलना है उसे लेकर के किसी तरीके का फैसला नहीं लिया गया सरकार की तरफ से. अब ये आगर मालवा जो कि एक बॉर्डर इलाका है, राजस्थान से लगा हुआ है जिला है, और वहां पे इस तरीके की कार्रवाई हुई है. तो इस पर फिलहाल सबकी नजरें बनी हुई है क्योंकि जिनकी दुकानें टूटी है उनका आरोप ये है कि उन्हें किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे उनकी दुकानों पर जो बुलडोजर चला है उससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आक्रोशित है. और अब इस पूरे मामले में जो है आगे की कार्रवाई जो है नगर पालिका की तरफ से भी और जो जिनकी दुकानें टूटी हैं उनकी तरफ से करने की बात की जा रही है.
0: जी रवि, शुक्रिया इस जानकारी के लिए. Meanwhile, shocking news coming in of how a big immigration breach that happened at the Delhi airport, where the MHA has now called a high-level meeting over the Air India lapse. Serious security lapse that was observed at the Delhi airport, where three Italians who left India without immigration nod. MHA has summoned Air India Group Head P. Balaji. Air India CEO has already issued a show cause notice in this connection. The lapse that is linked to Air India Amritsar Delhi flight. Three Italians who had shifted to Lufthansa flight for Munich. The passengers were escorted to the transfer area. Mandatory immigration clearance that was bypassed. Key MHA meeting that is to happen at 7 p.m. this evening, where top aviation and immigration officials are to attend the meeting. We're trying to get further details of how this lapse occurred, but the initial information that is coming in of how three Italians managed to leave India without getting their immigration. Not to this effect, the MHA has also called for a high-level meeting over the Air India lapse, a serious security lapse that happened at the Delhi airport. The MHA has summoned Air India group head P. Balaji, Air India CEO, who's already issued a show cause notice to this effect, where the lapse is linked to Air India Amritsar Delhi flight. Three Italians who had shifted to Lufthansa flight for Munich. The passengers were escorted to the transfer area. But what really happened after that? How is it that they could skip immigration? Who was the immigration officer on duty? And where is it that Air India did not conduct its mandatory check, the mandatory immigration clearance that was bypassed by these three Italians? And well, a close associate of the Lawrence Bishnoi gang deported from Canada, where Canada deported Karamveer Deo to India. Punjab police has also arrested him at the Delhi airport. Karamveer had helped Lawrence Bishnoi's brother, Anmol, in fleeing India. Anmol Bishnoi had stayed at Karamveer's house in the US. A viral video showing Anmol Bishnoi dancing and partying with Punjabi singers in the US was filmed at Karamveer's house. Karamveer used to provide shelter and legal assistance to all the gangsters who were linked to the Lawrence Bishnoi gang who arrived in the US. Karamveer shifted to Canada when the FBI began taking action against the Lawrence Bishnoi gang in the US. The Punjab police has also issued a lookout circular against Karamveer. As soon as Karamveer arrives at Delhi airport from Canada, the Punjab police that immediately took him into custody. Let me take this to my colleague Arvind Ojha, who's tracking all the details. Arvind, aur kya jankari hai Karamveer ke bare mein? Unko abhi police ne custody mein le liya hai. Next kya action hoga?
15: देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट से कस्टडी में लिया गया है. इसमें दो बड़े पॉइंट है. पहला ये कि कनाडा ने खुद डिपोर्ट किया है करमवीर देव को, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद करीबी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एसोसिएट है. नंबर दो, पंजाब पुलिस ने इसे कस्टडी में लिया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि भारत से और खासतौर से पंजाब से जितने गैंगस्टर अमेरिका पहुंचते थे, सबको लीगल असिस्टेंस यही देता था करमवीर देव. आपको याद होगा कि जब अनमोल बिश्नोई अमेरिका में स्पॉट हुआ था और अमेरिका में एक पार्टी में पंजाबी सिंगर के साथ डांस करते हुए का उसका वीडियो वायरल हुआ था, वो पार्टी करमवीर देव के घर पर ही हुई थी, ये जानकारी हमें सोर्सेज से मिली है. उसके अलावा कनाडा में एपी ढिल्लो, जो पंजाबी सिंगर है, उनके घर पर कुछ साल पहले फायरिंग हुई थी, उसमें भी करमवीर देव का रोल माना जाता है. तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए बड़ा झटका है, साथ ही साथ इंडियन एजेंसीज के लिए कामयाबी है कि कनाडा ने इसे डिपोर्ट किया है. दिल्ली एयरपोर्ट पर ये लेट नाइट जब पहुंचा, तुरंत पंजाब पुलिस ने इसे कस्टडी में लिया है. अब इसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी. जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है पंजाब में, वो तोड़ने की कोशिश सेंट्रल एजेंसीज करेगी. तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है करमवीर देव की गिरफ्तारी को. जी
0: जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप कह रहे हैं कि करमवीर को अब कस्टडी में लिया जा चुका है. सिग्निफिकेंट है क्योंकि इनका लिंक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था. पर अब यहां से किस तरह से पुलिस इस मामले को आगे लेकर जाएगी, कब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और किस तरह से वो नेटवर्क का भी कनेक्शन ड्रॉ किया जाएगा? अरविंद, ऑलराइट, नॉट टू श्योर इफ अरविंद इज स्टिल कनेक्टेड विद अस, बट विल मूव ऑन टू अदर न्यूज. Meanwhile, in Beijing, during the High Rocks event, a woman athlete who faced an emergency nature called and she refused to stop. She kept racing even after defecating mid-run, turning an already grueling challenge into a moment that was an awkward and unforgettable moment. But beyond the shock and the headlines, this incident has raised a larger question. Would the organizers have responded the same way if an Indian athlete had done exactly the same thing? We're getting you this report.
16: It's a race designed to push the human body to its absolute limit. Running, lifting, dragging, pushing, and whatnot. But for one Hyrox athlete, the biggest challenge wasn't the weights. It was making it to the finish line without stopping for a bathroom break. Yes, mid-race, nature called and she ignored it. Australian Hyrox athlete Yona Vetchik defecated during the race. She did not stop. She kept going, completed the course and finished the race despite the show. Afterwards, she shared a selfie from a hospital bed with a message that summed up the whole thing. Go hard or go home, they say. A win is a win. This post, however, has now been deleted. Then came the trolling. People questioned how she was allowed to continue. Others criticized the organizers and debated whether the incident should have been handled differently. Hyrox co-founder has apologized and has said it would issue a lifetime ban to anyone who threatened Yona. It has also proposed changes to its rules to address situations involving extreme physical discomfort and potential public health risk at competitions. But the incident has triggered a larger debate on the hypocrisy of the white man. Because if this had happened in India, would the organizer have responded the same?

0: in an attempt to kill her. Consequently, the police has registered a case of attempted murder under Section 307. The latest coming in, the Gurugram case, where Sia had spoken to the media a short while ago. She had also said, why is it that that man has not been taken into custody by the cops while he continues to give interviews in the open? And next, of course, as we heard from our sources, that the Gurugram police was yet to record the statement of Sia. Now, the latest just coming in, that Sia's family statement has been recorded, and basis this particular video that you're watching on your screens, case of attempted murder, that is Section 307, based on statements from the victim's family, has now been invoked. Let me take this to my colleague Arvind Oja, joining us on the phone line. Arvind, aur jankari dijiye, attempt to murder ab FIR mein press ho chuka hai.
1: बिल्कुल, देखिए, जो गुरुग्राम पुलिस है उसने कंफर्म किया है कि इस मामले में 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी जो सेक्शन है वो एफआईआर में ऐड किया है गुरुग्राम पुलिस ने. कल ही एफआईआर रजिस्टर्ड किया था शिव मोटो लेकर, लेकिन कल जब सिया एंड शिवानी चौहान की फैमिली ने कंप्लेन फाइल किया, उसके बाद जो गुरुग्राम पुलिस है उसने अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन ऐड किया है. और साथ ही साथ जो वीडियो है, वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि डेलिबेटरी जानबूझकर जो बाइक है उसको टक्कर मारी गई थी. तो वीडियो के आधार पर और जो स्टेटमेंट दिया गया उसके आधार पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लॉन्च किया है गुरुग्राम पुलिस ने. और जो अक्यूज्ड है उसको अब गुरुग्राम पुलिस तलाश कर रही है, उसकी अरेस्टिंग के लिए लगातार रेड कर रही है. साथ ही साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैमिली ने भी और जो विक्टिम है उसने भी ये आरोप लगाया कि जानबूझकर इंटेंशनली कार ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मारी थी जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी. ये सबको देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो सेक्शन है वो ऐड किया है एफआईआर में और अब इन्वेस्टिगेशन आगे की जा रही है.
0: जी अरविंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए. With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.

0: से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का
3: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
0: अब मैं क्या ही बोलूं?
4: परिवार, अटूट भरोसा।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: and my party president and various leaders. I have authorized all the district ministers also and the district office bearers also to just make a list of all of them. So who believes in our ideology, who believes with the party high command, Rahul ji, Kharge ji and all of us, Siddaramaiah ji, we all will work together. We will give a space to them. You know how many of them we have accommodated in various capacities, we will accommodate them. And we will work together. This country is very much important. Who said Ganesh Utsava is, it is going on, they will do it. Simply they are telling, they are trying to commercialize it. We will not do it.
1: देखिए कुछ सांकेतिक चीजें भी होती हैं. आप ने देखा ना जैसे यूएई और ईरान की बातचीत ब्रिक्स में हुई कि नहीं हुई. वहां युद्ध भी हो रहा है, आपस की तो दूरियां भी हैं, कष्ट भी है एक दूसरे से, लेकिन बातचीत तो करी है और बातचीत में कुछ सकारात्मक जो संदेश मिले हैं, जो संकेत मिले हैं, उनका भी सबने स्वागत किया है. तो ऐसा होता है जब कहीं पर अनबन हो जाती है और हम लोगों को एक दूसरे से कुछ कारणवश हमको दूरी बनानी पड़ती है, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो सब्सटेंटिव होती हैं, कुछ सांकेतिक होती हैं, लेकिन संदेश देने की आवश्यकता होती है कि संदेश कैसे दिया जाए. अब ये अगर क्रिकेटिंग बॉडी ने ये माना है, ये स्वीकार किया है कि इसको संदेश देने की आवश्यकता है और हम ऐसे संदेश देंगे, तो उस पर और क्या कहा जा सकता है. यही कहा जा सकता है कि उनका अपना निर्णय है और उचित निर्णय होगा, सोच समझ के किया होगा.

0: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: See, lot of BJP leaders and Nepal leaders are on the way. They are discussing with me.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: And first up, massive India Today impact, where the goon driver has been booked under attempted murder charge. The Gurugram police there has now registered a case of attempted murder, that is section 307, based on statements from the victim, Sia's family, and a video that went viral on social media. Late last night, Sia's father, brother and others had visited the Sector 56 police station in Gurugram, where they pleaded for justice. Sharing details during a telephonic conversation, DCP East Sandeep Malik has stated that the video clearly suggests that the young man driving the car intentionally rammed into the biker Sia in an attempt to kill her. Consequently, the police has registered a case of attempted murder under Section 307. Big India Today impact, given how we went after getting every single detail on this case, and shortly that the police also recorded the victim's family statement, has now invoked attempt to murder against that driver. Arvind Ojha joining us on the phone line. Arvind, hame aur jankari dijiye, kis tarah se Sia ki family ka statement record kiya gaya, attempt to murder चार्ज इन्वोक किया गया है, क्या इसमें और भी चार्जेस अभी ऐड किए जाएंगे?
1: देखिए, बिल्कुल, अभी जो सबसे बड़ा चार्जेस है 109 BNS की जो सेक्शन है, जिसका मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, वो ऐड किया गया है. गुरुग्राम पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है कि जो वीडियो सामने आया उसकी उसके एनालिसिस से और जो विक्टिम है उसके स्टेटमेंट से जो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली जो कार ड्राइवर है उसने टक्कर मारी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की जो सेक्शन है 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, वो एक सेक्शन ऐड किया है. जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है. मीनवाइल इंडिया टुडे से सिया ने एक्सक्लूसिवली बात भी की है, जिसमें उसने ये बताया है कि किस तरह से जब वो बाइक राइडिंग कर रही थी अपने दोस्तों के साथ, तब जो कार ड्राइवर है वो आया. और मैं
0: रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हिमांशु ने भी सिया से बात की है. लेट्स लिसन इन टू व्हाट शी सेड.
2: और वो शायद से रुकने के लिए कह रहे थे, तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है, और उसमें पीछे भी दो लोग हैं, क्योंकि गाड़ी के शीशे सारे काले थे, वो एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे. और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं, तो मुझे डर था कि टक्कर मार के मुझे गिराना थे. इसी चीज़ को देख के कि मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, तीन चार गाड़ियां हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पीछे हो जाएंगे, पर वो हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे लगा के रखें. और जब वो कट आया और मैं वहाँ बीच में गाड़ी आई, मैं वहाँ साइड में हुई थर्ड लेन में, तो उसमें दिख रहा है कि गाड़ी कितनी तेजी से पीछे आ रही, जब वो कट मारती उसकी टायर की तक की आवाज़ आती है और वो ठोक के निकल जाते हैं. तो ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है गौरकोट रोड पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, बहुत ज़्यादा स्कैरी है ये हर एक फीमेल बाइकर के लिए और हर एक उन लोगों के लिए जो संडे राइड करते हैं, जो बाइक पे जाते हैं.
3: बड़ी छोटा
4: पीछे कौन था बाइक कार में, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि उसकी बहन पीछे थी, आप देख पाई वो
3: गाड़ी
4: जो गाड़ी के अंदर कल्याण बैसला क्लेम कर रहा है कि उसकी बहन पीछे?
2: नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें लड़की थी. और प्लस एक तो वो काले शीशे करके गुड़गांव की सड़कों पे घूम रहे हैं, तो ये तो एक वैसे ही वो एक रूल वायलेट कर रहे हैं. और दूसरा कि जो मेरे पीछे जो मेरा फेलो राइडर चल रहा था, उसने मुझे कवर करने की कोशिश करी, जो मेरी वीडियोस में दिख रहा है कि मैं हूँ और वो मेरे साइड में चल रहा है, उसके जस्ट पीछे वो गाड़ी चल रही है, तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि गाड़ी ना, उसने देख लिया था कि वो लोग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो गाड़ी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग क्या सोच रहे थे, क्या जताना चाहते थे कि वो लड़के हैं या मैं लड़की हूँ, या वो मुझे डरा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे, क्या क्या चीज़ करना चाह रहे थे, मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो जल्दी जल्दी में आए, अपनी गाड़ी कट मारा, ठोका और मर गए.
4: इंटेंशन कब क्लियर हुई, कब लगा आपको कि कार वाले की इंटेंशन गलत है?
2: जब वो मेरे साइड में आके शीशे डाउन करके जब वो इशारे कर रहे थे.
4: क्या इशारा कर रहा था, कुछ और बोला भी?
2: कुछ वो बोल रहा था और मैंने हेलमेट पहन रखा था, इतना क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, और वो इशारा इशारा कर रहा था, साइड वाला भी इशारे कर रहे थे मुझे, और मैं उनको बोल रही थी आप साइड हो जाओ, वो दूर ही नहीं हो रहे थे. अगर मैं अगर आपको कोई बोलता है आप साइड हो जाओ, तो पहली चीज़ क्या बोलेगा, साइड हो जाओगे ना, वो साइड ही नहीं हो रहे थे. और उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी मैंने बाइक के पीछे लगा के घूम रहे हैं, चेस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मेरे को तो पहले ही उसी टाइम पर डर लग गया था, तभी मैं आगे चलने की कोशिश कर रही हूँ.
3: मिश्रा जी ऑडियो गया, ऑडियो गया जी.
4: तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि गुड़गांव पुलिस ने सू मोटो लेकर के FIR दर्ज की, आप कब पुलिस के पास पहुंची और कब कंप्लेंट दिया?
2: पुलिस के पास मेरे फादर गए थे, हमारा लॉयर गया था, वो कल FIR दर्ज करवा के आए हैं, अभी पुलिस वाले आ रहे हैं. तो मैं
3: ठीक
4: तो किन धाराओं में FIR दर्ज हुई और आपकी डिमांड क्या है?
2: अभी धाराएं लगेंगी तो स्टेटमेंट देंगे, और क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस लड़के के अगेंस्ट.
4: आप लड़की हैं, आप बाइक का, वैसे भी कम लड़कियां दिखती हैं जिन्हें बाइक का शौक हो और ऐसे ग्रुप्स में बाइक चलाए, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं और कब से आप बाइक चला रही हैं?
2: सी, मेरा कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, मैं कभी अकेले भी जाती हूँ, मेरा एक कजन ब्रदर है उसके पास भी है, कभी मैं उनके साथ जाती हूँ, तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलरली ग्रुप नहीं है. और मैं ये एक साल से कर रही हूँ बाइकिंग, एंड जो बाकी फीमेल राइडर्स हैं, मतलब हाँ हम काफ़ी सी बहुत छोटा कम्युनिटी है और हम सब एक दूसरे को जानते हैं, सबको पता है कि
3: खत्म करो चल
2: इसकी कौन सी बाइक है.
4: इंसिडेंट के बाद क्या डर लगा आपको?
2: ऑब्वियसली मुझे बहुत डर लगा.
4: दोबारा बाइक चला पाएंगी?
2: सी, मैं बाइक तो चला पाऊंगी पर मुझे डर लगेगा कि मैं अकेले जाऊँ रोड पे.
4: अकेले जाओ, ग्रुप में जाने में डर लगेगा?
2: ग्रुप में क्या, मुझे गुड़गांव दिल्ली के रोड पे ही जाने में डर लगेगा.
4: तो देखिए ये शिवानी चौहान,
2: और वो शहर से रुकने के लिए कह रहे थे, तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शहर से पी रखी है, और उसमें पीछे भी दो लोग हैं क्योंकि गाड़ी के शीशे सारे काले थे, वो एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे. और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में, अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आस पास लेके आ रहे हैं, तो मुझे डर था कि टक्कर मार के मुझे गिरा ना दे.
0: And Sia's latest reaction that has come into India today, where she spoke to my colleague Himanshu, who's now joining us live on the broadcast. Himanshu, आपने अभी अभी Sia से बात की. सबसे बड़ी बात कि attempt to murder जो charge है वो invoke किया जा चुका है. Sia ने request किया था कि hit and run charge भी invoke करना चाहिए. क्या Sia का statement अभी गुरुग्राम पुलिस ने record कर लिया है या सिर्फ अभी तक family से बात की है?
5: देखिए अभी बस गुड़गांव पुलिस किसी भी वक्त पहुंच सकती है. जो अभी आज तक इंडिया टुडे ने बात किया एक्सक्लूसिव सिया से, तो सिया ने क्लियर बोला कि गुड़गांव पुलिस से संपर्क हुआ है, और गुड़गांव पुलिस जो जानकारी है फैमिली को कि गुड़गांव पुलिस, देखिए फ्रेम में हम दिखाते हैं आपको, गुड़गांव पुलिस आ गई यहाँ पर, आप देख सकते हैं गुड़गांव पुलिस पहुंच चुकी है यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए. आप ये देखिए गुड़गांव पुलिस यहाँ पर है, और हम कोशिश करेंगे गुड़गांव पुलिस से बात करने की क्योंकि गुड़गांव पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और गुड़गांव पुलिस से हमारी बात हुई थी, क्लियर था कि पुलिस आएगी, और अभी हम दिखा रहे हैं आपको. आ, आ, सर कौन कौन सी नई धारा जोड़े हैं
6: सर?
5: सब जोड़ चुके हैं. अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या किसी को डिटेन भी किया है सर? किसी को डिटेन किया है क्या?
7: बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त गुड़गांव पुलिस जो है वो पहुंची है, और इसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी
5: हैं. सर किसी को डिटेन किया है क्या सर? किसी को डिटेन किया है सर? तो आप ये देखिए गुड़गांव पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है, उन्होंने कहा धाराएं जोड़ी जा चुकी हैं, अब यहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई होगी. जो हमारे पास जानकारी है उसके तहत पुलिस ने इस मामले में धाराएं जोड़ ली हैं. जी
0: Himanshu, बने रहिए हमारे साथ. In the meanwhile, we also listened to what Kalyan Besla had said to India Today earlier when he completely tried to change the narrative and how he was on the defensive. Listen into that statement.
8: ध्यान से उस वीडियो को देखना. इस तरह कस्टमाइज कल की बात है, कल ही डाल देते ना साथ साथ. अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी गलती है, ठीक है जी, हमने लग गई हमसे रोड पे लग जाती है. चलो अब उसकी ड्रग नहीं बता देता हूँ. वो पीछे से आ रहे थे, आगे ले गए, ठीक है जी, मैं आगे आ गया. अब जो वीडियो जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ उससे। मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की पे ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक। मैंने उससे ये बोला था, और उसके साइड में लड़का दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं पूरी वीडियो डलवाऊँ ना जी।
7: अच्छा एक बात बताइए,
8: मैंने बोला था, पहले सुन लो मेरी बात, मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार मैंने कि हमारे हमें टीच मत करो, बार बार टीच मत करो, लग जाएगी। अच्छा जी ठीक है, फिर मैंने कहा जाने दे। फिर वो फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था तो वो मेरे आगे कैसा है आप सोचो ना, जब मैं ये कह रहे थे कि निकल गया था फेस्क, आप वीडियो में देखना मैं निकल गया। अच्छा फिर आगे आगे चलो कोई नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है। इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है साइड में, उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता। अच्छा सुनो आप इनको देखना, मैं जो मैं मेरे ठीक है, इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो, उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी, और वहाँ यू टर्न था, मैं यू टर्न के चक्कर में। अच्छा अब जाती है थोड़ा सा,
7: अब नॉर्मली
8: लग गई मुझे तो
7: ड्राइविंग में ये सिखाया जाता है कि अगर चलो हिट भी होगी कोई बात नहीं, सड़क पे चलते हैं।
8: मेरी गाड़ियों में कई बार लग ली,
7: आपको लगता नहीं कि आपको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए?
8: बताता हूँ उसका लिए, बिल्कुल सही जवाब। मैंने भाई से बोला मैंने क्या रुक जाना चाहिए, ठीक है, मुझे दुख हुआ बड़ा उस लड़की को, देखो मैंने जानता, मुझे जीवन पता लड़की हो, उसने जब हेलमेट टेस्ट किया था तो मैंने कहा ओके वेरी गुड, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आप मुझे मंदिर में घुसा लो।
7: सुनो आप,
8: अच्छा रुकने की बताता हूँ मैं, मैंने जैसे आगे बढ़े वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पर लग रही, मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे, फिर भी मैंने बत्ती पर रोकी, मैंने शीशा डाउन किया, मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात, मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे समझ रहे मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने, वो एक लड़के ने, कि भाई आयदा नहीं है रुकने में, निकल लो।
7: अच्छा
8: समझ रहे हो, ये बात थी, मैं क्यों भागता भाई, मैं तो खुद हेल्प करता हूँ लोगों के।
7: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया या आपने अपनी बात क्लेरिफाई करने की कोशिश की?
8: मैंने अपने DSP साहब, मैंने उनसे बोला कि सर मेरी क्या नाम है वीडियो डाली उन्होंने ऐसे एडिट करके, छोटे छोटे क्लिप जोड़ के मैं उसमें विलन दिखा रखा हूँ, विक्टिम कार्ड वो है, विक्टिम कार्ड खेल रहे, चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उसके लिए किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा, अच्छी है लड़की, मेरी गलती लगा लो, चलो मुझसे लगी बड़ी गाड़ी, लेकिन ना तो वो बाइकर्स की रोड है ना कुछ। अच्छा सुनो मैंने करी है अपने DSP साहब, उनसे बोल दिया मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये सच्चाई है और ये बात, और मैंने कहा इसको हाईलाइट इतना क्यों करा जा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों करा जा रहा है, क्या कुछ पहली बार स्पेशल वो हुआ क्या? मैं मेरे नाम आज तक एक केस नहीं है, हिट एंड रन का क्या मतलब है सर? अच्छा मैं पिटता हूँ,
7: पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये बात आपको कब पता लगी?
8: मुझे तो आज ही पता लग गई सारी चीज़ें, अभी दोपहर पीछे CI मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, CBI जा रही है, CIA जा रही है, क्या कर दिया मैंने, मुझसे संपर्क करो ना, और उस बहन जी से मैं बोलता हूँ, उस मैडम जी से, कि आप मुझे बताते जब पता लग गई थी, मुझे बताते, कोई मेरे लिए कुछ वीडियो डाल रहा है, अरे क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी क्या नहीं करी, वो तो मुझे पता।
7: फिलहाल अब आप क्या कहना चाह रहे हैं पुलिस से, क्या कहना?
8: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं,
7: अगर गुड़गांव पुलिस संपर्क करती है या आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुड़गांव पुलिस से?
8: हाँ बिल्कुल, मैंने बोल दिया सर से।
0: We cut across to more breaking news coming in. BJP's big move for Nandigram by polls, where BJP has fielded Shubhendu's slain PA's mother. Chief Minister's slain aide's mother is now the latest pick of the BJP for Nandigram. BJP has fielded Srimati Hasi Rani Rath in the Nandigram by election. She is the mother of Chandranath Rath, who was PA to Chief Minister Shubhendu Adhikari. Chandranath, who had been murdered shortly after the West Bengal Assembly elections, Chandranath Rath was murdered days after the polls. Earlier, BJP had fielded RG Kaur victim's mother, who had later won the election, and RG Kaur victim's mother had emerged victorious from the Panihati seat, you would clearly remember. BJP, in the very latest move for Nandigram, has fielded Srimati Hasi Rani Rath, as she will be fighting the by polls from Nandigram. She is the mother of Chandranath Rath, the PA to Chief Minister Shubhendu Adhikari at one point, who was later murdered. This was soon after the elections. Chandranath was murdered after the West Bengal Assembly elections had concluded. And the step that has been taken by the BJP is to field his mother from Nandigram for the by-election. A stark reminder of how the BJP had also fielded the Arjikar victim's mother from Panihati and how she had emerged victorious. And the very move that has been taken by the BJP in the West Bengal by-elections where from Nandigram, they have decided to field Chandranath Rath's mother. Chandranath Rath, who was the PA of Shuvendu Adhikari, and he was murdered shortly after the West Bengal Assembly elections. Now, the BJP having decided to field his mother to fight the Nandigram by-polls, as she will be representing the BJP from that very seat. We're trying to get further details and how exactly the decision has been made, as the BJP has decided to field Shuvendu Adhikari, slain PA. His mother will now be fighting the Nandigram by-polls, BJP's big move for this particular seat, as Chief Minister's slain aide's mother has been chosen by the BJP for Nandigram. Let me take this to my colleague Anupam Mishra joining us on the broadcast. Anupam, also a reminder of how the Arjikar victim's mother had been fielded from Panihati and how she emerged victorious in the very latest. Srimati Hasi Rani Rath, who has been chosen to fight the Nandigram by-election.
6: Well, yes, you know that Nandigram seat is vacated after Shuvendu Adhikari kept Bhawanipur seat and vacated Nandigram seat, and by-poll is announced by the Election Commission, Reji Nagar and Nandigram. And Nandigram is the one of the most prestigious seats of West Bengal, and for the past few years, it has been the hot seat where Mamata Banerjee had contested Shuvendu Adhikari and lost to Shuvendu Adhikari, and Shuvendu Adhikari won this time also. And right now, the Hasi Rani Rath, the mother of Chandranath Rath, who was killed just after the Bengal elections, who was murdered at around 9 o'clock. The mother of Chandranath Rath was made candidate, and BJP had announced her name today. And today also, she is going to file her nomination in Haldia in East Midnapur for Nandigram seat. And Chief Minister Shuvendu Adhikari is also going to Haldia to accompany to. While she will be filing the seat, she will be filing the nomination for Haldia. And this is the a kind of trend which we are witnessing from BJP. BJP had, of course, you have said that the mother of Arjikar victim was announced the candidate from Panihati, and she had won the elections. And right now, the mother of Chandranath Rath, who was the PA for and associated with BJP and with personally Shuvendu Adhikari for the last few years, and was killed, and her mother is being made candidate from Nandigram, the prestigious seat.
0: Anupam, this certainly is an important move, and again part of how the BJP has also been fighting over what had happened. Shuvendu Adhikari's PA, who was targeted and murdered after the West Bengal Assembly polls, and now the decision to field his mother from the Nandigram polls for the Nandigram by-election certainly becomes pertinent, given how the party has also been fighting for justice for Shuvendu Adhikari's slain PA.
6: Exactly, we have seen that earlier also the Arjikar victim's mother was announced by the BJP as the candidate from in assembly Bengal assembly polls, and right now the mother of Chandranath Rath, Hasi Rani Rath, has been announced. And we were getting news from the BJP sources that BJP wants to, especially Shuvendu Adhikari wants the mother of Chandranath Rath to be the candidate of BJP from Nandigram, and by announcing her name, they will also hoping to get a lot of sentiments. A lot of sentiments are associated with Chandranath Rath after the killing of Chandranath Rath, and since he was particularly from that place, from East Midnapur and near to Nandigram, so it's a good choice from BJP that they have announced the candidate as the mother of Chandranath Rath.
0: And with regards to having spoken to Srimati Hasirani Rath, has she put out any word on this decision, how she was approached by the party, why she took this decision, and also what exactly will be her pitch in the polls?
6: Well, she seems happy. She has told that Shubhendu Adhikari and BJP persons were approached her for the candidature, and she has accepted the offer. And right now, after announcement, she has also offered prayers at a temple in Nandigram. And today she will be filing her nomination at Haldia for the Nandigram seat. And more importantly, Shubhendu Adhikari is also traveling to Haldia today while Hasirani Rath will be filing her nomination. So it's a collective decision by BJP and by Chandranath Rath's family. We know that after the killing of Chandranath Rath, Shubhendu Adhikari also went to her place, his place, and he was there. He had spoken with the family members of Chandranath, and he was also in touch with the family of Chandranath. And we had information that BJP, especially Shubhendu Adhikari, wanted to contest the mother of Chandranath Rath as the candidate from Nandigram for BJP. So they were in talks, and both agreed. And right now, she had offered a prayer in a temple in Nandigram, and she will be on her way to Haldia for filing her nomination.
0: All right, let's listen in to what she said.
9: আশা প্রত্যাশার দিকে যেটা এলাকার মানুষ চাইছেন তার বেশিরভাগ কাজই আমাদের দুবারের বিধায়ক এখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র আমাদের দলের সারথি তিনি বেশিরভাগ কাজটাই করে ফেলেছেন এবং তিনি আমার সঙ্গে যদি নয় তিনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন নন্দীগ্রামের কোনো কাজই বাকি থাকবে না আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি চেষ্টা করব যে নন্দীগ্রামকে কিভাবে খুশি করা যায়
0: Meanwhile, a fresh political twist in the ongoing TMC versus Rebel saga, where one of the Rebel MPs, Jagdish Chandra Barma Basunia, has claimed that a majority of the leaders who broke ranks with Mamata Banerjee's party and joined the NCPI will soon switch over to the BJP. The Cooch Bihar MP claims 17 of the 20 MPs who had announced merger with the NCPI in June will cross over either before or after Durga Puja. He says the remaining three Muslim MPs, Yusuf Pathan, Khalilur Rahman and Abu Tahir Khan will stay with the NCPI but continue to support the NDA. The BJP, however, is distancing itself from this very claim. Bengal BJP chief Shamik Bhattacharya has said that there have been no talks on inducting the rebel MPs, insisting that it does not want to be associated with those who were rejected by the public. Team Mamata Banerjee has also hit out, calling the rebel traitors and accusing the NCPI of acting as a middleman for the BJP.
10: जनता ने वोट दिया कपड़ा बदलने के लिए नहीं कपड़े के भीतर जो इंसान है उसको बदलने के लिए तो अभी तृणमूल रास्ते में निकलने से ही लोग उसको ऊपर अंडा फेंक रहे हैं तो क्या आप लोग चाहते हैं जो मेरे ऊपर भी
0: And the latest coming in the hit and run case, accused Kalyan Besla has been arrested in Dausa in Rajasthan. A Gurugram police team that had reached Rajasthan, Kalyan Besla will now be brought back to Gurugram from Dausa in Rajasthan. Latest news just coming in of how Kalyan Besla, who had been out and about for more than 50 hours after he committed that hit and run on biker Sia, the very latest coming in of how the Gurugram goon driver has been arrested. Arrested. That's the latest that is just coming in as we are learning of how a Gurugram police team had gone to Dausa in Rajasthan where Kalyan Besla was. The police team that has reached Rajasthan, Kalyan Besla has been arrested. He will be brought back to Gurugram from Dausa, Rajasthan. The man who was openly giving interviews, he had been out and about for more than 50 hours. Sia's family statement has been recorded just a short while ago. We also got you details of how Sia's statement will be recorded any time now. Sia had demanded that all of this was caught on camera. How is it that this man is openly giving interviews? He is on the run. He has not been caught by the cops. CI demanded that attempt to murder and hit and run are the two charges that must be pressed against him. Remember, he was not even named in the FIR. The FIR that had been filed, which had earlier said unknown persons, and Kalyan Besta has now been arrested, is what we are learning. India Today, who also spoke to their sources in the police, where we had learnt of how the cops had also confirmed that the video that clearly puts out the details of how Sia was purposely targeted by Kalyan Besta. Kalyan Besta, who spoke to India Today of how he was on the defensive, how he tried to change the narrative, how he tried to say that he was innocent. But here he has been arrested and he will be brought back to Gurugram.
11: इंसिडेंट था कि जब वो गाड़ी मेरे साइड से बहुत तेजी से निकली थी और तब मैंने इतना नोटिस नहीं करा. मुझे लगा कि कहीं पे भाई कोई गाड़ी होगी बहुत तेजी से चल रही है. फिर उसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट था, जब वो मेरे साइड में आके जब वो कुछ मतलब एक बार उन्होंने थम्स अप करा, फिर बाकी वो इशारे कर रहे थे. उसके साइड में जो एक और बैठा था वो भी कुछ इशारे कर रहा था और वो शायद से रुकने के लिए कह रहे थे. तब मैंने देख लिया कि
0: Himanshu Mishra joining us on the phone line with further details of Kalyan Besta's arrest. Himanshu, aur kya jankari hai, usko kahan se arrest kiya gaya hai, kitne samay mein Gurugram wapas laya jayega?
1: Shweta, dekhiye is pure mamle mein police ki team ne jab FIR darj ki thi to uske baad se investigation shuru kar di thi aur uske baad jab yahan family ko pata chala kiya ki कि वहां पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है, तो उसके बाद वकील के साथ सिया के फादर पहुंचते हैं गुड़गांव. वहां पर उन्होंने दो धाराओं को लगाने की मांग की थी. नंबर वन धारा जो थी अटेम्प्ट टू मर्डर की, क्योंकि उन्होंने वीडियो फुटेज का हवाला दिया और कहा कि आप ये देखिए किस तरीके से लेन बदलते हुए वो आया और वहां आकर के उसने टक्कर मारी. यहां पर सिया से हमने जब उनकी स्पीड पूछी थी, क्योंकि देखिए रोड पर इस तरीके से टक्कर लगना बेहद खतरनाक हो सकता है, तो गनीमत है कि सिया को ज्यादा चोट नहीं आई. तो उनका कहना था कि चूंकि गाड़ियां आगे पीछे हो रही थी तो उन लोगों ने स्पीड तकरीबन 50 के आसपास कर ली थी और वहां पर ये गाड़ी आती है और साइड से टक्कर मारती हुई चली जाती है. ये वीडियो दिया फैमिली ने और उसके बाद डिमांड की अटेम्प्ट टू मर्डर धारा की और साथ ही साथ मांग की हिट एंड रन की, क्योंकि एक्सीडेंट किया, आपने देखा कि पीछे वो गिर गई है. इतना ही नहीं हुआ, एक बाइकर पीछे जाता है, आगे रेड लाइट पे जब वो रुकता है तो रेड लाइट पे जब वो रुका तो उनको बोला गया कि वो देखिए पीछे गिर गई है, रुकने के लिए कहा गया, लेकिन कल्याण बैसला वहां भी नहीं रुकते हैं और उसके बाद वो लेफ्ट लेके वहां से भाग जाते हैं. ऐसे में उन्होंने अपनी डिमांड रखी, जिसके बाद पुलिस ने उस एप्लीकेशन को रिसीविंग ली और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर को अपडेट किया और अब पुलिस की टीम सेक्टर 56 थाने की पुलिस पहुंची हुई है घर पे सिया के. यहां पर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बेहद महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके बाद से पूरी इन्वेस्टिगेशन में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सिया पूरे घटनाक्रम को बताएंगी. अब देखिए कल्याण जो कल्याण बैसला है उसने जो क्लेम किया है उसके क्लेम के मुताबिक कि उसके साथ उसकी बहन थी, जबकि इनका कहना है सिया का कि पीछे तो काला शीशा था, यानी कानून तो पहले यही टूट गया. किस तरीके से काला शीशा कैसे कोई करके गाड़ी में घूम सकता है, तो काला शीशा लेके के वो गाड़ी घूम रही थी और पीछे कौन था उनकी नजर नहीं पड़ी. हालांकि साथ साथ वो ये भी अंदेशा जता रही है कि तीन से चार लोग जो थे वो सभी मेल थे, फीमेल की बात वो नहीं कर रही है. अब पुलिस इसको वेरीफाई करेगी. अब देखिए कैसे वेरीफाई होगी, वो अलग अलग जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठी की जाएगी तो उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होंगी और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा. जी
0: हिमांशु, साथ ही सिया ने सवाल पूछा था कि अगर कल्याण बैसला की इंटेंशन गलत नहीं थी तो वो वहां से भागे क्यों, और अब जब उन्हें दौसा से अरेस्ट किया गया है ये बहुत साफ है कि कल्याण ने भागने की कोशिश की थी.
1: देखिए बिल्कुल साफ है, क्योंकि कल्याण बैंसला एक तो मौके पे नहीं रुका, हालांकि उसने ये बोला कि मेरी पिटाई हो सकती थी, मुझे जो साथ ही लोग थे पीट सकते थे, लेकिन वो काफी दूर थे और ऐसे में अगर उनसे एक्सीडेंट हुआ तो ठीक है, मौके पे आपको डर था कि आपको वो लोग पकड़ सकते हैं जो बाकी बाइकर्स हैं, तो आप पुलिस के पास जा सकते थे. आमतौर पर ऐसे ही होता है कि अगर आप सही थे और आपकी गलती नहीं थी तो आपने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया, आपने क्यों पुलिस से जाके नहीं बताया कि इस तरीके से एक एक्सीडेंट हुआ है. वहां
12: आते आप निकलते हैं, उसके बाद फिर आप घर पे भी नहीं मिल पुलिस आपको पाती है। तो इसका मतलब साफ है कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। और सबसे बड़ी जो चीज है, जो एविडेंस, जो वीडियो एविडेंस है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि जो हमारी बात हुई है गुड़गांव पुलिस सूत्रों से, बाकायदा एक्सपर्ट से इन वीडियोस को दिखाया जाएगा, समझा जाएगा कि ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है वो किन परिस्थितियों में हुआ है, कैसे गाड़ी टर्न की गई, गाड़ी टर्न की करने के पीछे मनसा बिल्कुल टक्कर मारनी थी या फिर कोई और वजह है। क्योंकि जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने से पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हर पार्ट को अच्छे से रखती है, ताकि कोर्ट में उसे झुठलाया ना जा सके, काटा ना जा सके। जी,
0: क्या जानकारी है आपके पास, कितने समय में कल्याण को गुरुग्राम में वापस लाया जाएगा, नेक्स्ट क्या एक्शन होगा उनके अगेंस्ट, और उनसे कब पूछताछ होगी, गाड़ी में कौन कौन था और क्या डिटेल्स थी?
12: अब कल्याण क्योंकि पुलिस के डिटेंशन में है, अब आगे जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, पूछताछ करेगी, पूछताछ करने के बाद कोर्ट में अरेस्ट करेगी, अरेस्ट के बाद कोर्ट में पेश करेगी। तो एक लंबा लीगल प्रोसीजर है और हमें नजर रखनी होगी कि किस तरीके से गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी हमारी जो बात हुई थी, जब इंस्पेक्टर सेक्टर 56 थाने के यहाँ पर पहुंचे थे तो उनसे हमारी बात हुई थी, और उसके बाद उन्होंने क्लियर कहा था कि इस वक्त वो यहाँ पर आए हैं ताकि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके।
0: हिमांशु, पहले एफआईआर में अननोन पर्सन मेंशन किया गया था, कल्याण बैसला का नाम नहीं था, साथ ही सिया की फैमिली से बात करने के बाद, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज उस एफआईआर में ऐड किया गया। अभी एफआईआर के करंट स्टेटस में क्या चेंजेस हैं, क्योंकि सिया ने कहा था कि हिट एंड रन चार्ज भी इन्वोक किया जाना चाहिए, और एफआईआर में किस किस के नाम दर्ज हैं? Not sure if Himanshu is still connected with us, but he's tracking all the developments on the ground. It's a massive India Today impact where you see how the goon driver has finally been arrested. We spoke to him yesterday. He was on the defensive. He kept trying to change the narrative. But the truth that was out there, the writing was on the wall, the video that did all the talking, the video where you clearly see how he purposefully hit Sia's bike and swerved from there and escaped from the very spot. He in his interview had also said that he feared that he will be beaten up by the crowd in case he stops there. And one thing that is very, very evident, that not only did he not stop at the spot, but remember, the arrest that has been made at the moment of Kalyan Besta is not from Gurugram. He has been arrested from Dausa in Rajasthan, which means that he was clearly on the run. He has now been arrested by the cops. He will be brought back to Gurugram, where the investigation will continue. Kalyan Besta will be questioned, because according to Sia, Kalyan is lying. Kalyan had said that it was a sister in the car, but Sia has stated to what she saw, the car firstly had dark glasses. That itself is a violation. Secondly, she said that there were about 3 to 4 men in the car. Due to the dark glasses, she could not see clearly. But she has also alleged that Kalyan Besla was in an intoxicated condition. Let me take this back to my colleague Himanshu Mishra, who's back with us on the phone line. Himanshu, aur jankari chahenge, ab aap hame live join kar rahe hain. FIR mein currently kya changes hain? Pehle unknown persons mention kiya gaya tha. Kya Kalyan Besla ka naam invoke kiya gaya hai? और भी लोगों को mention kiya gaya hai FIR mein. Abhi attempt to murder charge add kiya hai. Kya hit or run चार्ज भी ऐड होगा?
12: देखिए, इस पूरे मामले में दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण है, एक वीडियो और जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब अगर हम बताएं तो आप देखिए, पुलिस ने जो पहली एफआईआर की थी, गुड़गांव पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज की थी, पुलिस ने जो वीडियो वायरल हो रहा था उस वीडियो की पहचान की, उसकी लोकल थाने की पहचान की, स्पॉट की पहचान की, और उसके बाद गुड़गांव पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। और जो धाराएं उस वक्त पुलिस ने, चूंकि पुलिस के पास कोई कंप्लेन नहीं थी, हमने जब पुलिस से बात की उनका कहना था कि उनके पास कोई कंप्लेन नहीं थी, और उन्होंने वो एफआईआर दर्ज करने के बाद पहचान करने की कोशिश की विक्टिम से, तो उस वक्त तक विक्टिम की भी आइडेंटिटी गुड़गांव पुलिस के पास क्लियर नहीं थी, तो एक्यूज की पहचान भी नहीं हो पाई थी। इस वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले में जब एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद विक्टिम से कॉन्टेक्ट किया,
5: विक्टिम की तरफ से, विक्टिम की फैमिली से फादर और एडवोकेट जाते हैं। उन्होंने वहां पर एक रिटन कंप्लेन फाइल की जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर और साथ ही साथ हिट एंड रन की धारा जोड़ने की मांग की। उसको दर्ज करने के बाद पुलिस ने अपडेट किया उस एफआईआर को उसकी कंप्लेन के मुताबिक, क्योंकि वीडियो एविडेंसेस भी फैमिली की तरफ से दिए गए, अदर वीडियो एविडेंसेस भी दिए गए। और उसके बाद पुलिस ने टीम बनाई ताकि इस मामले की जांच, इन्वेस्टिगेशन हर पहलू से आगे बढ़ाई जा सके। जी सुशा,
0: बहुत बड़ी न्यूज है हिमांशु। अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल्याण बैसला को अरेस्ट किया जा चुका है, उनको अब गुरुग्राम लाया जाएगा। साथ ही सिया का स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड हुआ है, आपने उनसे थोड़ी देर पहले बात की जब पुलिस वहां पहुंची ही थी, तो अब किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ रही है? सिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और कल्याण को भी इस दौरान गुरुग्राम लाया जाएगा, अगली क्या डेवलपमेंट होगी इस कार्यवाही में?
5: देखिए बिल्कुल, जो लीगल प्रोसीजर है उसी तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। एफआईआर पहली दर्ज हुई क्योंकि उस एफआईआर में पुलिस ने अपनी तरफ से की थी, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें दिख रहा था कि एक लड़की गिर रही है, कार से उसे धक्का लगा है। उसके बाद पुलिस ने उसमें, चूंकि पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी, उस एफआईआर में किसी का नाम नहीं था, विक्टिम से कॉन्टेक्ट हुआ, विक्टिम ने कंप्लेन दी, विक्टिम के कंप्लेन के बाद एफआईआर में धाराएं जोड़ी गई और अब विक्टिम का स्टेटमेंट हो रहा है। इस पूरे मामले में अब जो टीम आगे बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात, जो विक्टिम अपने कंप्लेन में जो आरोप लगाए हैं उससे जुड़े अब एविडेंस पुलिस को आगे तलाशने होंगे, उसको इस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐड करना होगा। तो यानी कि ये जो वीडियो आप वायरल देख रहे हो, जो कि सिया की अपनी बाइक का है, क्योंकि देखिए सिया गिर जाती है, अब गनीमत कहां पे रहा आप ये समझिए सुशा, सिया वहीं गिर गई लेकिन उसकी बाइक घसीटती हुई गई। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जो उनका जो पूरा सेफ्टी गियर होता है उसने मदद की, अगर वो सेफ्टी गियर हाथ में नहीं पहनी होती तो जो पहला उनका हाथ जमीन पे गिरा था वही उनके लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता था, गंभीर चोट लग सकती है। लेकिन गनीमत रही कि उन्होंने पूरा सेफ्टी गियर पहना हुआ था और उसकी वजह से उन्हें चोट कम लगी। तो इन तमाम जो फुटेज जो वायरल है, जो बाइक की फुटेज है, अदर बाइक्स की जो फुटेज है, क्योंकि जो दूसरे बाइकर्स होंगे, जो इस पूरे बाइक कम्युनिटी के जो ये लोग होंगे, उनसे पुलिस संपर्क करेगी, उनके स्टेटमेंट दर्ज करेगी और उसके बाद इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जी
0: जी बिल्कुल, पर सिया ने जैसे खुद भी कहा है और हमने वो वीडियो देखा है हिमांशु, उनकी जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, किस तरह से ऐसे केसेस को एक एग्जाम्पल भी सेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग और ये जो एंटाइटलमेंट इन्होंने डिस्प्ले किया कल्याण बैसला ने, और किस तरह से अब उनको अरेस्ट किया गया है, सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।
5: जी बिल्कुल, देखिए ये एक लंबा प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर, क्योंकि कल्याण बैसला शुरुआत से कह रहा है कि उसने पहले तो जान के नहीं मारा, दूसरी चीज किसी तरीके की कोई गलत इंटेंशन होना सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि गाड़ी में उसकी बहन थी। अब ये जो तमाम दावे हैं, इन दावों को भी देखिए पड़ताल कल्याण बैसला के भी दावों की जाएगी, पुलिस तमाम जो दावे हैं उसकी पड़ताल करेगी, देखेगी पहले कि किसकी क्या पोजीशन थी। आप बता रहे हो कि आप कहां पे चले तो समय कल्याण बैसला जो हाथ से चला था वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, पूरे रूट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, कहां पर ये बाइकर जो क्लेम है, तो क्या सच में पिंच करने की कोशिश की गई? अगर करने की कोशिश भी की गई तो जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी एकदम से लेफ्ट दबती है आप देखिएगा, और लेफ्ट आकर के जो साइड वाली लेन है वहां पर पहुंचती है और वहां पर टक्कर मारती है। अब यू टर्न लेना था, क्या वजह थी, ऐसे कैसे नजर नहीं पड़ी, नजर पड़ी, एक्सीडेंट हुआ तो आप रुके क्यों नहीं, वहां से आप मौके से निकल जाते हो, पुलिस से आपने संपर्क नहीं किया, आप कह रहे हो कि आपने किसी जानकार अधिकारी से बात की, लेकिन जिस तरीके से लोकल थाने में संपर्क करना चाहिए था, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं होगा ना कि लड़की को कितनी चोट लगी। आप सोचिए वो बाइक से गिर रही है, बाइक से गिर रही है, कार से टक्कर लगी है, अब उसे कितनी चोट लगी आपको तो पता ही नहीं, आप तो छोड़ के चले गए। यही वजह है कि हिट एंड रन की भी मांग फैमिली के द्वारा की गई थी। सुशा
0: हिमांशु, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी सभी जानकारी के लिए। इन द मीनवाइल वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू व्हाट कल्याण बैसला आई बेग योर पार्डन हैड सेड अर्लियर व्हेन इंडिया टुडे स्पोक टू हिम अबाउट हाउ ही डिफेंडेड हिज एक्शन।
8: ध्यान से उस वीडियो को देखना, इस तरह कस्टमाइज कल की बात है, कल ही डाल देते ना साथ साथ। अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी गलती है, ठीक है जी, हमने मार लग गई हमसे, रोड पे लग जाती, चलो तहसीलदार को ही बता देता हूँ। वो पीछे से आ रहे थे, आगे ले गए, ठीक है जी, मैं आगे आ गया। अब जो वीडियो हो जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं उससे। मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की पे ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक। मैंने उससे ये बोला था, और उसके साइड में लड़का, दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं, पूरी वीडियो डलवाऊँ ना जी।
13: अच्छा एक बात बताइए,
8: मैंने बोला था, पहले सुन लो मेरी बात, मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार, मैंने कि हमारे, हमें टीच मत करो, बार बार टीच मत करो, लग जाएगी। अच्छा जी ठीक है, फिर मैंने कहा जाने दे। फिर वो, फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था, तो वो मेरे आगे कैसा है आप सोचो ना, जब मैं ये कह रहे थे कि निकल गया था फेस, आप वीडियो में देखना मैं निकल गया, अच्छा फिर आगे आगे चलो कोई नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है। इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है, साइड में उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता। अच्छा सुनो, आप इनको देखना, मैं जो मैं मेरे, ठीक है, इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो, उस साइड वाली सफ़ेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी, और वहाँ यू टर्न था, मैं यू टर्न के चक्कर में। अच्छा अब जाती है थोड़ा सा इधर, है
13: अब नॉर्मली
8: लग गई मुझे, तो
13: ड्राइविंग में ये सिखाया जाता है कि अगर चलो हिट भी होगी कोई बात नहीं, सड़क पे चलते हैं।
8: मेरी गाड़ियों में कई बार लग ली,
13: आपको लगता नहीं कि आपको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए?
8: बताता हूँ उसका लिए, बिल्कुल सही जवाब। मैंने भाई से बोला, मैंने क्या रुक जाना चाहिए, ठीक है, मुझे दुख हुआ बड़ा उस लड़की को, देखो मैंने जानता, मुझे जब पता लड़की हो, उसने जब हेलमेट टच किया था तो मैंने कहा ओके वेरी गुड, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आप मुझे मंदिर में घुसा लो।
13: सुनो आप, सवाल वही है कि आपको रुकना नहीं चाहिए।
8: अच्छा रुकने की बताता हूँ मैं, मैंने जैसे आगे बढ़े, वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पर लग रही, मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे, फिर भी मैंने बत्ती पर रोकी, मैंने शीशा डाउन किया, मैं सीधा डाउन ही नहीं करता इस बात, मैंने उसे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे, समझ रहे हो मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने, वो एक लड़के ने, कि भाई फायदा नहीं है रुकने में, निकल लो।
13: अच्छा
8: समझ रहे हो, ये बात थी, अरे मैं क्यों भागता भाई, मैं तो खुद हेल्प करता हूँ लोगों के।
13: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया या आपने अपनी बात क्लेरिफाई करने की कोशिश की?
8: मैंने अपने DSP साहब, मैंने उनसे बोला कि सर मेरे, क्या नाम है, वीडियो डाली उन्होंने ऐसे एडिट करके, छोटे छोटे क्लिप जोड़ के मैं उसमें विलन दिखा रखा हूँ, विक्टिम कार्ड, वो है विक्टिम कार्ड खेल रहे, चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उसके लिए किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा, अच्छी है लड़की, मेरी गलती लगा लो, चलो मुझसे लगी बड़ी गाड़ी, लेकिन ना तो वो बाइकर्स की रोड है ना कुछ। अच्छा सुनो, मैंने करी है अपने DSP साहब, उनसे बोल दिया मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये सच्चाई है और ये बात, और मैंने कहा इसको हाईलाइट इतना क्यों करा जा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों करा जा रहा है, क्या कुछ पहली बार स्पेशल वो हुआ, क्या मैं, मेरे नाम आज तक एक केस नहीं है, हिट एंड रन का क्या मतलब है सर? अच्छा मैं पिटता हूँ,
13: पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये बात आपको कब पता लगी?
8: मुझे तो आज ही पता लगी सारी चीज़ें, अगर अभी दोपहर पीछे CIA मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, CBI जा रही है, CIA जा रही है, क्या कर दिया मैंने, मुझसे संपर्क करो ना, और उस बहन जी से मैं बोलता हूँ, उस मैडम जी से, कि आप मुझे बताते, जब पता लग गई थी मुझे बताते, कोई मेरे लिए कुछ वीडियो डाल रहा है, अरे क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी क्या नहीं करी, वो तो मुझे पता।
13: फिलहाल अब आप क्या कहना चाह रहे हैं पुलिस से, क्या कहना?
8: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे, मतलब ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं,
13: अगर गुड़गांव पुलिस संपर्क करते हैं या आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुड़गांव पुलिस से?
8: हाँ बिल्कुल, मैंने बोल दिया सर से।
0: And yes, the biggest news this minute is how this man has now been arrested by the Gurugram police. He was in Dausa in Rajasthan. He's been brought back to Gurugram to face action. We'll keep you updated on the story. For the moment, a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
14: You are watching India Today. करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। ए यू
15: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: And our top story this minute, Gurugram goon driver Kalyan Besla has been arrested. Big India Today impact of how the goon driver has finally been arrested after over 50 hours. Gurugram police team that is in Dausa at the moment in Rajasthan that arrested Kalyan Besla. The charge of the goon driver has now been invoked. It is attempt to murder. Remember earlier FIR that had not stated this particular charge. But after the police had recorded the statement of Sia's family, attempt to murder has been invoked. At the moment, we also understand that Sia's statement is being recorded. India Today coverage that has forced action on Kalyan Besla. While he was on the run, the accused spoke to India Today where he completely defended himself and tried to change the narrative to say that he did not do it on purpose. But the video that spoke of every bit of what he was intending to do and what he did. Sia had also questioned as to why he fled the spot. And now again, as we confirm that the Gurugram police team has arrested him from Dausa in Rajasthan. He has been arrested. He is being brought back to Gurugram where further investigation will be carried out. The video that raised all the questions of how this man thought he was entitled enough to hurt Sia, who could have even lost her life or anything could have followed in the manner in which she was hit. Let me take this to my colleague Himanshu Mishra, who has been tracking every single development on the ground. Himanshu, latest jankari ye hai ki Gurugram police ne Kalyan Besla ko arrest kar liya hai. Aage kya jankari hai? Usko Gurugram wapis laya ja raha hai.
1: बिल्कुल, जैसे ही डिटेन किया गया दौसा में गुड़गांव पुलिस के द्वारा, तुरंत उसको जो पूरा प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसीजर, उसको फॉलो किया जा रहा है और दौसा से उसे लेकर के गुड़गांव लाया जाएगा और जहां पर एफआईआर दर्ज है. पहली एफआईआर दर्ज हुई थी जब पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जो वायरल वीडियो था. उसके बाद जब शिवानी के पिताजी जाते हैं, वो एक फ्रेश कंप्लेंट देते हैं, जो वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, उस कैमरे का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जो शिवानी की बाइक में था. आप देखिए वो वीडियो, जब कार ने आकर के उनको टक्कर मारा, शिवानी गिर जाती है और उनकी बाइक घिसटते हुए आगे जाती है, लेकिन वो कैमरा जो था, वो जो हैंडल पे ऊपर लगा रहता है सेल्फी कैमरा, उसमें वो बकायदा दिखती रही और कितनी दूर बाइक जाके घिसट के रुकती है. गनीमत ये रही कि शिवानी जब गिरती है तो उनका हाथ लगा, उन्होंने सेफ्टी गियर भी पहना था. क्योंकि जब अभी हमने बात की तो आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवानी ने क्लियर किया कि अगर वो सेफ्टी गियर नहीं पहनी होती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, खतरनाक हो सकता था. लेकिन गनीमत थी कि उन्होंने पहनी थी, उनका हाथ गिरा, उनको सपोर्ट मिला और वो वहीं रह गई और बाइक घिसटती हुई चली गई. गाड़ी नहीं रुकती है, गाड़ी आगे की तरफ गई, मोड़ पर दूसरे बाइकर ने जाके रोकने की कोशिश की, वहां भी गाड़ी नहीं रुकी और वहां से गाड़ी आगे की तरफ भाग जाती है. इस वजह से हिट एंड रन, नंबर एक जो फैमिली की तरफ से मांग की गई, दूसरा इंटेंशन दिखाया गया कि किस तरीके से पहले लेन से चेंज करते हुए कार एकदम से आती और टक्कर मारती है, ये वजह इसको इंटेंशनली हिट बताया गया और इसमें जान जा सकती थी, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर की मांग की गई. पुलिस ने एफआईआर को अपडेट किया, चूंकि शुरुआत में पुलिस को आरोपी के बारे में, विक्टिम के बारे में भी नहीं जानकारी थी, इसलिए एफआईआर अननोन के खिलाफ थी. लेकिन उसके बाद जब कंप्लेनेंट पहुंचता है, कंप्लेन देता है, तो पुलिस ने इस मामले में जो तमाम जो लीगलिटीज है उसको पूरा करते हुए अपडेट किया आरोपी के नाम को भी और इसके बाद धाराओं को भी. अब एक गुड़गांव की पुलिस पहुंची हुई है यहां पर, खुद सेक्टर 56 थाने की, जहां पर एफआईआर दर्ज है और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं शिवानी का. ऊपर पुलिस की टीम मौजूद है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां पर जारी है. जी सुरेशा
0: जी, बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है. जिस तरह से कल्याण बैस्ता को फाइनली अरेस्ट किया गया है, 50 घंटे से ऊपर लगे ये करने में, और साथ ही ये क्वेश्चन किया गया कि जिस तरह से ये स्टोरी को सभी जगह फ्लैश किया गया, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, और सभी सवाल पूछ रहे थे कि क्यों कल्याण बैस्ला को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है. उसके बावजूद दो दिन से ज्यादा लगे, सबके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए. कल्याण बैस्ला, जिन्होंने खुद भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की, और अब जाकर उनको अरेस्ट किया गया है. हिमांशु
1: जी, बिल्कुल, देखिए पुलिस का ये यहाँ पे ये कहना है सुरेशा कि जो अरेस्टिंग में लेट हुआ, पहली चीज तो ये कि 24 घंटे तक विक्टिम पहुंचे ही नहीं थे. जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो दर्ज हुई थी। पुलिस ने जब वायरल वीडियो देखा तो वायरल वीडियो के आधार पर ये FIR दर्ज कर ली थी और उसके बाद विक्टिम फैमिली को भी कहीं सोचते से पता चला होगा, इस बीच विक्टिम फैमिली वहां पर पहुंचती है। और हमने जब पूछा, पिता से भी पूछा, हमने शिवानी से भी पूछा, उनका कहना था कि वो सदमे में थे, शॉक में थे बुरी तरीके से कि क्या हो गया होता, क्या हो सकता था। चोट लगी थी हाथ में, हमने देखा कि बाकायदा बैंडेज बंधा हुआ है। तो उसके तुरंत बाद वो लोग किसी तरीके से बाइक चेंज करते हैं, वो लोग आपस में मिलते हैं, बाइक चेंज करके शिवानी घर पहुंचती हैं और यहाँ पहुंच करके वो अपने फादर से डिस्कस करती हैं, फादर को पूरी इंसिडेंट बताती हैं, फिर वो वकील से बात करते हैं और वकील के साथ वहां पहुंचते हैं। तो इसके बाद पुलिस ने इस मामले में अपडेट किया। अपडेट करने के बाद पुलिस की टीम लगातार ट्रैक कर रही थी और जानकारी मिली है कि दौसा में ट्रैक करके डिटेन कर लिया गया। अब आगे का जो पूरा लीगल प्रोसीजर है यहाँ पर श्वेता, वो पूरा लीगल प्रोसीजर गुड़गांव पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जो अरेस्टिंग से लेकर के कोर्ट में पेश करने तक की पूरी लीगलिटीज है वो किया जाएगा। और साथ ही साथ एक ऐसी टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो फुटेज विक्टिम फैमिली या तमाम बाइकर्स के पास से पुलिस को मिली है, इसके अलावा जो पूरा रूट है उस रूट के CCTV भी खंगाल रही है पुलिस, ताकि एक सीक्वेंस बनाया जा सके कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ उसके 10 मिनट पहले से क्या कुछ हो रहा था, या फिर वो कौन सा इंटरसेक्शन था जहां पर बाइकर्स और कल्याण बैंसला ये अगल बगल पहुंचते हैं और उसके बाद बैंसला कह रहा है मुझे पिंच किया जा रहा था, ये लोग साफ डिनाई कर रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर पिंच भी किया जा रहा था, मान लीजिए बाइक आगे पीछे एक दो हो भी गई, तो जिस तरीके से टक्कर हुई है उसको कैसे डिफेंड किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी वजह से पुलिस ने FIR को अपडेट भी की है सुरेशा जी।
0: कुल और किस तरह से दोनों वर्जन्स में भी बहुत फर्क है। कल्याण ने कहा कि वो गाड़ी में अपनी बहन के साथ थे, जबकि सिया ने कहा है कि डार्क ग्लासेस थे उस गाड़ी में, 3 से 4 आदमी थे, कल्याण ड्रंक थे, ये भी उन्होंने अलेज किया है। और अब पुलिस किस तरह से इन वर्जन्स पे आगे बढ़ेगी, जैसे आपने कहा कि CCTV फुटेज को भी कोरोबोरेट किया जाएगा कि कल्याण का इंटेंशन क्या था, क्या ये एक ऐसा केस था जहां पर उनको लगा कि एक फीमेल बाइकर ने उन्हें कैसे चैलेंज किया और इसलिए उनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लगी कि उनको उन्होंने सीधा जाकर उस बाइक पर मार दिया।
1: अब देखिए ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीजें क्लियर आएंगी। यहां पर उसने कहा कि वो हेलमेट लगाई थी, कपड़े से मैं नहीं पहचान पाई, लेकिन सिया ने कहा कि उनकी चोटी थी लंबी और आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता था लंबी चोटी की वजह से। बैक से भी अगर कोई आ रहा है तो वो चोटी चूंकि बाइक पर थी तो आराम से पहचाना जा सकता था कि ये फीमेल है। उनका कहना है कि गाड़ी के शीशे भी काले थे तो पीछे कौन बैठा था वो क्लियर ही नहीं हुआ। उनके हिसाब से तो 4 लोग थे, 4 यूथ थे, जो आगे 2 बैठे थे और 2 पीछे, जबकि कल्याण कह रहे हैं कि बगल में जो उनका भाई था वो उनसे उम्र में बड़ा था और उन्होंने रुकने के लिए भी कहा लेकिन उनको डर लग गया कि ज्यादा बाइकर है और पिटाई हो सकती है। ठीक है, पिटाई हो सकती है, आपको डर लगा, समझ में आता है, तो उसके बाद आप पुलिस के पास भी जा सकते थे ना। आप बगल में जो पुलिस की चौकी या फिर थोड़ा आगे बढ़ करके आप 112 पे खुद कॉल करके बता सकते थे कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि आपने तो पलट के देखा नहीं, आपको तो पता भी नहीं चला कि पीछे जो चोट लगी है जिस लड़की को, कितनी चोट लगी है, उसे गंभीर चोट तो नहीं आई है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदारी। तो यहां पर आप रुक सकते थे, बाद में रुक सकते थे, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे, डायरेक्ट थाने पहुंच सकते थे, लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी उनकी तरफ से नहीं किया गया। जी सुरेशा
0: जी बिल्कुल। पर अब लेटेस्ट क्या जानकारी है, हिमांशु सिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनकी 2 मांगे थी, एक की अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज इन्वोक होना चाहिए जो कि हुआ, वो चाहती है कि हिट और रन चार्ज भी इन्वोक होना चाहिए और उसके लिए अभी उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो रही है, कल्याण बैसना को लाया जा रहा है। किस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी,
1: ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्याण बैसना का भी स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करेगी जब उसे लाया जाएगा थाने में, क्योंकि जो IO है वो इस पूरे केस को देखेंगे, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ यहां पर स्टेटमेंट विक्टिम का रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो दोनों के बयान को आगे रखा जाएगा और दोनों के बयान से जुड़े सबूत पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो जुटाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी। जाहिर तौर पर कल्याण बैसला के अपने तर्क है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो सिक्वेंस है, जो एक्सीडेंट का सिक्वेंस है, उसको कैसे कल्याण बैसला डिफेंड करेंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि गाड़ी एकदम से वीडियो में दिख रहा है कि वो लेफ्ट की तरफ लाते हैं। तो अब यहां पर सबकी निगाह है पुलिस की जांच टीम पे रहेगी कि किस तरीके से वो केस को अब आगे बढ़ाती है। सुरेशा
0: जी बिल्कुल हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ। अरविंद ओझा भी हमें न्यूज रूम से ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद, आपको क्या लेटेस्ट जानकारी मिल रही है गुड़गांव पुलिस से, क्योंकि पहले कई सवाल भी उठे थे कि क्यों एक्शन इतनी स्लोली लिया जा रहा है। ये भी कहा गया कि जब कल्याण बैस्ता मीडिया से बात करे, और ये पॉइंट सिया ने ही उठाया था कि जब वो मीडिया से बात कर सकते हैं तो पुलिस को क्यों इतना टाइम लग रहा है उनको अरेस्ट करने में। अब फाइनली वो अरेस्ट हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, पर और क्या जानकारी मिल रही है आपको?
2: देखिए, जो कल्याण बैसला है उसको एक्सपोज तो इंडिया टुडे ने किया, जो उसकी लास्ट लोकेशन जो इंडिया टुडे की टीम जब पहुंची थी कल्याण बैसला के पास, तो वो भागने की कोशिश कर रहा था और उस दौरान इंडिया टुडे की टीम ने इसे पकड़ा और इसका इंटरव्यू किया, उसके बाद वो वहां से भाग गया। तो पहला लोकेशन गुरुग्राम पुलिस को जब इंडिया टुडे का इंटरव्यू हुआ उसके बाद मिला, उसके बाद ये दौसा भागा राजस्थान, जहां से गुरुग्राम की पुलिस ने इसको डिटेन किया और उसके बाद इंट्रोगेट करके इसको फॉर्मली अरेस्ट कर लिया है। और गुरुग्राम पुलिस कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। स्टार्टिंग में गुरुग्राम पुलिस का ये कहना था कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था, कोई भी विक्टिम वो स्टेटमेंट देने नहीं हुआ। उसके बाद जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सुमोटो लेकर गुरुग्राम पुलिस ने खुद FIR रजिस्टर्ड की। कल जो सिया एलियस शिवानी चौहान है, उनकी फैमिली गुरुग्राम पुलिस स्टेशन पहुंची थी अपने लॉयर के साथ, वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हालांकि विक्टिम ने खुद जाकर ये स्टेटमेंट नहीं दिया था, इस वजह से गुरुग्राम पुलिस अब दिल्ली आसिया एलियस शिवानी चौहान के घर पर पहुंची है और जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है कि एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था। इस दौरान जो वीडियो आया उसके आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने 109 BNS अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन वो ऐड किया है और अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन के तहत ही जो कल्याण बैसला है उसको अरेस्ट किया गया। तो इस पूरे केस का एक एक कैरेक्टर इंडिया टुडे ने खोजा, उनसे बातचीत की, चाहे विक्टिम हो, विक्टिम के फादर हो, विक्टिम का ब्रदर हो या फिर अक्यूज्ड हो, हर कैरेक्टर को इंडिया टुडे ने सबसे पहले खोजा। और जो कल्याण बैसला जिसकी बात की जा रही है, इसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको कल इंडिया टुडे ने ट्रैक किया था फरीदाबाद के पलवल इलाके में, वहां से वो भाग गया था और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने पलवल से राजस्थान के दौसा तक का रूट मैप किया, उसके बाद उसको डिटेन किया और इंट्रोगेट करके उसको अरेस्ट कर लिया।
0: इस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, कल्याण बैसला को इंडिया टुडे ने पहले उनसे बात की, वो इंटरव्यू सुनेंगे और फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। लेट्स लिसन इन टू हाउ कल्याण बैसला ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, ट्राई चेंजिंग द नैरेटिव, बट ऑल ऑफ दैट फेल्ड बिकॉज द वीडियो इटसेल्फ डिड द टॉकिंग ऑफ व्हाट ही वाज अप टू।
3: ध्यान से उस वीडियो को देखना, इस तरह कस्टमाइज कल की बात है, कल ही डाल देते ना साथ साथ। अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी गलती है, ठीक है जी, हमने लग गई हमसे, रोड पे लग जाती, चलो तहसीलदार के ही बता देता हूँ। वो पीछे से आ रहे थे, आगे ले गए, ठीक है जी, मैं आगे आ गया। अब जो वीडियो जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ, वैसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ उससे। मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की पर ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक, मैंने उससे ये बोला था। और उसके साइड में लड़का, दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं, पूरी वीडियो डलवाऊ ना जी।
4: अच्छा एक बात बताइए,
3: मैंने बोला था, पहले सुन लो मेरी बात, मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार, मैंने कि हमारे हमें टीज मत करो, बार बार टीज मत करो, लग जाएगी। अच्छा जी ठीक है, फिर मैंने कहा जाने दे। फिर वो, फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था तो वो मेरे आगे कैसा है आप सोचो ना, जब मैं यूँ कह रहे थे कि निकल गया था बेस, अब वीडियो में देखना मैं निकल गया, अच्छा फिर आगे आगे चलो कोई नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है। इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है, साइड में उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता। अच्छा सुनो, आप इनको देखना, मैं जो मैं मेरे, ठीक है, इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, अब प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हैं, उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी, और वहाँ यू टर्न था, मैं यू टर्न के चक्कर में। अच्छा अब जाती है थोड़ा सा,
4: अब नॉर्मली
3: लग गई मुझे, तो
4: ड्राइविंग में ये सिखाया जाता है कि अगर चलो हिट भी होगी कोई बात नहीं, सड़क पे चलते
3: हैं। मेरी गाड़ियों में कई बार लग ली,
4: आपको लगता नहीं कि आपको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए?
3: बताता हूँ उसका लिए, बिल्कुल सही जवाब, मैंने भाई से बोला, मैंने क्या रुक जाना चाहिए, ठीक है, मुझे दुख हुआ बड़ा उस लड़की को। देखो मैंने जानता, मुझे जब नहीं पता लड़की है वो, उसने जब हेलमेट टच किया था तो मैंने कहा ओके वेरी गुड, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आप मुझे मंदिर में घुसा लो।
5: सुनो आपको,
3: अच्छा रुकने की बताता हूँ मैं। मैंने जैसे आगे बढ़े वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पर लग रहे हैं। मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे? फिर भी मैंने बत्ती पर रोकी, मैंने शीशा डाउन किया। मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात, मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे समझ रहे हो मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने, वो लड़के ने, कि भाई आयदा नहीं है रुकने में, निकल लो।
5: अच्छा
3: समझ रहे हो, ये बात थी। अरे मैं क्यों भागता भाई, मैं तो खुद हेल्प करता हूँ लोगों के।
5: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया या आपने अपनी बात क्लेरिफाई करने की कोशिश की?
3: मैंने अपने DSP साहब, मैंने उनसे बोला कि सर मेरी क्या नाम है वीडियो डाली उन्होंने ऐसे एडिट करके, छोटे छोटे क्लिप जोड़ के मैं उसमें विलन दिखा रखा हूँ, विक्टिम कार्ड वो है, विक्टिम कार्ड खेल रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उसके लिए किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा, अच्छी है लड़की, मेरी गलती लगा लो, चलो मुझसे लगी बड़ी गाड़ी, लेकिन ना तो वो बाइकर्स की रोड है ना कुछ। अच्छा सुनो, मैंने करी अपने DSP साहब उनसे बोल दिया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, ये सच्चाई है और ये बात, और मैंने कहा इसको हाईलाइट इतना क्यों करा जा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों करा जा रहा है, क्या कुछ पहली बार स्पेशल वो हुआ? क्या मैं, मेरे नाम आज तक एक केस नहीं है, हिट एंड रन का क्या मतलब है सर? अच्छा मैं पिटता हूँ,
5: पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये बात आपको कब पता लगी?
3: मुझे तो आज ही पता लगी सारी चीज़ें, अगर अभी दोपहर पीछे CIA मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, CBI जा रही है, CIA जा रही है, क्या कर दिया मैंने, मुझसे संपर्क करो ना, और उस बहन जी से मैं बोलता हूँ, उस मैडम जी से, कि आप मुझे बताते, जब पता लग गई थी मुझे बताते, कोई मेरे लिए कुछ वीडियो डाल रहा है, अरे क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी क्या नहीं करी, वो तो मुझे पता।
5: फिलहाल अब आप क्या कहना चाह रहे हैं पुलिस से, क्या कहना?
3: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं,
5: अगर गुड़गांव पुलिस संपर्क करती है या आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुड़गांव पुलिस से?
3: हाँ बिल्कुल, मैंने बोल दिया सर से।
0: हिमांशु मिश्रा, who continues to be with us on the phone line. हिमांशु, एक चीज बहुत क्लियर है कि कल्याण बैसला के इंटेंशन भागने की थी, ये सवाल सिया ने भी उठाया था कि अगर उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी तो वो स्पॉट से क्यों भागे, और अभी भी जो उनका अरेस्ट हुआ है वो दौसा में राजस्थान से हुआ है, तो जैसा कि अरविंद ने भी बताया कल वो फरीदाबाद में थे, उसके बाद वो राजस्थान चले गए ताकि वो और आगे तक भाग सके, पर अब पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है।
6: बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, और बिल्कुल सही बात यह है कि जब आज तक की टीम ट्रैक करते हुए फरीदाबाद पहुंची थी तो एक लोकेशन पुलिस को भी मिला कि हाँ ठीक है वो अभी घर के आसपास है, और उसके बाद से ही वो फिर एकदम से नेटवर्क के बाहर हो गया। पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही थी क्योंकि उस दौरान पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी और उसमें धाराएं भी ऐड कर दी गई थी जिन धाराओं को जोड़ने की मांग पुलिस कर रही थी, जिसमें खास तौर से था जान से मारने की कोशिश का, और उसके बाद जब पुलिस ने ट्रैक करने की कोशिश किया तो इसकी लोकेशन राजस्थान की तरफ आ रही थी। पुलिस लगातार आसपास के थानों के संपर्क में थी और जैसे ही इसकी लोकेशन कंफर्म हुई कि ये दौसा के आसपास है, पुलिस ने वहां पर अपनी उपस्थिति बढ़ाई, जगह जगह बैरिकेड किए गए और इसी दौरान डिटेन कर लिया गया कल्याण बैसला को दौसा से, और उसके बाद तुरंत उसको लेकर के अब गुड़गांव थाने लाया जाएगा सेक्टर 56 के, जहां पर FIR दर्ज है और वहां पर आगे इस पूरे मामले की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। जी
0: जी हिमांशु, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
7: को रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे।
0: And the story that started of how that young woman biker Sia was chased on a city road in Gurugram, rammed by that speeding car that left her injured. Sia has now come forward to reject the claims that were made by the accused Kalyan Besla. The woman biker who claimed that Kalyan intentionally changed lanes and swerved to ram the car into her to purposely hurt her. Sia has revealed chilling details about the incident, pleaded that attempt to murder charge must be added against the goon driver, Kalyan. Acting on Sia's plea for justice, cops have finally arrested goon driver Kalyan Besla. The absconding accused was arrested from Rajasthan and will be brought to Gurugram for probe. Additionally, Gurugram police has registered a case of attempted murder based on statements from the victim, Sia's family, and a video that went viral on social media. Earlier, India Today tracked the driver, Kalyan Besla, who remains brazen. The driver has claimed that the bikers were riding erratically and that he was only asking the victim to ride safely. He has been blamed, he has blamed the victim instead, alleging that the video was edited to portray him in bad light. The shocking incident on Gurugram's golf course road that has triggered a string of demands for strictest action to be taken against the accused driver. The latest, of course, of how that man has finally been arrested after over 50 hours. Sia, who had stated the India Today interview, saying that this man is openly giving interviews, then why is it that he has not been arrested so far? It was over 50 hours and now he's finally been arrested. That latest statement that she gave to India Today, listen in to what she said.
8: तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है और उसमें पीछे भी दो लोग हैं क्योंकि गाड़ी के शीशे सारे काले थे वो एक्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं तो मुझे डर था कि टक्कर मार के मुझे गिरा ना दे इसी चीज़ को देख के कि मैं थोड़ा आगे जाऊँगी तीन चार गाड़ियाँ हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे पीछे हो जाएंगे पर वो हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी या बाइक के पीछे लगा के रखे
9: इंटेंशन कब क्लियर हुई कब लगा आपको कि कार वाले की इंटेंशन गलत है
8: जब वो मेरे साइड में आके शीशे डाउन करके वो इशारे कर रहे थे
9: क्या इशारा कर रहा था कुछ और बोला भी
8: कुछ वो बोल रहा था और मैंने हेलमेट पहन रखा था इतना क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दे रहा था और वो इशारा कर रहे थे साइड वाला भी इशारे कर रहे थे मुझे और मैं उनको बोल रही थी आप साइड हो जाओ वो दूर ही नहीं हो रहे थे
9: तो किन धाराओं में FIR दर्ज हुई और आपकी डिमांड क्या है
8: अभी धाराएं लगेंगी वो अपने स्टेटमेंट देंगे और क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर है ये तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस लड़के के अगेंस्ट
0: I want to take this back to my colleague Himanshu Mishra, who continues to be with us on the phone line. Himanshu, ये जो differing versions हैं दोनों साइड से, सिया ने कहा है कि वो purposely hurt करना चाहते थे सिया को, जबकि कल्याण ने बोला कि सिया ने उनको provoke करने की कोशिश की. किस तरह से वीडियो पर पूरी सभी details record हुई और वीडियो को देखकर ही पता लगता है कि कैसे उन्होंने बाइक को purposely, गाड़ी को purposely swerve किया ताकि सिया को चोट लगी. उनकी जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था. बट ये वर्जन उसको कैसे अब आगे corroborate किया जाएगा?
10: देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है कि दो तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है यहाँ पे सुरेशा. एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सीडेंट के पहले के सिक्वेंस को देखा जा रहा है कि पहली बार कब कल्याण बैसला का बाइकर्स का जो पूरा ग्रुप आ रहा था उससे एनकाउंटर हुआ, कब वो लोग आमने सामने आए और उसके बाद कितनी दूर तक वो लोग साथ ट्रेवल करते रहे और ऐसा कौन सा सिचुएशन था, ऐसी कौन सा मौका था जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ और फिर ये सब कुछ देखने को मिला, जो क्लियर दिख रहा है कि किस तरीके से कल्याण बैसला की गाड़ी से वो एकदम से अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं, साइड से जा रही लड़की को टक्कर लगती है, वो गिरती है और उसके बाद कल्याण बैसला रोकने के बावजूद रुकते नहीं है और भाग जाते हैं मौके से. यही दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक, टक्कर लगना तो वहां पर इंटेंशन को लेकर के क्लियर विक्टिम फैमिली की तरफ से सवाल किया जा रहा है, सिया की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि क्लियर इंटेंशन था. अगर आप 50 की रफ्तार में भी बाइक चला रहे हो रोड पर और इस तरीके से कार आपको टक्कर मारती है तो आपकी जान जा सकती है, तो जाहिर तौर पर उनका जो उनके इंटेंशन था वो इंटेंशन खतरनाक था, ये आरोप लगाए गए. और DNS की धारा 109 जो 307 IPC में होता था अटेम्प्ट टू मर्डर की, वो धारा जोड़ने की मांग की गई जो पुलिस ने किया और साथ ही साथ हिट एंड रन, क्योंकि रोकने के बावजूद भी मौके पर रुके नहीं कल्याण बैसला. आगे जब लाइट पे वो रुकते हैं तो वहां पर भी रोका गया तो नहीं रुके. तो ये दो तरीके के जो इन्वेस्टिगेशन है, एक्सीडेंट के पहले और एक्सीडेंट के बाद, इन दोनों को देखा जा रहा है और यही जो सबूत इकट्ठा होगा उससे पुलिस आगे बढ़ेगी. जी
0: हिमांशु, शुक्रिया इस जानकारी के लिए. More breaking news coming in Karnataka. Vande Mataram order that has been challenged in the High Court, where a PIL has been filed before the Karnataka High Court challenging the state government's recent order restricting the singing of the national song Vande Mataram to its first two stanzas at government functions. The order provides an exception for events attended by the President, Vice President, Prime Minister or Governor, where all six stanzas may be sung The PIL filed by Advocate Girish Bharadwaj questions whether the state government can prescribe the form and content of a national symbol through an executive order. The matter is expected to be mentioned before the High Court today for listing. Let me take this to my colleague Sagai Raj to get further details on that PIL, what it states and what may follow. Sagai.
11: If you notice that the PIL has been filed by Girish Bharadwaj opposing the Karnataka government order, where the order says that apart from the national program, which has been presided by President, Vice President and the Prime Minister, all the other state events which have been organized in the state of Karnataka should sing only two stanza of Vande Mataram. Challenging this particular order of the Karnataka government, a PIL has been filed by a person in Karnataka High Court who has been identified as Girish Bharadwaj, where he says that this particular order is against the national interest and prescribe the form and content of the national symbol like national song. And they have challenged this particular order, and a PIL has been filed. Probably this particular PIL will be heard today in the Karnataka High Court.
0: Right, Sagai. Many thanks for getting us those details. And we now get you the latest on BRS Working President KTR's comments in Delhi, speaking about the attack on his PRO Mahesh Mudiraj and PA Mahinder Reddy inside the police station yesterday. KTR has said that an attack was carried out on the residents of KCR, a senior leader who was elected by the people of Telangana twice as chief minister and who fought relentlessly for the achievement of Telangana. An attack that was carried out on the house of a leader who fought for Telangana without caring for his own life. When we went there to stop the attack, we were detained inside the police station and an attempt was made to attack us as well. Yesterday, the government again attempted to attack my PRO and my PA inside the police station itself, using around 15 people. Who were the people who attempted the attack inside the police station? Goons or the cops themselves is the question he asked. He says it must be established who those people were who came in plain clothes and attacked them. Even when we demanded that an FIR be registered over the attack on our people, the police refused to register one. In Telangana, the police department is working more actively for the Congress party than even its own workers. The police are supporting those who resorted to attacks inside a police station and are refusing to register FIRs, unquote. Listen in to that statement.
12: When we are arrested and we are in police station, तो वहां पे हम पे अटैक होता है, हम पे भी कांग्रेस वाले गुंडे आके हमला करने की कोशिश करते हैं. और कल हालत ये है कि पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे स्टाफ को, जिनको बुलाया गया इस बहाने कि आपने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन किया पुलिस ऑफिसरों की ड्यूटी में, उन पे पुलिस स्टेशन में हमला होता है. अब इसको लेके आपको पता चलेगा, इसको लेके आपको शायद एहसास होगा कि हालात लॉ एंड ऑर्डर के कैसे हैं तेलंगाना में.
0: Let me take this to my colleague Abdul Bashir, now joining us on the broadcast. Abdul, tell us in detail about the allegations that are being leveled by KTR. What had actually happened? What are the cops saying?
13: Well, this whole political showdown had begun on September 7th when the first day of the monsoon session began, and there was a scuffle after the protest by the MIRS with the police officials. Now, during this scuffle, it was several FIRs that were registered against the BRS leaders like K.T. Rama Rao, Harish Rao. And finally came a video which was reportedly, allegedly seen, where the staff of KTR was abusing the police officials, is what the police had claimed. And that is how an FIR was registered at the Saifabad police station. And after the FIR, the PA Mahesh and PA Mahinder and PRO Mahesh were called to the Saifabad police station for questioning and for the legal process. Now, yesterday during the questioning, while that was ongoing inside the police station, it is alleged that around 15 members had barged inside the police station and attacked the PA and PRO of KTR, that is staff members of KTR's office, and after which several BRS leaders had assembled at the station, and there was a tension that prevailed in front of Saifabad police station after several BRS leaders had gathered. The heavy police deployment could be seen yesterday, and several of them were also detained. The BRS leaders also were detained, after which PA Mahesh and PA Mahinder and PRO Mahesh were released after this whole sequence had taken out. Now today, KTR speaking on the whole incident had recalled all the sequence of events that took place from the protest on September 7th and then the police detention and the scuffle between the police officials, the high-handedness, at least high-handedness on the BRS MLAs, the women MLAs is what the BRS has to say, and also an attack, alleged attack on a former chief minister and the BRS president, KCR's residence. That had taken place recently, and all the political showdown has been continuing for the past few days between the Congress and the BRS, where the BRS has been alleging that the police is working on behest of the Congress party rather than maintaining law and order, is what the BRS has to say. And for taking this case further, legal action will be taken, legal remedies will be taken by the BRS against the police officials and the Congress party, is what the BRS high command has to say.
0: All right, Abdul, many thanks for getting us those details. And while a close associate of the Lawrence Bishnoi gang deported from Canada, where Canada deported Karamveer Deo, he's been sent back to India. Punjab police arrested him at the Delhi airport. Karamveer Deo, who had helped Lawrence Bishnoi's brother Anmol flee India. Anmol Bishnoi had stayed at Karamveer's house in the United States. A viral video showing Anmol Bishnoi dancing and partying with Punjabi singers in the US was filmed at Karamveer Deo's house. Karamveer Deo used to provide shelter and legal assistance to all the gangsters linked to the Lawrence Bishnoi gang who arrived in the United States. Karamveer shifted to Canada when the FBI began taking action against the Lawrence Bishnoi gang in the US. The Punjab police had issued a lookout circular against Karamveer Deo. As soon as Karamveer arrived at the Delhi airport from Canada, Punjab police who had taken him into custody. Arvind Oja joining us from the newsroom to get us further details on his arrest, Arvind, and why this is significant.
2: जो करमवीर देव है ये अमेरिका में रुका हुआ था, उसके बाद कनाडा शिफ्ट हो गया था और इंडिया से और ख़ासतौर से पंजाब से जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अमेरिका या कनाडा में पहुंचते थे उनको लीगल असिस्टेंट दिलाना वो करमवीर देव ही करता था। उसके अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जब वो भारत से फरार हुआ था उस फरारी में मदद करमवीर देव ने की थी। उसके अलावा अनमोल बिश्नोई अमेरिका में करमवीर देव के घर पर रुका था। जब अनमोल बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पंजाबी सिंगर के साथ डांस करता हुआ दिखाई दिया था, पार्टी करता हुआ अमेरिका में दिखाई दिया था, वो दरअसल घर करमवीर देव का ही था। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, कनाडा ने इसे डिपोर्ट किया है, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया है। तकरीबन एक साल पहले कनाडा में एपी ढिल्लन जो पंजाबी सिंगर है उनके घर पर फायरिंग हुई थी, उसमें भी करमवीर देव का रोल बताया जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई का जो विदेशों में फैला नेटवर्क है उसकी एक बड़ी कड़ी करमवीर देव था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, कनाडा से डिपोर्ट किया गया और दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस की टीम पहले से मौजूद थी, उन्होंने उसे हिरासत में लिया और पंजाब लेकर गई, वहां उसे अरेस्ट किया गया है। जी
0: जी अरविंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। And while the centre's push for UCC that has triggered fresh differences within the NDA, with the BJP's UCC agenda facing a cautious response from key allies in Bihar, while the Home Minister has said that UCC will be implemented across all 21 NDA-ruled states by 2029, JDU has reiterated that it wants wider consultations before taking a final position. The party has stressed that no community should feel hurt and has also pointed to Nitish Kumar's earlier communication to the Law Commission as its guiding position. Meanwhile, JDU Working President Sanjay Jha is expected to meet Amit Shah soon to convey the party's position. LJP Chief Chirag Paswan has also called for greater consultation, arguing that India's social fabric is diverse. He has sought the UCC draft to be made public and said extensive discussions with stakeholders are necessary before his party finalizes its position. Bihar opposition leader Tejaswi Yadav, on the other hand, has attacked both NDA allies, demanding that JDU and Chirag Paswan clearly spell out their positions on UCC.
14: Uniform Civil Code ke masle par केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी शीघ्र ही बातचीत करेंगे। इस संबंध में संजय झा जी ने स्वयं ये जानकारी भी दी है।
15: जब पार्लियामेंट में यह कानून पास हुआ समान नागरिक संहिता का, तो सभी एनडीए के हमारे घटक दलों ने इसका पुरजोर समर्थन किया, तभी यह संसद में पास हुआ और आगे बातचीत होगी, स्वीकारता सबसे स्वीकारता की जाएगी और गृह मंत्री जी ने बताया है तो बातचीत चल रही है।
16: जो समझौता में हमारे साथ है उनके साथ बातचीत किया, वो जानते हैं बीजेपी का नीति क्या है, बीजेपी का डिक्लेयर किया है, हमारी पॉलिसी है, वो हम करेंगे और उनको भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये देश का आज जरूरत है।
17: जनता दल यूनाइटेड से पूछिए उनका क्या स्टैंड है, ये तो उन लोग के नेताओं से पूछना चाहिए ना कि उनका क्या स्टैंड है।
18: चिराग
17: देखिए गोल गोल बात करते हैं, लोग गोल गोल बात करते हैं, एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए।
19: यूसीसी ने उत्तराखंड को कुछ नहीं दिया, हमारी संस्कार आधारित विवाह पद्धति थी, इन्होंने उसको समाप्त कर दिया। संस्कार पहले धूलि अर्घ होता था, ब्राह्मण मंत्राचार के बीच में जो है अग्नि प्रदक्षिणा के साथ सब चीजें होती थी, उसको उन्होंने अब लिव इन रिलेशनशिप और रजिस्ट्रेशन में आ गए, तो एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जिससे जो संस्कार आधारित सनातन की परंपरा थी विवाह की उसको समाप्त कर दिया और तो कुछ नहीं मिला।
20: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
0: And shifting focus to the big verdict in the Rajasthan Civic Body polls, where the ruling BJP managed to win 41% of the wards, while the Congress won 35%. For the BJP, this marks a 5 percentage point increase from its share in the last cycle of urban local body polls, while the Congress has seen its share fall by about 5 percentage points. Prime Minister Modi thanked the people of Rajasthan for reposing their faith in the BJP and took a jibe at the Congress, saying that jhoot ki goonj has been defeated by the truth. He added that Rajasthan supports the double engine government. Chief Minister Bhajan Lal Sharma too thanked the people for choosing the BJP and lauded the work done by his government. He also said that his government has managed to fulfill 78% of its poll promises. The Congress, on the other hand, hit back at the BJP over the poll results. The grand old party said that the BJP has been wiped out and that its vote share has dropped since the Lok Sabha polls. The party asserted that the BJP will lose the upcoming polls in Rajasthan. The state will go to polls in 2028.
21: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लगातार समय देकर के भारतीय जनता पार्टी को यह विजय दिलाने का काम किया है।
22: जनता ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छा मतदान जनता ने शांतिपूर्वक तरीके से पूरा संपन्न कराया है और हमारे ऊपर भी पूरी कृपा रखी है। विपक्ष भले ही कितनी ताल ठोके लेकिन विपक्ष से हम डबल से अधिक सीटें जीत करके आए हैं और इसी प्रकार से हमारे नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिकाएं भी हम जीतेंगे।
23: जो प्रचंड जीत मिली है, कांग्रेस की पराजय हुई, ये अत्यंत अच्छा समाचार है। मेरी अपनी ओर से बधाई और खास करके राहुल गांधी जी ने कोटा में ही अभी थोड़े दिन पहले कार्यक्रम किया और कोटा के होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके युवाओं का रुझान किधर है ये बताने का अपने आप में ये प्रमाण है। आइए हम सब मिलकर के इस जीत के साथ मैं अपनी ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी और राजस्थान की भाजपा इकाई को बधाई देना चाहूंगा।
24: जो इनका प्रतिशत है वो 335.35 और कांग्रेस का जो है वो 34.35 यानी 1% भी मुश्किल से ये अंतर रह पाया है नगर निकायों में शहरों के अंदर। लोकसभा के अंदर 50.14% इनका वोट शेयर था। अब आप देखिए 50 से 15% की कमी इससे 2 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण से आई है। इससे बड़ा उदाहरण कोई हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार की फेलियर का नहीं मिल सकता है।
0: Moving on, SpiceJet's two international flights that have been delayed by more than 24 hours. Protest that is underway at the IGI airport by affected persons is the latest that is just coming in. SpiceJet Chor Hai are the slogans that are being raised at IGI airport by angry passengers. SG5111 that was scheduled to operate on the 14th of September at 7:45 a.m. It was rescheduled to 9 a.m. September 15th. SG5105 was scheduled to fly at 18:45 p.m. on the 14th of September, which was rescheduled to 12:30 p.m. today. Now, this is coming in from sources as passengers of both flights were stuck at IGI's terminal for more than 24 hours and no SpiceJet staff that were present to handle the passengers that irked the passengers and they began to protest. Let me take this to my colleague Amit Bhardwaj joining us on the broadcast with further details of any explanation by SpiceJet to why these flights were delayed, what is the condition of the passengers and these protests that are underway. Is SpiceJet addressing them?
1: Suyosha, you know, what we have learned through our sources is that yesterday when this particular flight SG5111, Delhi-Dubai flight was delayed, it was delayed by 24 hours, one full day of delay in the timing of that particular aircraft, and we can see in the visuals as to how the passengers were really big and being affected by this particular delay. They are claiming that no SpiceJet staff came to calm them down. There was no clarity on accommodation to be provided to them, food, water. All of these questions remained a big problem for these passengers. So having said that, we have also seen the visuals of the airport staff, that is the dial staff, handing over the food packets and water. I've been given to understand that the separate area for these passengers was also marked and identified by the airport authority to ensure they do not end up, roaming around in the terminal and get further affected because of these delays. As SpiceJet is saying that this is because of the technical crash. SpiceJet side of the story is that one of the aircraft was possibly grounded because which the operations have gotten affected. But what is the explanation for no food to the passengers, no water to the affected passengers, and no thinking about providing accommodation to the passengers who were affected? Because in the video, very clearly the passengers are speaking about as to how nobody from SpiceJet is coming up to tell them where
0: is. Right, Amit, let's also take a closer look at these videos that have emerged from the Delhi airport. Angry passengers staging a protest against SpiceJet, not just over the delays, but even over the treatment of these passengers.
3: ये देखो, ये देखो, खुली हैरेसमेंट। नहीं, एक सेकेंड, किसने क्या दिया? तुम्हें सारे राइट है। नो, यू हैव ऑल द राइट टू फ्लाई। ये देखो, बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ये कस्टमर अटेंड कर रहा है यहाँ पर।
4: डिड आई रिशेड्यूल योर फ्लाइट?
3: हु वाज द वन Who gave you a right to provide me this information? If you are not entitled to listen our query, then who are you? You are not from SpiceJet, right?
4: Listen.
3: You are not from SpiceJet. I was listening to you, but you are yelling on me. That is the quality what SpiceJet have. Seriously. Totally unprofessional. एंड अपनी हालत देखो, तुम्हारा लग रहा है बीपी हाई हो रहा है, ऐसा लग रहा है कस्टमर तुम हो, मैं तुम्हारा वो।
4: आपको भी लग रहा है?
3: भाई मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं यहाँ पर हजारों रुपए लेके आया हूँ, शक्ल देख रहे हैं? सुन रहे हो भाई साहब, आप बताओ, ये भाई साहब भाई हमें थोड़ी देर पहले बोलने के लिए उठो यहाँ से, कैसे बैठे हो आप बताओ, जवाब दो इनको। हमारी फ्लाइट 10:10 PM की थी, सुबह 8:30 वालों की थी, हमें बताया 12:30 PM, अब बोल रहे हैं 12:30 AM रात का, अब बोल रहे हैं कल दोपहर 12:30 PM, वो भी श्योर नहीं है।
5: सारे निकालो कैमरा, सारे निकालो,
6: सर आवाज नीचे।
5: भाई जट चोर है, नहीं हैरेसमेंट, नहीं ऐसे
6: कोई चोर है।
0: The latest just coming in, ABVP has escalated Omar Khalid documentary row, where ABVP has now written to four union ministers in this regard. BJP student wing that is sought axing of Omar Khalid film. Top Bengaluru Law School, that is the National Law School of India University's screening row, that has now escalated big war on documentary on riot accused, where ABVP has demanded that the film be stopped and hold a high-level probe on how that film was played out, how it was screened. ABVP has said that anti-India plot has been instituted, saying that they will not allow anti-India film to be played like that. Listen in.
7: The three union ministers on this movie on Omar Khalid. What's your main demand?
9: So we have come to know that there has been a program going on, that, which was actually planned yesterday on Omar Khalid. We have written a letter, actually we have mailed a letter to Union Law Minister, Home Minister and Education Minister demanding an inquiry into the matter. It has also come to our notice that certain people who were accused of international activities during CANRC protest, which took place in Bengaluru 2020, they have been promoting this event, who are actually studying in LSIU, that clearly suggests that there has been involvement of those international elements in NLSIU. We just want the central agencies to inquire into this matter and punish those who are accused and those who want to mislead the youth of this nation.
0: And there you hear from ABVP students who've demanded as to how this film could have even been played, and also saying that they have written to four union ministers to this effect to say that a traitor's film, an anti-India film, that should not be allowed to play. BJP student wing that has sought the axing of Omar Khalid film. Let me take this to my colleague Sagai Ra, joining us on the broadcast. Sagai, the demands coming in from the ABVP over this particular film, they've also written to four union ministers. How are they taking this demand forward?
18: So we noticed that the ABVP has escalated the issue, where they have written letters to union ministers to act on this particular decision of National School of Law in Bengaluru, where they said that they are postponing the event. However, this is due to logistics as well as a few other issues. And they have also promised the students that they will screen this particular documentary in this trimester. And this has not gone well with the ABVP Students Association, where they have written to union ministers asking the union ministry to intervene and ensure this particular documentary based on Omar Khalid should not be screened in the college.
0: All right, many thanks for getting us those details. Meanwhile, Congress Karnataka chief has backed the riot accused. B.K. Hari Prasad has defended the Omar Khalid film. He's claimed that Omar Khalid is a true nationalist. B.K. Hari Prasad has taken an aim at the ABVP over the Omar Khalid row. Karnataka Congress chief has said that ABVP adores Godse as patriot, invoking RSS chief's London remarks saying true Hindus do not target Muslims. That is the word coming in from the Karnataka Congress chief, sending this as a reminder to ABVP that is demanding that Omar Khalid film should not be screened. Let's listen in to what B.K. Hari Prasad has said.
25: The Omar Khalid documentary was supposed to be screened at the National School of Law in Bengaluru, and it was supposed to happen yesterday. It was postponed, and they promised that they will screen on this trimester. Now ABP, which has opposed this, has written the letter to the Union Minister Amit Shah and the other ministers, asking them to intervene and address this issue and not allow the screening to happen.
26: ABP has got no moral.

0: सालों से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां। इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द PRA।
0: अब मैं क्या ही बोलूं?
3: परिवार अटूट भरोसा।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।

देखिए कुछ सांकेतिक चीजें भी होती हैं। आपने देखा ना, जैसे यूएई और ईरान की बातचीत ब्रिक्स में हुई कि नहीं हुई। वहां युद्ध भी हो रहा है, आपस की तो दूरियां भी हैं, कष्ट भी है एक दूसरे से, लेकिन बातचीत तो करी है। और बातचीत में कुछ सकारात्मक जो संदेश मिले हैं, जो संकेत मिले हैं, उनका भी सबने स्वागत किया है। तो ऐसा होता है जब कहीं पर अनबन हो जाती है और हम लोगों को एक दूसरे से कुछ कुछ कारणवश हमको दूरी बनानी पड़ती है, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो सब्सटेंटिव होती हैं, कुछ सांकेतिक होती हैं, लेकिन संदेश देने की आवश्यकता होती है कि संदेश कैसे दिया जाए। अब ये अगर क्रिकेटिंग बॉडी ने ये माना है, ये स्वीकार किया है कि इसको संदेश देने की आवश्यकता है और हम ऐसे संदेश देंगे, तो उस पर और क्या कहा जा सकता है। यही कहा जा सकता है कि उनका अपना निर्णय है और उचित निर्णय होगा, सोच समझ के किया होगा।

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Welcome, you're watching India Today and I'm Anisha Mathur. And our big story at this hour is about the biker case. A young woman chased on a city road, rammed by a speeding car and left injured. Sia has now come forward to reject the claims made by accused Kalyan Besla. The woman biker has claimed that Kalyan intentionally changed lanes and swerved to ram into her. Sia has revealed chilling details about the incident and pleaded that attempt to murder charge must be added against the goon driver, Kalyan. Acting on Sia's plea for justice, cops have finally arrested goon driver Kalyan Besla. The absconding accused was arrested from Rajasthan and will be brought to Gurgaon for the probe. Additionally, Gurgaon police have registered a case of attempted murder based on statements from the victim Sia's family and the video that had gone viral on social media. Earlier, India Today tracked down the driver, Kalyan Besla, who remains brazen. The driver has claimed that the bikers were riding erratically and that he was only asking the victim to ride safely. He's in fact blamed the victim, alleging that the video was edited to portray him in a bad light. The shocking incident on Gurugram's golf course road has triggered a string of demands for strict action against the accused driver.
1: तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है और उसमें पीछे भी दो लोग हैं क्योंकि गाड़ी के शीशे सारे काले थे, वो एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं तो मुझे डर था कहीं टक्कर मार के मुझे गिराना थे इसी चीज को देख के कि मैं थोड़ा आगे जाऊंगी तीन चार गाड़ियां हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे पीछे हो जाएंगे पर वो हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे लगा के रखे
2: इंटेंशन कब क्लियर हुई कब लगा आपको कि कार वाले की इंटेंशन गलत है
1: जब वो मेरे साइड में आके शीशे डाउन करके जब वो इशारे कर रहे थे
2: क्या इशारा कर रहा था कुछ और बोला भी
1: कुछ वो बोल रहा था और मैंने हेलमेट पहन रखा था इतना क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दे रहा था और वो इशारा कर रहा था साइड वाला भी इशारे कर रहे थे मुझे और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप साइड हो जाओ वो दूर ही नहीं हो रहे
2: तो किन धाराओं में FIR दर्ज हुई और आपकी डिमांड क्या है
1: अभी धाराएं लगेंगी तो मेरी स्टेटमेंट के और क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर है ये तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस लड़के के अगेंस्ट
3: ध्यान से उस वीडियो को देखना इस तरह कस्टमाइज कल की बात है कल ही डाल देते ना साथ साथ अब अच्छा मैं बताता हूँ हमारी गलती है ठीक है जी हमने मार लग गई हमसे रोड पे लग जाती है चलो अब उसकी लड़क नहीं बता देता हूँ वो पीछे से आ रहे थे आगे ले गए ठीक है जी मैं आगे आ गया अब जो वीडियो हो जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो बढ़िया है मतलब पर स्लो चलाओ क्योंकि उस लड़की पे ना तो किट थी क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा मेरे पास भी है रेसिंग बाइक मैंने उससे ये बोला था और उसके साइड में लड़का दोनों से बोला था मैंने एक से नहीं पूरी वीडियो डलवाऊँ ना जी
4: अच्छा एक बात बताइए
3: मैंने बोला था पहले सुन लो मेरी बात मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया लेकिन आप बार बार मैंने कि हमारे हमें टीच मत करो बार बार टीच मत करो लग जाएगी अच्छा जी ठीक है फिर मैंने कहा जाने दे फिर वो फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था तो वो मेरे आगे कैसा है आप सोचो ना जब मैं यूँ कह रहे थे कि निकल गया था फेस आप वीडियो में देखना मैं निकल गया अच्छा फिर आगे आगे चलो कोई नहीं वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी मैं पीछे से आया हूँ यूँ ठीक है इधर आप देखो टाटा की है कौन सी गाड़ी है साइड में उसको ठोक देता उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता अच्छा सुनो आप इनको देखना मैं जो मैं मेरे ठीक है इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़ बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी और वहाँ यू टर्न था मैं यू टर्न के चक्कर में अच्छा अब जाती है थोड़ा सा है
4: अब नॉर्मली
3: लग गई मुझे तो
4: ड्राइविंग में ये सिखाया जाता है कि अगर चलो हिट भी होगी कोई बात नहीं सड़क पे चलते
3: मेरी गाड़ियों में कई बार लग ली
4: आपको लगता नहीं कि आपको रुकना चाहिए था देखना चाहिए
3: बताता हूँ उसका लिए बिल्कुल सही जवाब मैंने भाई से बोला मैंने क्या रुक जाना चाहिए ठीक है मुझे दुख हुआ बड़ा उस लड़की को देखो मैंने जानता मुझे जी मैंने पता लड़की है वो उसने जब हेलमेट टेस्ट किया था तो मैंने कहा ओके वेरी गुड मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आप मुझे मंदिर में घुसा लो
4: सुनो आप आपको रुकना नहीं।
3: अच्छा रुकने की बताता हूँ मैं। मैंने जैसे आगे बढ़े वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पे लग रहे हैं। मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे? फिर भी मैंने बत्ती पे रोकी, मैंने शीशा डाउन किया। मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात। मैंने उसे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे समझ गए मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने वो लड़के ने कि भाई आयदा नहीं है रुकने में, निकल लो।
4: अच्छा
3: समझ रहे हो, ये बात थी। मैं क्यों भागता भाई, मैं तो खुद हेल्प करता हूँ लोगों के।
4: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया या आपने अपनी बात क्लेरिफाई करने की कोशिश की?
3: मैंने अपने DSP साहब, मैंने उनसे बोला कि सर मेरी क्या नाम है वीडियो डाली उन्होंने ऐसे एडिट करके, छोटे छोटे क्लिप जोड़ के मैं उसमें विलन दिखा रखा हूँ, विक्टिम कार्ड वो है, विक्टिम कार्ड खेल रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उसके लिए किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा, अच्छी है लड़की, मेरी गलती लगा लो, चलो मुझसे लगी बड़ी गाड़ी, लेकिन ना तो वो बाइकर्स की रोड है ना कुछ। अच्छा सुनो, मैंने करी अपने DSP साहब उनसे बोल दिया, मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये सच्चाई है और ये बात, और मैंने कहा इसको हाईलाइट इतना क्यों करा जा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों करा जा रहा है, क्या कुछ पहली बार स्पेशल वो हुआ? क्या मैं मेरे नाम आज तक एक केस नहीं है, हिट एंड रन का क्या मतलब है सर? अच्छा मैं पिटता हूँ,
4: पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये बात आपको कब पता लगी?
3: मुझे तो आज ही पता लगी सारी चीज़ें, अगर अभी दोपहर पीछे CIA मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, CBI जा रही है, CIA जा रही है, क्या कर दिया मैंने, मुझसे संपर्क करो ना। और उस बहन जी से मैं बोलता हूँ, उस मैडम जी से, कि आप मुझे बताते जब पता लग गई थी, मुझे बताते कोई मेरे लिए कुछ वीडियो डाल रहा है, अरे क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी क्या नहीं करी, वो तो मुझे पता।
4: फिलहाल अब आप क्या कहना चाह रहे हैं पुलिस से, क्या कहें?
3: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं,
4: अगर गुड़गांव पुलिस संपर्क करती है या आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुड़गांव पुलिस से?
3: हाँ बिल्कुल, मैंने बोल दिया सर से।
5: पुलिस की कार्रवाई बहुत ही अच्छी हुई है इसमें, और FIR जैसे कि उन्होंने हमसे पहले FIR करवा दी थी, फिर हमने करवाई, और बहुत ही जल्द और फास्ट वर्क हो रहा है पुलिस का यहाँ पे, थैंक यू उसके लिए। सड़क पर जैसे कि आप देख सकते हैं उनको बचाने के लिए उनके वकील क्या क्या एलिगेशन कह रहे हैं कि इन्होंने फॉलोअर्स के लिए करा है, और कह रहे कि, और उनके बहुत सारे सपोर्टर है थोड़े वहाँ कई शायद पलवल वगैरह के, वो कह रहे कि वो गलती से टच हुई है गाड़ी, और ये कह रहे कि गलती होती तो वो बंदा रुकता, अगर उसे लग रहा है कि उसकी गलती है तो वो रुकता, उसे ठोक कर नहीं जाता वो ऐसे।
0: This is a case, viewers, that has raised a lot of questions. Why is it that road rage happens so much? We're also bringing you live shots of the accused man who's finally been arrested. Goon driver Kalyan has been arrested now after claiming that he had done nothing wrong. But the video, viewers, is very, very clear. The man came from behind the bike. The white car comes from behind the bike, changes lanes, and hits the driver. It hits the biker.
6: बिल्कुल कल्याण बैचला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख सकते हो,
7: बाहर निकाला जाएगा। ये सामने जो तस्वीरें
0: हैं, अरेस्ट, ही हैज बीन अरेस्टेड, ही इज हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम दौसा इन राजस्थान। Those are the visuals we're getting to for you, the live visuals that just ran. Now you can see on India Today. Arvind Oja is on the phone line with me on this story. Arvind, Kalyan Besla has been arrested. Earlier when he spoke to our cameras, he was very defiant. Ki maine kuch nahi kiya, jo kiya बाइकर ने किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। अब उसको फाइनली अरेस्ट कर लिया गया, व्हाट मोर कैन यू टेल अस?
8: देखिए कल ये फरार हो गया था, और जैसे ये जब फरीदाबाद के पलवल से भाग रहा था उस दौरान इंडिया टुडे की टीम ने इसको पकड़ा था। हमारे इंटरव्यू के बाद वहां से भाग गया था, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी, पूरा रूट तैयार किया गुरुग्राम पुलिस ने, उसके बाद दौसा से जो ये अक्यूज है इसको किया अब पीछे गुरुग्राम लाया जा रहा है, और कोर्ट उसकी आज चौहान की फैमिली ने, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का भी जो सेक्शन है वो FIR में ऐड किया है और मल्टीपल टीमें लगाई गई थी। जो बैसला है इसको राजस्थान के दौसा से पुलिस ने
0: Arvind Oja there bringing us the updates. We'll get that connection back with Arvind in just a moment. But as Arvind Oja was telling us, India Today caught him at Palwal. But now he's finally been arrested from Dausa in Rajasthan. The question really goes, how is it that the police couldn't find him when media persons did? India Today could find him. It took the police another 24 hours almost to find this man. Arvind Oja is back on the line with me. Arvind, aap jaise keh rahe the, kal Palwal mein iska bite hua tha Kalyan Baisla ka. Police ko phir bhi itna time lag gaya is aadmi ko pakadne mein. What can you tell us about the investigation?
8: बिल्कुल, देखिए जो इंडिया टुडे है उसने एक्सपोज किया इस कल्याण बैसला को। जब हमें जानकारी मिली थी इसका घर है उस लोकेशन पर हम पहुंचे जहां कल्याण बैसला ने इंडिया टुडे से बातचीत की और खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस वहां पहुंचती, वो मौके से भाग गया था। जब मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आया, उसके बाद फिर गुरुग्राम पुलिस ने एक केस लगी थी, लेकिन ये पलवल से भाग राजस्थान के दौसा में छुपा। उसके बाद वहाँ गुरुग्राम पुलिस ने इसको डिटेन किया और पूछताछ के बाद इसको अरेस्ट किया है। अब इसको गुरुग्राम निर्माण गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि कैसे कल्याण बैसला राजस्थान पहुंचा, किस किस ने इसकी मदद की, ये सारी डिटेल्स गुरुग्राम पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा करेगी। लेकिन देर से ही सही फाइनली पुलिस ने जो ये अक्यूज है कल्याण बैसला उसको अरेस्ट किया है और अब गुरुग्राम के कोर्ट में से प्रोड्यूस किया जाएगा।
0: And can you also tell us FIR में क्या क्या धाराएं लगी हैं finally? Because victim is saying it should be attempt to murder. What has the police put actually in the FIR?
8: पुलिस को कोई कंप्लेंट नहीं दी थी। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था उसके आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने सू मोटो लिया और एक्सीडेंट की FIR दर्ज की थी। कल जब जो विक्टिम की फादर है अपने लॉयर के साथ गुरुग्राम पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, उसके बाद कंप्लेन तो लेंगे, लेकिन वीडियो जिस तरह से सामने आया था और इंडिया टुडे ने पूरा ये मैटर है इसको एक्सपोज किया था, उसके बाद वीडियो के आधार पर जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस गुरुग्राम पुलिस ने रजिस्टर्ड किया और आज गुरुग्राम पुलिस दिल्ली में जो शिवानी चौहान है उसके घर पर पहुंची थी, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और फिर ऑफिशियली गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर्ड हो गया है और उसके बाद फिर जो ये बैसला है इसको राजस्थान के दौसा से पुलिस ने पकड़ा और ऑफिशियली इसे अरेस्ट कर लिया।
0: जी अरविंद ओझा देयर ब्रिंगिंग अस द इंफॉर्मेशन। लेट्स टेक यू बैक टू दौसा। अरविंद स्टे ऑन विद मी बट लेट्स शो आवर व्यूअर्स वंस अगेन द फुटेज फ्रॉम कल्याण बैसलाज अरेस्ट इन दौसा।
6: इस आरोपी को लेकर जा रही है जो कि कल जिस तरह की घटना एक रायर में आई थी उसको लेकर जा रही है। गुरुग्राम में जो रिटेंडेंट केस मामला था उसके आरोपी को और अब पुलिस यहाँ थाने से इस आरोपी को लेकर जा रही है जो कि कल जिस तरह की

0: मैं तो रिटेंडर केस मामला पुलिस के आरोपी को पुलिस ने यहाँ किया है और अब पुलिस यहाँ सदर थाने से इस आरोपी को लेकर जा रही है, जो कि कल जिस तरह की एक रायर थी उसको लेकर जा रही है। शाम मैं तो रिटेंडर केस मामला पुलिस के आरोपी को पुलिस ने यहाँ किया है और अब पुलिस यहाँ सदर थाने से इस आरोपी को लेकर जा रही है, जो कि कल जिस तरह की एक रायर थी उसको जा रही है। शाम में जो रिटेंडर केस मामला पुलिस के आरोपी को पुलिस ने यहाँ किया है और अब पुलिस यहाँ सदर थाने से इस आरोपी को लेकर जा रही है, जो कि कल जिस तरह की एक रायर थी उसको जा रही है। शाम
1: Just saw the visuals of Kalyan Bensla, who has now finally been arrested from Dausa in Rajasthan. Arvind Ojha has been telling us about how India Today tracked down this accused in Palwal in Haryana, which was his residence. And then he fled from there and now he has finally been arrested by the Gurugram police. Remember, India Today has been covering this. The focus, the coverage has forced action in this case. The police registered a suo motu FIR because the video had gone viral, because the video was covered extensively on India Today. This is something that also should raise serious concerns for our citizens. Why is it that this kind of cases are happening on our roads? Himanshu is live with me on this story. Himanshu, kya hoga ab? Finally, Kalyan Bensla ko arrest kar liya gaya hai. Jo victim hai, Sia, unka bhi bayan le liya hai police ne. Ab kya umeed rakhte hain? Ab kya aage agla kadam kya hone wala hai?
2: देखिए, पुलिस जल्द से जल्द पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। एक टीम बनाई गई है जो तमाम रूटों के सीसीटीवी फुटेज निकालेगी, जो अलग अलग बाइकर हैं उनके जो बाइक्स पर जो कैमरे लगे हैं वो रिकॉर्ड करेगी, और दोनों तरफ के जो क्लेम है, चाहे वो कल्याण बैसला का क्लेम हो या शिवानी का क्लेम है, इन दोनों क्लेम्स के तहत सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। और जल्द से जल्द जो हमारी बात हुई है पुलिस सूत्रों से, इस मामले में चार्जशीट की जाएगी। लेकिन सवाल यह है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कि जो कैमरे जो बाइक्स पे लगे हैं, इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके बयान, और इसके अलावा अगर कोई आई विटनेस मिलता है कि दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि पुलिस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अनिशा, वो ये है कि आखिर एनकाउंटर पहली बार कब हुआ, कब बाइकर्स और कार आमने सामने आई या साथ साथ एक रोड पे आती है, और उसके बाद घटनाक्रम क्या होता है, कैसे जैसा कि क्लेम शिवानी की तरफ से शिकायत दिया गया है कि वो पीछा करने लगा, जैसे उसने लड़की देखी आइडेंटिफाई।
3: एसआई और हेड कांस्टेबल की संयुक्त टीम आई थी, उनके द्वारा जो वीडियो आप
1: हिमांशु स्टे ऑन विद मी जस्ट अ मोमेंट। एसएचओ ऑफ दौसा इज स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। लेट्स लिसन इनटू व्हाट द एसएचओ ऑफ दौसा हैज।
3: जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था आरोपीगढ़ थे जो उनके, जिसमें आपके कल्याण बैंसला और लवनीश को उन्होंने यहाँ से डिटेन करके, डिटेन करने के बाद जो हमें सूचना दी थी उसके बाद डिटेन करके उनको गुरुग्राम लेकर गए। प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी, प्रकरण चूंकि गुरुग्राम के जिले का है इसलिए हमारे यहाँ तो उनके द्वारा बस ये सूचना दी गई थी कि हमारे द्वारा जो इसकी घटना के संबंध में जो कथित आरोपी थे उनको डिटेन किया गया है, जिसके संबंध में आपको सूचित किया गया है। ये आगरा रोड से उनके द्वारा डिटेन करना बताया है, और जो कि सदर थाना इलाके में उन्होंने यहाँ दर्ज कराया, और आगरा रोड से बताया किसी होटल से और किसी व्यक्तिगत मकान से उनके द्वारा जब इनको डिटेन करना नहीं बताया, आगरा रोड से उनके द्वारा डिटेन करना बताया गया, और विस्तृत जानकारी वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा इस संबंध में अनुसंधान के संबंध में और आरोपीगढ़ की विस्तृत जानकारी उनके द्वारा गुरुग्राम में दी
0: जाएगी।
3: जी जी सर, वो सारी जो जानकारी उनके द्वारा दी
0: जाएगी।
3: हाँ, उनके द्वारा डिटेन किया जाकर वो उसको हमरा लेके गए। देखो, ये गुरुग्राम का मामला है जहाँ से सोना से एसआई और हेड कांस्टेबल की संयुक्त टीम आई थी, उनके द्वारा जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखा डिटेन करके उनको वो गुरुग्राम

0: राम लेकर गए।
1: क्या
0: प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी, जो प्रकरण चूंकि ये गुरुग्राम की जिले का है, इसलिए हमारे यहाँ तो उनके द्वारा बस ये सूचना दी गई थी कि हमारे द्वारा जो इसकी घटना के संबंध में जो कथित आरोपी थे उनको डिटेन किया गया है, जिसके संबंध में आपको सूचित किया गया है। ये आगरा रोड से उनके द्वारा डिटेन करना बताया है, और जो कि सदर थाना इलाके में उन्होंने यहाँ दर्ज कराया है।
2: और होटल थी, बस गाड़ी थी,
0: आगरा रोड से बताया, किसी होटल से और किसी व्यक्तिगत मकान से उनके द्वारा जब इनको डिटेन करना नहीं बताया, आगरा रोड से उनके द्वारा डिटेन करना बताया गया। और विस्तृत जानकारी वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा इस संबंध में, अनुसंधान के संबंध में और आरोपीगण की विस्तृत जानकारी उनके द्वारा गुरुग्राम में दी जाएगी। जी जी सर, वो सारी जो जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी।
2: क्या यहाँ से पुलिस गुरुग्राम ले गई है?
0: हाँ, उनके द्वारा डिटेन किए जाकर वो उसको हमरा लेके गए हैं।
3: Alright, that was the SHO of the Dausa Thana making it clear about the procedure that has been followed. The Gurugram police reached out to the Rajasthan police to inform them that they are in their jurisdiction, that they are looking for the suspect. And as the SHO said, this man has been picked up from a hotel or a private residence where he was finally tracked down. My colleagues Himanshu and Arvind Oja have been tracking this story on how this man fled first to Palwal, and now he's been found in Dausa. This case, viewers, has raised a lot of questions about what is happening on our roads. The victim has claimed that this man and other people in the car, there were other men also in the car, a car with tinted windows, which is again illegal, a car which followed the biker, which according to the victim harassed the biker and then hit her, which was very, very clear in the video that has gone viral, which the India Today has been tracking since yesterday. Questions will be asked. Why this kind of behavior has happened on our roads? What are our authorities going to do about it now that this man has been arrested? And as my colleague Himanshu was just saying, the investigation will include looking at the CCTV footage from the road cameras. Himanshu is still with me on this story. Himanshu, aap bata rahe the, CCTV footage khangali jayegi. Kaun si sadak hai ye jahan par ye पूरा हादसा हुआ, जहां पर उस वुमन बाइकर को पहले हैरिस किया गया, फिर उसकी जो वीडियो आ रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से गाड़ी आई और टक्कर मारी बाइक को, और क्या बता सकते हैं उस वीडियो के बारे में आप?
4: देखिए, सेक्टर 56 का इलाका है ये, जो गुड़गांव का पूरा इलाका है जहां पर ये हुआ, और जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 मिनट पहले इनका एनकाउंटर हुआ, जो हमारी बातचीत हुई है, और उसके बाद जो आरोप है शिवानी का कि वो कोशिश ये कर रहा था कि बाइक, जो कार है वो उनकी बाइक के पीछे ले आए, जबकि यहाँ पर कल्याण बैसला का ये कहना है कि वो कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता था कि किस बाइक को लड़का चला रहा है, और लड़की वैसे भी मेरे साथ मेरी बहन बैठी थी। अब यहाँ पर शिवानी कह रही है कि जो टिंटेड ग्लास थी और उनको नजर नहीं आया पीछे, लेकिन आगे दो लोग बैठे थे, ये उन्होंने क्लियर देखा। अब देखिए, ये दोनों तरीके के क्लेम्स हैं, एलिगेशंस हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो वीडियो है, जो एक्सीडेंट होता हुआ दिख रहा है, उसकी कोई भी सफाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है, और मुश्किल बिल्कुल वीडियो है, वो क्लियर दिख रहा है कि गाड़ी एकदम से आती है। अब उसके पीछे
3: All right, we seem to have lost the connection with Himanshu there. We'll get that back to you. But for now, it's time for me to take a break. My colleague Jessica will be taking over with more news and updates. Over to you, Jessica. Right, that's the latest that we're getting in from this Gurugram shocker, where we've seen these visuals of how the woman biker was first hit. And then now Kalyan Baisla, these are the visuals that we're in fact getting off his arrest. And now he's been arrested in Rajasthan, in Dausa. And these are the visuals. In fact, yesterday, India Today also spoke to Kalyan Baisla, and where he was saying that he did not know that it was a girl
1: who he had hit. He was sorry about it, but he'd also mentioned that it was some sort of a race that was happening and he was trying to catch up to them. This, of course, has been contested by Shivani, who was the biker, the girl who was hit. And right now, these are the visuals that we're getting in from Rajasthan, where the police have found Kalyan Baisla, the accused in the case. Remember, the car was also traced to an army personnel who had lent it to his friend. And then this was the driver who was another third person in the case. Now he was on the run after this incident happened in Gurugram. And now he's been traced to Dausa in Rajasthan. The girl has been alleging that she first did not want to reveal her identity, as we've seen in a lot of women bikers' cases where they choose not to reveal their identity. They hide behind their biking gears. But she came out, revealed her identity in the case because there was a lot of furor happening when we look at this particular hit and run incident. Now, these are the latest visuals that we're getting in from Rajasthan. Our reporters on the ground are also tracking the case. And these are the visuals of in Rajasthan of how police have now caught up to Kalyan Baisla. He was on the run so far. But this is the same guy who was driving the car at the time. And you had seen the chase that had happened yesterday after the woman biker. She was taken briefly to hospital. She has sustained minor injuries, but now she's come out in the open and now she's accusing Kalyan Baisla of, in fact, catching up to her and hitting her also in the case. So these are the visuals that we're getting in from Rajasthan. And the incident happened in Gurugram. So it happened in Haryana. And from there on, Kalyan Baisla ran to Rajasthan, where now he's been traced in Dausa. So now we've been getting these visuals of how he actually fled from one state to another. And Baisla's advocate, in fact, has been saying that they were racing against each other. There was a large group of bikers. There were 20 to 30 bikers who usually go in a group when they are, taking such sort of biking treats. And one of that was also the girl Shivani now, who's revealed her identity, the girl who was on the bike in Gurugram. And the collision between the car and the bike occurred because of the speed at which it was also happening, is what Kalyan Baisla is alleging. But we also see that now he's been arrested. These are the visuals of where we're seeing him with the Rajasthan police. They now caught him in Rajasthan. He fled there from Gurugram. These are the first images of his arrest. And India Today has confronted the rogue driver as well. He's arrested in Dausa, Rajasthan. Yesterday also, we were tracking the case and we spoke to Kalyan Baisla, where he said that he did not know initially it was a girl. It was some sort of a race that was happening. But of course, the woman biker has contested all of these statements which have come in from Kalyan's side. So these are the police had registered a case at Sector 56 in Gurugram, where also the incident took place in Gurugram's. It was a road where we had seen this incident take place. And now Kalyan Baisla has been arrested in connection with the case. And there's also been an attempt to murder charge, which has been filed on him in the FIR. For more on that, we have Arvind Doja joining us. Arvind, Kalyan Baisla ke hume visuals mil rahe hai, unhe Gurugram se ab trace kiya gaya hai Rajasthan mein. Unki FIR mein kya likha gaya hai, kya exactly charges hai unke upar?
5: जब गुरुग्राम से अभी मैं सुन लिया था तो सिंपल एक्सीडेंट की एफआईआर रजिस्टर की थी, लेकिन लेट इवनिंग जब जो शिवानी चौहान है, जो विक्टिम है, उसकी फैमिली और उनके वकील, वो जब स्टेशन पहुंचे थे कंप्लेन फाइल की, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में एड किया. मीनवाइल जो अक्यूज्ड है वो बस को लिया था जब वो भाग था, उसके बाद फिर ग्राम पुलिस ने उसे अस्पताल उसे प्रोग्राम लाया जा रहा है जहां पर
1: that we seem to have lost a connection with Arvind, but now the Kalyan Baisla has been traced in Dausa in Rajasthan, and his FIR in fact mentions an attempt to murder case because of the visuals that we were getting in yesterday. The biker sustained minor injuries. We can see her in fact coming out, revealing her identity, speaking to the cameras as well now. But yesterday the kind of visuals that we were getting in from Gurugram were pretty horrifying when we saw that collision happening, because initially Shivani, the girl biker, she's claiming that she was being chased by these bikers, and then she asked them to maintain some distance, but that apparently hurt the men who were driving the car, and that is when they decided and they came closer to her, and then the collision happened. And now, after which Kalyan Vaisla ran, he fled from the scene of incident, and now he's been traced to Rajasthan in Dausa, where we're also getting the visuals, the first visuals of the encounter that's happening with the police. You can see that he's there in the presence of police people. He's the same person whose visuals we had also gotten yesterday when the bikers had confronted the car driver and had gone up to him. And we can see that it's exactly the same man in now the police station in Gurugram, in Rajasthan, Dausa as well. Yesterday we spoke to Kalyan Vaisla, and he said that he felt sorry that he hit the girl, and he acknowledged the fact that this collision had happened. But what his lawyer and Kalyan seemed to be drawing out is that it was a chase sort of happening. It was a racing chase which was happening, after which this collision took place. Now an FIR has been slapped on him, in which the mention of hit and run and also of attempt to murder has been slapped against him. There's been an escalation of charges, and this is what the victim is also alleging. Initially, we had seen that Gurugram police had taken suo motu cognizance of this incident, and after which they were trying to find the accused. Now, the visuals that we're showing you, let's also listen into what exactly was happening between Kalyan Vaisla and the police officials that we see now in Rajasthan.
6: कल्याण बैसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया गया है. ये तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख सकते हो.
1: So these are the visuals. You can see Kalyan Vaisla, in fact, hiding his face. He's not, he's refusing to answer any questions at the moment. But you can see that interrogation is happening when it comes to Kalyan Vaisla. They're trying to understand what really happened yesterday and trying to piece together the incident which also took place. Now, let me bring in Himanshu for more on this. Himanshu, hume visuals mil rahe hai unke, jahan pe wo Rajasthan police ke saath hai. Kya exactly chal raha hai scene pe?
4: देखिए, वहाँ पर डिटेन किया गया क्योंकि लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी. जब से एफआईआर में धाराएं जुड़ी थी, संगीन धाराएं, नॉन अवेलेबल धाराएं, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर में ये नॉन अवेलेबल धारा है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें. तो ऐसे में जब से ये धाराएं जुड़ी थी, उसके तुरंत बाद से पुलिस की टीम सक्रिय हो गई थी. लगातार जो तमाम लोकेशंस थी उनको ट्रैक किया गया, मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश की, और उसके बाद जैसे ही पता लगा कि कल्याण बैंसला दौसा की तरफ जा रहा है, पुलिस ने उस इलाके में सक्रियता बढ़ाई. लोकल पुलिस जो वहां की थी, राजस्थान पुलिस, उससे हरियाणा पुलिस ने संपर्क किया और दौसा में उसे पकड़ लिया गया. जैसे ही उसे पकड़ा गया, दौसा पुलिस ने फौरन गुड़गांव पुलिस से संपर्क किया और कन्फर्म किया कि पकड़ा गया शख्स ही कल्याण बैंसला है. और उसके तुरंत बाद फिर यहां से टीम निकली ताकि उसको डिटेन करके वापस जो है गुड़गांव ले आए, यहां पे अरेस्ट करें फॉर्मली, क्योंकि एफआईआर सेक्टर 56 थाने में दर्ज है, और उसके बाद जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो शुरू की जाए. जी,
1: और क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट गुरुग्राम में हुआ था, कितना समय लगा पुलिस को राजस्थान तक पहुंचने के लिए, और हमें डिटेल्स बताइए एफआईआर की, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 10 साल की सजा इसमें हो सकती है, इंसिडेंट ऑफ हिट एंड रन का केस नहीं बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी इन पे एफआईआर में लगाया गया है।
4: जी देखिए, बिल्कुल देखिए, चूंकि ये एक बार में ही नहीं निकला, अगर आप देखेंगे तो ये कल इसकी लोकेशन कल्याण बैसला की पलवल के पास थी, तो गुड़गांव से निकला वो पलवल गया, पलवल में इसके अपने अपना घर है, रिलेटिव का घर है, वहां पर वो रुका, आज तक ने इसको ट्रैक किया, आज तक इंडिया टुडे ने वहां पर ट्रैक करके इसका इंटरव्यू किया, और उसके बाद फिर जब इसको जैसे ही पता लगा कि अब ये केस बिगड़ने वाला है, क्योंकि वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो इसके बाद ये वहां से फिर ये निकलता है और राजस्थान की तरफ जा रहा होता है, और उसके बाद पुलिस ने इसको ट्रैक करती रही, सारी रात पुलिस ट्रैक करती रही, लेकिन ये कहीं पर न तो बहुत देर रुक रहा था और न ही ये इसकी कोई निश्चित दिशा थी कि पुलिस उस दिशा में पहले पहुंच जाए। इन बिटवीन दौसा में जब इसकी लोकेशन ट्रैक की गई तो लोकल पुलिस की मदद से उसे फौरन वहीं पर डिटेन किया गया और उसे पकड़ा गया है, वापस ले आ जाएगा। अब जब यहां पे वापस ले आ जाएगा तो उसको फिर वापस पुलिस मेडिकल कराने के बाद कोर्ट पे पेश करेगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी। अब देखिए, एक पार्ट तो ये है जिसने अभी सिया का शिवानी का इंटरव्यू भी किया, अरे उसका पूरा स्टेटमेंट रजिस्टर करा, एफआईआर दर्ज हो ही चुकी है, दूसरी तरफ अब आरोपी भी पकड़ा गया है तो उसका स्टेटमेंट भी दर्ज करेगी पुलिस, और फिर उसके बाद तमाम जो आई विटनेसेस है केस के, जो अन्य बाइकर थे जो शिवानी और सिया के साथ चल रहे थे, उनका स्टेटमेंट रजिस्टर किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आई विटनेस मिलता है जो रेड लाइट पे मौजूद था, उन सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। पूरी जो पूरी सड़क है जहां पर एक्सीडेंट हुआ या उसके पहले जहां पर पीछा करने का आरोप है, उन सभी जगहों के जो फुटेज है वो इकट्ठी की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस यहां पर इकट्ठे करने की कोशिश करेगी। तो जो कुछ भी इस पूरे केस से संबंधित एविडेंसेस हैं उसको सबसे पहले जुटाने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास सबूत एविडेंस हाथ लगते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, उसके आधार पर पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी। जी,
1: तो अभी इन पे चार्जशीट बनने वाली है। एक शिवानी का जो बयान है उसमें वो कह रही है कि अगर वो एक्चुअली में सॉरी थे, अगर उनको एक्चुअली डिस्ट्रेस था जब वो एक्सीडेंट हुआ, तो वो वहाँ से भाग क्यों गए, उन्होंने वहाँ पे रुके, उनकी मदद क्यों नहीं की। तो कल्याण बैसला का क्या बयान है, वो इसमें क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने हिट एंड रन क्यों किया, और वो किस तरह से शिवानी को काउंटर कर रहे हैं, शिवानी ने जो बयान दिया है उसमें।
4: देखिए, क्लियर उनका कहना है कि मुझे डर था कि जो बाइकर है, क्योंकि उनके मुताबिक 28 से 30 बाइकर थे, तो ऐसे में कहीं वो एकजुट होकर के पिटाई ना कर दे।
1: राइट, हिमांशु, आई विल आस्क यू टू स्टे बैक बिकॉज़ वी आर गेटिंग इन अ स्टेटमेंट फ्रॉम द विमेन बाइकर्स फादर, लिसन इनटू व्हाट ही इज सेइंग।
7: अब उसकी जगह उन्होंने उसके ऊपर 307 और 554 वाली धाराएं लगाई है जो लगनी चाहिए थी, तो पुलिस अच्छा काम कर रही है, सेड कर रही है, और हम चाहते हैं कि किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो पूरे देश के अंदर। लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए।
8: गिरफ्तारी के विजुअल्स भी आ गए, मतलब दिखा दिया है पुलिस ने कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो और काफ़ी ज़्यादा जल्दी, क्योंकि स्लो मोटो लिया पहले गुड़गांव पुलिस ने, उसके बाद अब आरोपी को।
7: हाँ, एक दिन पहले तो वो खुद ही रील बना के डाल रहा था, मैंने देखी थी उसकी रील, और जब पुलिस के संज्ञान में आया, कल हम गए थे गुड़गांव, वहाँ के SHO मनोज कुमार जी ने कहा कि हमने टीमें लगाई हैं, कोशिश करेंगे उसको रात में गिरफ्तार कर लेंगे, और उन्होंने अभी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और जिस प्रकार का ये क्राइम था, ये ना एक्सीडेंट क्राइम नहीं है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाला क्राइम करके वो गए हैं। ऐसे लोग हार्श गाड़ी नहीं चलाते, मतलब हिट कर रहे हैं, तो महिला सुरक्षा को भी लेते हुए वहाँ की सरकार ने भी संज्ञान में लिया है, पुलिस ने भी संज्ञान में लिया है, थैंक्स फॉर, सभी का धन्यवाद है,
8: थैंक यू
1: सर। राइट, सो दैट वाज सियाज फादर, शिवानीज फादर, हु इज नाउ इन फैक्ट थैंकिंग the police for this speeding action and also acknowledging the fact that a lot of women bikers have to face this kind of stereotype, and because of which this whole incident also took place. Let me also bring back in Himanshu. Himanshu, अभी हमें Shivani के father का भी बाइट मिला है जिसमें वो पुलिस को उनके स्पीडी एक्शन के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इनफैक्ट ये एक मर्डर करने का भी अटेम्प्ट था बाइकर की साइड से, और उन पे ये सही एफआईआर भी दर्ज किया गया है।
4: हाँ बिल्कुल, ये मांग तो लगातार ही उनकी थी। कल भी जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने ये बात कही थी, और साथ साथ उन्होंने एक रिटन कंप्लेन भी यही फाइल की थी। और ये बात सुबह ही क्लियर हो गई थी कि पुलिस ने 109 BNS ऐड कर दी है, और इसके ऐड करने के साथ ही जो FIR थी, जो अवेलेबल थी, जो धाराएं लगी थी, वो उसके बाद बदल जाती है। और इस पूरे मामले में पुलिस लगातार कोशिश करती है कि जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए, और आखिरकार दौसा से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी
1: हमें आप दोनों के साइड की भी कहानी बताइए, किस तरह से कल्याण वैसला के किस तरह के बयान आ रहे हैं, उनका क्या जस्टिफिकेशन है उनके एक्शंस के लिए, और दूसरी तरफ से अभी हमें शिवानी और उनकी फैमिली से भी बयान मिल चुका है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये FIR हिट एंड रन का केस था, अटेम्प्ट टू मर्डर भी उसमें मेंशन किया गया है, और किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। दोनों तरफ से किस तरह के कमेंट्स और किस तरह के बयान और रिएक्शन आ रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए।
4: देखिए ये जाहिर तौर पे जो कल्याण है उसका ये कहना है कि उसको उसका इंटेंशन एक्सीडेंट का नहीं था, उसे यू टर्न लेना था, उसकी बहन साथ में थी, उसे पिंच किया जा रहा था। लेकिन जो छोटा सा जो क्लिप है जिसमें वो एक्सीडेंट होता हुआ नजर आया है, उसने वो कल्याण की जो तमाम बातें थी उसको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उसमें इंटेंशन काफी हद तक दिख रहा है। और अब इसकी एक्सपर्ट भी जांच करेंगे तो उसके बाद ही ये चीजें साफ हो पाएंगी, और साथ साथ जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो दोनों तरफ के जो क्लेम है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। जी
1: राइट, सो नाउ वी आर ऑल्सो सीइंग द मैन ऑन हुम द हीट इज नाउ गेटिंग टू हिम एंड ही इज नाउ बीन डिटेन्ड इन राजस्थान। इनफैक्ट इंडिया टुडे स्पोक टू हिम यस्टरडे, लिसन इनटू दैट कन्वर्सेशन।
9: ध्यान से उस वीडियो को देखना, इस तरह कस्टमाइज कल की बात है, कल ही डाल देते ना साथ साथ। अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी गलती है, ठीक है जी, हमने लग गई हमसे रोड पे लग जाती, चलो तहसील रख गई, बता देता हूँ। वो पीछे से आ रहे थे, आगे ले गए, ठीक है जी, मैं आगे आ गया। अब जो वीडियो जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ उससे। मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की के ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक। मैंने उससे ये बोला था, और उसके साइड में लड़का, दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं, पूरी वीडियो डलवाऊँ ना जी।
10: अच्छा एक बात बताइए,
9: मैंने बोला था, पहले सुन लो मेरी बात, मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार मैंने कि हमारे हमें टीज मत करो, बार बार टीज मत करो, लग जाएगी। अच्छा जी ठीक है, फिर मैंने कहा जाने दे। फिर वो फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था तो वो मेरे आगे कैसे आए, आप सोचो ना। जब मैं ये कह रहे थे कि निकल गया था बेस, आप वीडियो में देखना मैं निकल गया, अच्छा फिर आगे आगे चलो कोई नहीं। वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है। इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है, साइड में उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता। अच्छा सुनो, आप इनको देखना, मैं जो मैं मेरे, ठीक है, इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, अब प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो, उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी, और वहाँ यू टर्न था, मैं यू टर्न के चक्कर में। अच्छा अब जाती है थोड़ा सा,
10: अब नॉर्मली
9: लग गई मुझे, तो
10: ड्राइविंग में ये सिखाया जाता है कि अगर चलो हिट भी होगी कोई बात नहीं, सड़क पे चलते
9: हैं। मेरी गाड़ियों में कई बार लग ली,
10: आपको लगता नहीं कि आपको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए,
9: बताता हूँ उसका लिए, बिल्कुल सही जवाब। मैंने भाई से बोला, मैंने क्या रुक जाना चाहिए, ठीक है, मुझे दुख हुआ बड़ा उस लड़की को, देखो मैंने जानता, मुझे जी मैंने पता लड़की है, उसने जब हेलमेट टेस्ट किया था तो मैंने कहा ओके वेरी गुड, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आप मुझे मंदिर में घुसा लो,
10: सुनो आप।
9: अच्छा रुकने की बताता हूँ मैं, मैंने जैसे आगे बढ़े वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पर लग रहे, मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे, फिर भी मैंने बत्ती पर रोक, मैंने शीशा डाउन किया, मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात, मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे समझ रहे मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने, वो लड़के ने, कि भाई आयदा नहीं है रुकने में, निकल लो।
10: अच्छा
9: समझ रहे हो, ये बात थी, अरे मैं क्यों भागता भाई, मैं तो खुद हेल्प करता हूँ लोगों के।
10: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया या आपने अपनी बात क्लेरिफाई करने की कोशिश की?
9: मैंने अपने DSP साहब, मैंने उनसे बोला कि सर मेरी क्या नाम है वीडियो डाली, उन्होंने ऐसे एडिट करके छोटे छोटे क्लिप जोड़ के मैं उसमें विलन दिखा रखा हूँ, विक्टिम कार्ड वो है, विक्टिम कार्ड खेल रहे, चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उसके लिए किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा, अच्छी लड़की बेटी, मेरी गलती लगा लो, चलो मुझसे लगी बड़ी गाड़ी, लेकिन ना तो वो बाइकर्स की रोड है भाई ना कुछ। अच्छा सुनो, मैंने करी है अपने DSP साहब, उनसे बोल दिया मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये सच्चाई है और ये बात, और मैंने कहा इसको हाईलाइट इतना क्यों करा जा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों करा जा रहा है, क्या कुछ पहली बार स्पेशल वो हुआ कि मैं, मेरे नाम आज तक एक केस नहीं है, हिट एंड रन का क्या मतलब है सर? अच्छा मैं पिटता हूँ,
10: पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये बात आपको कब पता लगी?
9: मुझे तो आज ही पता लगी सारी चीज़ें, अगर अभी दोपहर पीछे CIA मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, CBI जा रही है, CIA जा रही है, क्या कर दिया मैंने, मुझसे संपर्क करो ना, और उस बहन जी से मैं बोलता हूँ, उस मैडम जी से, कि आप मुझे बताते जब पता लग गई थी, मुझे बताते, कोई मेरे लिए कुछ वीडियो डाल रहा है, अरे क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी क्या नहीं करी, वो तो मुझे पता।
10: फिलहाल अब आप क्या कहना चाह रहे हैं पुलिस से, क्या कहें?
9: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं,
10: अगर गुड़गांव पुलिस संपर्क करती है या आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुड़गांव पुलिस से?
9: हाँ बिल्कुल, मैंने बोल दिया सर से।
1: So that is Kalyan's version of the incident of what he claims to have happened. He is claiming that there was some teasing happening when they were both speeding against each other, and that is when he also signaled these bikers to stop. There was also some sort of accuses and slurs which were hurled at each other, after which these two then were sort of, you know, in a racing incident after which this collision took place. Now, Sia has come forward to reject these claims. In fact, till yesterday, she had decided to not reveal her identity. She usually hides her identity behind her biking gear. But yesterday in the night, in fact, she came out with a statement and she's rejected all these claims being made by Kalyan Besla. She's saying that it is a case of pure hit and run where he did not even stop after he had hit her, and why did he flee from the scene if he was not actually guilty? Why did he not take her to the hospital? Kalyan, on the other hand, is saying that he felt sorry about Sia getting hit and he did not know it was a girl initially. There were about 20 to 30 bikers there. Now, when we look at this incident, we have multiple scenes, also multiple angles from which this whole incident has also been captured from. One is, of course, the Sia's dash cam, which has captured the whole incident. And we also have another version on social media wherein one person is actually seen capturing the whole incident from another biker's perspective, where you can see the car signaling Sia to stop at some point. After she refuses to, the car goes and collides with her. So there are multiple visuals also of this scene which have come forth since this incident has gained so much traction, not just on television but also online and on social media. And but Sia is firm on her side, wherein she is claiming that this person needs to be taught how to drive. She says, in fact, she's gone on to say that women don't feel safe on the roads. Yesterday we spoke to multiple women riders who are now, you know, sort of entering into this what has been traditionally seen as a male dominated space, and they are riding motorcycles, and now they also came forward saying that these kind of incidents are far too familiar for them as well. Let me bring back in Himanshu, who's been tracking this case. Himanshu, humne Kalyan Besla ka bhi bayan suna, unke humne Shivani ke father ka भी बयान सुना, वो पुलिस को थैंक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पे शिवानी जो है वो सारे जो भी क्लेम्स कल्याण बैंसला के हैं वो रिजेक्ट कर रही है। वो कह रही है कि ऐसे अक्सर केसेस होते हैं जिसमें वुमेन बाइकर्स को अनसेफ फील होता है रोड पे, स्पेशली दिल्ली और गुड़गांव की अगर हम बात करें। दोनों के बयानों में क्या अंतर है, और अगर हम सारे अगर वीडियोस जो अभी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भी इतना प्रचलित हो गया है, काफी तरफ से हमें वीडियोस भी आ रही है, अगर आप हमारे लिए एक टाइमलाइन जोड़ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय गुड़ग्राम में? Right, we'll go back to Himanshu once we get him, but these are the conflicting versions of the same incident that we're also getting in, wherein Shivani has claimed that Kalyan intentionally changed lanes and swerved to ram into her. She has in fact revealed chilling details about the incident and pleaded that attempt to murder charge must be against this driver Kalyan. And this is what we've actually seen in the FIR, because we're also playing the visuals that we're now getting in from, you know, Rajasthan Dausa, where Kalyan was traced to, where the police detained him. Now, I think we have Himanshu back with us. Himanshu, aap bata rahe the hame ki pura incident agar hum piece together kar suke, different visuals jo aa rahe hain samne uske saath, to puri kahani kya banti hai?
4: देखिए अभी हमें पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन का भी इंतजार है, क्योंकि दोनों के क्लेम अलग हैं। एक क्लेम पे एफआईआर हो गई है, दूसरी तरफ जो कल्याण बैसला उसका कहना है कि एक तो उसे पिंच किया जा रहा था, जिसके बाद उसने बातचीत की, बहन मेरे साथ थी, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ था, किसी तरीके के बदसलूकी या खराब शब्द का इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ उस भीड़ में कोई लड़की है ये आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता, और बहन है, मैं भला किसी लड़की का पीछा कैसे करूंगा, मेरे खिलाफ आज तक एक थाने में कंप्लेन नहीं है। दूसरी तरफ उसने ये कहा कि एक्सीडेंट के बाद उसे एक्सीडेंट से पहले यू टर्न लेना था, उसने गाड़ी काटी और जब एक्सीडेंट हुआ तो इस डर से नहीं रुका क्योंकि बाकी बाइकर उसकी पिटाई ना कर दें। लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ अगर हम देखें तो वो किस कंडीशन में हुआ वो समझा जा सकता है। शिवानी के आरोप है कि गाड़ी के शीशे काली थे, जो अपने आप में एक कानून का टूटना है कि भला काले शीशे थे जब क्लियर है कि नहीं गाड़ी चल सकती तो काले शीशे कैसे थे और पीछे कौन था उसने नहीं देखा। आगे दो लोग थे उसने आइडेंटिफाई किया, वो ड्रंक हो सकते हैं ये भी सवाल उठाया गया, और एक्सीडेंट के बाद ये जाने बगैर कि जो मेरी गाड़ी से टकराया वो किस कंडीशन में, उसको कितनी चोट लगी, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, उसकी बजाय वो भाग गया। तो ये तमाम जो आरोप थे इस पे एफआईआर हो गई है, कल्याण बैसला गिरफ्तार हो गया है और अब उसे गुड़गांव पुलिस लेकर के गुड़गांव आएगी और यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर थारो इस पूरी चीजों की जाएगी, जिसमें जो आरोप लगाए गए हैं, जो बचाव में कल्याण कह रहा है, तो एविडेंस देखे जाएंगे कि एविडेंस के आधार पर पुलिस जो है वो आगे की चार्जशीट फाइल करेगी। जी
1: क्या हमारे पास कल्याण बैसला के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन है, क्या पास्ट में उनके ऐसे कोई केसेस है जो रह चुके हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, उनके बारे में हमारे पास और क्या डिटेल्स है?
4: कल्याण बैसला ने जब आज तक इंडिया टुडे से बातचीत की थी तो उसने क्लियर कहा था कि उसके खिलाफ कोई भी प्रीवियस कोई भी केस नहीं है, थाने में उसके खिलाफ कभी कोई मामला नहीं गया, कभी कोई कंप्लेन नहीं गई। वो जो स्पोर्ट्समैन खुद को बताता है, जिम चलाता है और बच्चों को ट्रेनिंग देता है फिटनेस की, जो आगे जो स्टेट लेवल पे खेलने जाते हैं उनको, ये उसका क्लेम है कि इस तरीके से वो पॉजिटिव लाइफ जीता है, लोगों को फिट रहने की सलाह देता है, जिम चलाता है, स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन रेडी करता है, ये उसका क्लेम था। जब उसने आज तक इंडिया टुडे के रिपोर्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उसने खुद ये क्लियर किया था कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं। हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सारा सच निकल करके सामने आएगा कि क्या कुछ बैकग्राउंड है, क्या करता है और किस तरीके का जो कोई कंप्लेन है या नहीं है। जी
1: बिल्कुल। और दूसरी तरफ पे अगर हम सिया का बैकग्राउंड देखें, हमें क्योंकि कल तक हमें सिया की आइडेंटिटी भी नहीं पता थी, वो अपनी बाइकिंग उन्होंने अपना एक इनफैक्ट स्टोरी डाला था जिसमें वो कह रही थी कि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगी। ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि विमेन राइडर्स अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती है, बट फिर उनका जब बयान आया, वो कैमरा पे आके उन्होंने मीडिया से भी बात की, तो हमें उनके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है, उनका क्या बैकग्राउंड है और वो कहाँ की रहने वाली है?
4: देखिए वो तो कालका जी की ही रहने वाली हैं, अपने पूरे परिवार भाई पिता के साथ कालका जी रहती हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव रही हैं, एक पार्टी के साथ उनका जुड़ाव भी रहा है और उन्होंने कहा कि करीब एक साल पहले से बाइकिंग का उनको शौक हुआ, वो बाइक खरीद के लाई और इस ग्रुप से, बाइकिंग का शौक तो था लेकिन ये जो ग्रुप जिसके साथ वो थी उनसे उनका जुड़ाव हुआ, तो ये लोग छुट्टी के दिन खासतौर से संडे या कोई अगर छुट्टी का दिन है तो ये लोग इस पूरे गुड़गांव और आसपास के इलाके में जाते थे। हालांकि जब मैंने उनसे पूछा कि अब इस हादसे के बाद क्या उन्हें डर लगेगा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल डर लगेगा उन्हें, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, एक ऐसा मैसेज दे कि अगर हमारी जैसी कोई महिला बाइकर है वो न डरे, तो इसके लिए एक मैसेज की जरूरत है, एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जी
1: बिल्कुल, जो सिया का इनफैक्ट क्लेम है कि ऐसा अब वो थोड़ा डरेंगी इसके बाद, जब से ये हादसा हुआ है तब से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और विमेन बाइकर्स खुल के बता रही है कि उनके साथ कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में। इनफैक्ट कल इंडिया टुडे ने भी बात की थी दो चार बाइकर्स विमेन बाइकर्स से जो ऐसा मोटरसाइकिलिंग इंसिडेंट्स करती है, और वो भी बता रही थी कि ये गुड़गांव और दिल्ली की रोड्स पे बहुत ही कॉमन इंसिडेंट है।
4: देखिए बिल्कुल, लेकिन जो कंप्लेन है सब कुछ डिपेंड करता है कंप्लेन पे। देखिए इस मामले में भी कंप्लेन बाद में हुई, पहले सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती हैं, पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करती है, उसके बाद फिर कंप्लेन हुई थी, और शायद यही वजह है कि एक्शन लेते लेते 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया था जब दौसा से पकड़ा गया। क्योंकि पुलिस का यही कहना था कि जब उनके पास फॉर्मल कंप्लेन आई तब जाके विक्टिम और उनके बारे में आइडेंटिटी क्लियर हुई, उसके पहले खुद ही पुलिस अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे में जरूरी है कि अगर इस तरीके का कभी कोई सर्कमस्टेंसेस कोई फेस करता है तो निश्चित रूप से उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि कार्रवाई हो।
1: बिल्कुल, इस तरह के केसेस जब आते हैं तो पुलिस में जरूर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कितनी जल्दी इस केस में इनफैक्ट कल्याण बैसला तक पुलिस पहुंच भी चुकी है। Now we have more breaking news coming in. An associate of Kalyan Baisla, Lavneesh, has also been taken into custody. According to DCP East, Sandeep Malik, role of aide is currently being investigated in the case. So now we're first getting visuals of Kalyan Baisla, who's been detained in Dausa, Rajasthan. And now along with him, an associate of Kalyan Baisla, Lavneesh, has also been taken into custody. And Sandeep Malik, DCP East, he's saying that the role of the aide is also being investigated into the case. And these are the latest, that's the latest information that we're getting on this case, because initially we got these visuals of Kalyan, who was detained in Dausa in Rajasthan, and now we're getting in that in fact Kalyan's Baisla associate Lavneesh has also been taken into custody. Earlier we had seen that Kalyan was making statements about how while he was driving he was with his brother and with his sister as well. They were all sitting in the car together when that incident took place. Now we're learning that an associate of Kalyan Baisla, we are yet to establish if he was one of the associates with him from the gym or if he was one of those who was also riding along with him when this incident took place, who this person is and now, but he has been taken into custody and the police is investigating the role of the aide, who what exactly his role was while this whole incident took place. We have to remember that this incident just took place yesterday and the police has been at this case all over the night, and in fact we also heard from Shivani's father, who said that speedy justice is coming to the fore because the police has registered an FIR, have detained Kalyan Baisla in Dausa. Kalyan Baisla fled from Gurugram, he was traced to Dausa, where in fact we saw the interaction where he was with the police officials there, and now we're learning that his aide Lavneesh has also been taken into custody. The police is investigating what exactly was the role of this aide, and they're looking into what could be the possible scenarios that could have played out. And because it is also an incident which has multiple versions of these visuals coming out on social media from the cameras that were captured by the biker groups as well, there's a lot of visual evidence that now the police will also take into consideration. They will piece together what exactly happened, because there are also conflicting versions of the stories that we're getting in from Kalyan and from Shivani. Till yesterday, Shivani did not reveal her identity. We knew that after she fell from the bike, she was taken to the hospital. She sustained some minor injuries. She then later on revealed her identity and also contested Kalyan's statements. With that, it's time for a short break. We have a lot more lined up for you. Stay tuned.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: presented by National Stock Exchange.
1: VECA, India's largest selling UPVC window.
2: Look, this investment guru tips will double your money. Just claim the offer.
3: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
4: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Web BRICS as a club has a huge GDP. They have a lot of deliverables. They're delivering a lot. But it is primarily bilateral in nature or national in nature as what a country does rather than what a country brings to BRICS.

0: Now we have breaking news coming in on the Gurugram craze. There's a big claim by the Gurugram police in the hit and run horror. The Gurugram police is now saying the accused tried to deliberately hit the biker. The police are saying that the driver's intention was to kill Sia. That's a huge newsbreak that we're getting in, because now the Gurugram police is confirming that the accused Kalyan Besla tried to deliberately hit the biker, and the police is in fact saying that the driver's intention was to kill Sia. Remember that he has been detained in Dausa, Rajasthan. So far he was saying that he did not know that it was a woman who was riding the bike. He did not know and he unintentionally hit her. But now what we're getting in from the Gurugram police is that the accused tried to deliberately hit the biker and the intention was to kill Sia. And so we've also seen that the charges being leveled against him are relating to attempt to murder. These are non-bailable offences and it can carry a prison term of up to 10 years. And now the Gurugram police is in fact confirming that the accused in this case was doing all of this deliberately to hit the biker, and the driver's intention was to kill Sia. Remember, all of this happened in Gurugram in Sector 56, where we had getting conflicting versions of the story from Kalyan Besla as well as Shivani Chauhan, who so far, Kalyan Besla was saying that he didn't intend to kill Sia and this collision was an accident. He felt sorry, in fact, after hitting the biker. But remember, he also fled from the scene, which was also a question which was raised by Sia, by Shivani, who later revealed her identity, saying that if his intention was really not to hit her, then why did he flee from the scene and why did he not take her to the hospital? So far, we have seen that now he's been traced to Dausa in the morning, where also the police have detained him. And this is the latest that we're getting in from the police. For more on that, we have Himanshu joining us. Himanshu, ab hume Gurugram police ne confirm kar diya, ab unka bayan aa raha hai ki accused actually ye deliberately unhone kiya hai biker ko hit karne ki koshish, aur unka wo chahte the ki wo Sia ko kill kare.
1: में FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिया गुड़गांव गई है, वहां पर सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि चोट जो लगी थी इनका पुलिस की मौजूदगी में सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पूरा मेडिकल रिक कराया जाएगा, और चोट किस तरीके की लगी थी, देखिए वीडियो एविडेंस होना अलग है, लेकिन पुलिस को केस आगे बढ़ाने के लिए जिन एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी उसकी अब तैयारी हो रही है, तो उसका एक तो मेडिकल कराया जाएगा. जो हाथ में हमने देखा बैंडेज लगा, तो उन्होंने बताया कि नीज पे बहुत चोट लगी है, दोनों हाथों में उनको चोट लगी और सेफ्टी किट ने उनको बचाया. तो किस तरीके की चोट लगी है, किस तरीके की इंजरी का नेचर है, ये सारी चीजें मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर होंगी, जो महत्वपूर्ण एविडेंस बनेगा बाद में. और इसके साथ ही पुलिस ने तो बयान दर्ज कर लिया, लेकिन अब मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज कराया जाएगा, आज ही ऐसी जानकारी आ रही है. जी,
0: so now we're getting to know that in fact Sia is going to get her statement also get released in front and say the statement in front of the magistrate. And this is a big breaking that we're getting in. The Gurugram police confirming that this was deliberately hit, that Kalyan Besla deliberately hit the biker. Himanshu, Gurugram police ne aur kya jankari di hai unke press conference mein? Unhone kya bataya? Ek to unhone bahut badi baat batayi ki ye jaan booch kar hit karne ki koshish ki gayi hai, aur wo actually chahte the ki wo Sia ko hit kare, jis tarah se unki jaan bhi ja sakti thi jisme. Aur abhi tak hum log, kyunki Kalyan Besla keh rahe the ki wo ye jaan booch ke nahi kiya tha, unhone in fact wo keh rahe the ki wo sorry bhi the ki, aur jab unko baad mein pata chala ki वो लड़की थी. बट बिफोर आई ब्रिंग इन हिमांशु, लेट्स लिसन इन टू द डीसीपी ऑफ गुरुग्राम एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस. लिसन इन.
2: अभी उसकी भूमिका की जांच चल रही है, लेकिन ये है कि वो उसके साथ था घटना के दौरान, और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो आपको इसके बारे में फिर से बताया जाएगा.
3: सर, अभी तक की पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया है कि किस तरीके से उसकी आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्या पूरा इंसिडेंट हुआ था?
2: अभी इतनी डिटेल पूछताछ नहीं हुई है अभी, तो क्योंकि वीडियो में वो दिख ही रहा है, उसका कृत्य जो है वो सबके सामने है, तो उसके आधार पे ही उसको पकड़ा गया है, और उसके अभी आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसको अदालत में पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा, और उसके दौरान उससे पूरी पूछताछ की जाएगी.
0: So that was the DCP, and he is in fact saying that the investigation is still underway. A detailed interrogation has not yet happened. So we do not know the exact details of what really happened in the case, but they are investigating this at a very fast pace. And now we're also getting to learn from the Gurugram police that there was an intention to kill Sia, and that this was a deliberate action by the driver, by the accused Kalyan Besla in this case. Let me bring back in Himanshu Mishra for this. Himanshu, हमें और statements आ रहे हैं गुरुग्राम पुलिस से. वो कह रहे हैं कि अभी interrogation, detailed interrogation होना बाकी है, जिसमें वो piece together कर सके कि exactly क्या हुआ. But एक important बात जो उन्होंने बताई है वो है कि ये जान बूझ के उन्होंने actually hit किया है, जो कल्याण बैसला के जो अब तक statements आ रहे थे उससे बिल्कुल अलग है.
1: जी बिल्कुल, ये तो देखिए, जब पुलिस ने BNS 109 जोड़ा था तो उस वक्त क्लियर हो गया था, क्योंकि पुलिस सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पर कि कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसके आधार पे FIR दर्ज नहीं करती, उसके आधार पे धाराएं नहीं जोड़ती. पुलिस ने FIR तो कर ही रखी थी, और अगर कोई कंप्लेन होती, कुछ होती, तो वो उसको चार्जशीट का हिस्सा बना सकती थी पुलिस. बाद में ये भी कह सकती थी कि एविडेंसेस में नहीं मिले थे, लेकिन जो जो फुटेज मोबाइल के हैं, और हो सकता है पुलिस के हाथ कुछ और भी एविडेंसेस हाथ लगे हों, जिसके बाद पुलिस ने 109 BNS जो कि पहले 307 IPC होती थी, अटेम्प्ट टू मर्डर, वो धारा जोड़ी है, और वो धारा नॉन अवेलेबल होती है, और उसी धारा को जोड़ने के बाद गुड़गांव पुलिस एक्शन में आई है, और लगातार ट्रैक करते करते आखिरकार दौसा से कल्याण बैसला को पकड़ लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. अब इस पूरे मामले में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एविडेंसेस क्या कुछ पुलिस कलेक्ट कर पाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसी पे निगाह होगी.
0: दूसरी बात आपने बताई कि अब शिवानी जो है मजिस्ट्रेट के सामने जा रही है अपना स्टेटमेंट देने के लिए. अभी ये कितना इम्पोर्टेंट, कितना सिग्निफिकेंट है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट देने जा रही है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है?
1: देखिए, ये पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में उतना मायने नहीं रखता, लेकिन जब भी आप मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज करते हो, तो वो आपका बयान कोर्ट में, जाहिर सी बात, अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज किया तो वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, और उसको कोर्ट में उसको पूरी वैल्यू भी रहती है, और उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ती है. जी
0: राइट, सो नाउ वी लर्निंग दैट शिवानी इज गोइंग टू पुट आउट अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट. इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट मीन्स दैट नाउ हर स्टेटमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड. व्हाट शी सेज इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट हैज टू स्टैंड, एंड दैट इज नाउ ऑल्सो एडमिसिबल इन द कोर्ट. So those are the latest updates that we're getting in from the Gurugram hit and run case. We're tracking that case closely for you. But with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, log into indiatoday.in or check out the India Today app.
4: You are watching India Today.
5: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
7: सोच बदलो और बैंक भी.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: लोगों से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
3: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
0: अब मैं क्या ही बोलूं?
4: परिवार अटूट भरोसा।

0: देखिए कुछ सांकेतिक चीजें भी होती हैं। आपने देखा ना, जैसे यूएई और ईरान की बातचीत ब्रिक्स में हुई कि नहीं हुई, वहां युद्ध भी हो रहा है, आपस की तो दूरियां भी हैं, कष्ट भी है एक दूसरे से, लेकिन बातचीत तो करी है और बातचीत में कुछ सकारात्मक जो संदेश मिले हैं, जो संकेत मिले हैं, उनका भी सबने स्वागत किया है। तो ऐसा होता है जब कहीं पर अनबन हो जाती है और हम लोगों को एक दूसरे से कुछ कारणवश हमको दूर।
1: यू आर एंटरिंग द इंडिया टुडे स्टूडियो प्रेजेंटेड बाय LIC।
2: ग्लोबल आइकॉन रीइमेजिन फॉर इंडिया।
3: म्यूचुअल फंड्स सही है।

0: welcome. I'm Sonal Mehrotra Kapoor. This is Five Live. Lots of stories have been doing their rounds today, but one particular one caught our attention. These are the poll results of civic body polls in Rajasthan. Now, you would think these are hyper-local elections. What can it tell us? And why should we even bother? Well, you should. Because every little election in every corner of the country right now is throwing up new trends. Are we living in a Gen Z world where they define everything, including the polls? What happens when Gen Z is not just protesting, but also winning elections? How many of them won the civic polls? What does it mean? Which party did they align to? What about the independents? And did you know there is one particular one? A sitting ward sort of representative who joined politics after the Gen Z protests. Isn't that so fascinating? And why is it that all political parties seem to have like this Gen Z quota now almost? SC quota, ST quota, OBC quota, women's quota, and now a Gen Z quota as well. So on the program today, we'll decode this entire civic polls in Rajasthan. Also, you will meet some of the youngest politicians in the country. They are just 21. They have just been elected and are perhaps giving their first interview. So you'll see a raw glimpse into that. Well, that's enough of a teaser. Let's take you all to the headlines. Now, Gurugram police has arrested driver Kalyan Isla from Dausa, Rajasthan after more than 50 hours after a woman rider was knocked off her bike in the city during a road rage incident. Now, he was wanted in the case for attempt to murder. His alleged aide, Lovneesh, has also been taken into custody. The arrest comes after India Today's coverage of the case, following which police teams were deployed to track down the accused. Our cameras managed to reach him even before the police could. Delhi government is preparing a 10,000-bed hostel for students. Rekha Gupta's government says that hostel will be fully equipped and designed to provide students with safe and comfortable accommodation. And they're working on preparing the facilities and that those preparations have already begun. The government says the initiative is aimed at giving students a supportive living environment so that they can focus on their studies. BJP has emerged as the largest party in Rajasthan civic body polls, winning 41% of the wards, while Congress has secured a close 35%. The BJP share is up 5 percentage points from the previous civic polls, but while Congress has sort of declined by its similar margin, BJP, in fact, went out of their way. Prime Minister Modi thanked the voters, while Chief Minister Bhajan Lal Sharma credited government's performance. Congress has rejected the BJP's claim of victory and said that 2028 assembly polls would be a different battle. BJP's push for uniform civil code is triggering differences within the NDA, particularly amongst the Bihar allies. Home Minister has said that UCC will be implemented across 21 NDA rule states by 2029, but JDU has called for wider consultations. While LJP and RV there, which is the chief, Chirag Paswan, has also sought stakeholder discussion on the issue of UCC. The government has clarified that UPI payments up to 2,000 rupees will remain free with no direct or indirect charge on small transactions. The issue has triggered a political exchange with Rahul Gandhi alleging that government could allow MDR on merchant UPI transactions above 2,000. BJP has rejected the claim, saying that consumers pay zero transaction charges and that 96% of the merchant UPI transactions are 2,000 or below. Major counterfeit medicine racket has been busted in Karnataka with fake drugs allegedly supplied to more than 90 hospitals and clinics in Bengaluru. Investigators have seized fake cancer drugs, ICU injections, expired medicines allegedly repackaged and sold as new. Drugs worth around 5 crore have been seized. A pharmacy owner has been arrested while alleged kingpin remains in Azerbaijan. Tamil Nadu political battle is turning incredibly personal. DMK MP A. Raja and former minister Sekar Babu face police cases over alleged derogatory remarks, while other leaders have also taken personal swipes at the TVK chief. BJP state chief there has joined the war of words, while Muslim League minister Shahja has condemned the remarks. A delegation from Karnataka's Christian community has met the Congress president, Mr. Kharge, raising demands, including a 1% quota a greater representation in government posts and repeal of the state's Anti-Conversion Act. The Congress has backed the demand to repeal the law but has not supported the quota demand. BJP has accused the Congress of appeasement politics. Meta, meanwhile, has agreed to report child sexual abuse cases on its platforms to law enforcement agencies in India. The move comes amid Center's push for stronger child safety measures on social media platforms. Government sources say Meta will report all child safety matters while talks are underway with other platforms to identify and remove harmful content. Center has also warned that platforms failing to take proactive steps could face action. Apple is facing, meanwhile, a regulatory probe in India over its software warranty terms. The Central Consumer Protection Authority has escalated its investigation following complaints of green, pink and white lines appearing on Apple screens after the iOS 18 update. The regulator has questioned Apple over repair costs, including 27,900 screen replacement for iPhone 15. Apple has rejected the allegation, saying that its software warranty inclusion is a global industry practice. Now, Rajasthan's local polls are done, but this isn't about who won how many wards. Underneath the headline numbers is a three-way contest. BJP is ahead, we already told you. Congress is a close behind, that's also known. But independents, they are emerging as a real third force, one that could end up holding the key to several civic boards as well. Now, start with the top line here. BJP won 41% of the seats, up about 5 points from last time. That's about 4,179 wards. Clearly, the largest share of the map. But, and this is where it gets interesting, it's not a clean sweep. The party took hit in Jhalawar, in Baran, in Ajmer. And that matters because even as BJP banks this momentum going into 2028, those losses are a reminder that local strongholds aren't as fixed as they look. Congress, if you see, 35%, 3,613 wards, down 5 points from the last round. So yes, behind, but not out of the picture. They held on to important ground, including Ajmer and Jhalawar. And then there is the wild card. There are independents and smaller parties. 24%, up from 21 last time. Total wards, 2,273, so the difference is not much. Aam Aadmi Party has taken up, Baran. CPIM formed a board in Nokha. Independence proving local politics isn't fully owned by the two big parties. And now, the second story sitting inside these numbers. Not BJP versus Congress, but the story of age. Some of the winners here are 21 years old. Just 21, that's a threshold at which you can contest elections in the country. A group we usually only talk about as voters is now turning up on the other side of the ballot. Meet Neha Sharma, just 21, won the municipal seat. Congress's Faiz Hassan, also 21, took what, 71 of the Jaipur Municipal Corporation. One in BJP, one in Congress, different parties, different backgrounds. Age, that's the same. Sania Khanam, 22, independent, won Ward 6 of the Jahazpur Nagar Palika in Bilawar. So, is this, as some headlines are suggesting, a Gen Z wave? Well, you have to be a little careful when you say that, because three wins, or perhaps a few more, if you take all of those ages in account, they don't really make a movement, do they? Most elected representatives are still well older than this. And these are local contests, decided by community equations, family networks, party machinery, local issues, not generational politics, really. So maybe fair not to overstate the age, but perhaps also not wise to dismiss it either, right? Because the real question isn't whether this is a wave. It's whether Gen Z is figuring out something the rest of us haven't really clocked in. That's the fastest way into the system isn't just on the street, it's the ballot. So how exactly are these new age Gen Z leaders, politicians thinking? Let's find out. Joining me now are two of Rajasthan's youngest winners. one of who is from the BJP, the other one decided to go independent. Let me start with the BJP. All right, joining me next is Neha Sharma. She's just 21 and she has won from the Alwar seat. So Neha, huge congratulations. And I'm seeing here that you've won by a very small margin. 101 vote se aap jeeti hain. So you've won by a whisker, as they say. I want to start by asking you this. Ki aap journalist thi pehle, 4 saal tak. Kya soch ke aapne journalism chhod ke ab politics join kara hai?
1: Thank you so much. And maine first time jab main actually mera jo gaon hai, मैं उसमें काफी साल बाद में 10th के आफ्टर 10th क्लास मैं बाहर रही गांव से सिटी में रही. मैंने स्टडी बाहर से हुई तो मैंने जो बाहर फिर मैं एक जर्नलिस्ट थी, एक अच्छे चैनल में मैंने काम किया, एक अच्छे स्तर पर मैंने काम किया. एक्चुअली राजस्थान के हर लेवल पे पॉलिटिकली और डिपार्टमेंट वाइज मैंने बहुत अच्छे से काम किया. लेकिन जब मैं गांव में आई तो मुझे लगा कि मुझे मेरे गांव से, क्योंकि हम किसी दूसरे से उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में ये बदलाव होने चाहिए, हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए. लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत खुद से ही की जाए, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम में, मेरे गांव के कार्यक्रम में मैं सब लोगों से परिचित हुई और लोगों ने मुझे बेहद प्यार दिया, आशीर्वाद दिया. तो मुझे लगता, मुझे खुद को लगा कि जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए और मेरे गांव वालों की जिम्मेदारी, क्योंकि मैं जब देखती थी अच्छे सचिवालय तक लेवल पर मैं देखती थी कि जो गांव के लोग हैं वो जयपुर के चक्कर काटते हैं, जो किसान हैं वो जयपुर में फाइल पे फाइल ले जाते हैं, लोग अधिकारी लोग उनको सिर्फ ऑर्डर देते हैं, नेता लोग घंटों वेट करवाते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि गांव के सीधे साधे लोग, भूले भाले लोग, इनका मुझे उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया.
0: जी नेहा, हेडलाइंस आपने देखी होंगी, बहुत बन गई है कि जेन जी यू नो इलेक्ट होकर आए हैं इस बार राजस्थान की सिविक बॉडी में. लेकिन अगर आप नंबर्स देखें तो बहुत हैंडफुल ऑफ यंग लोग हैं जो आए हैं. करीब 10,000 से ज्यादा यू नो कैंडिडेट लिस्ट थी, उसमें हैंडफुल कुछ जेन जी हैं. तो आपके हिसाब से ये जो जेन जी इलेक्ट हुए हैं इस बार, आप भी 21 साल की ही हैं, 21 साल तो थ्रेशोल्ड होता है इलेक्शन लड़ने का हमारे देश में, और आप उसी उम्र में इसमें जंप कर गई हैं. कुछ और कांग्रेस के भी इंडिपेंडेंट भी लोग हैं जो 21-22 साल के जो इलेक्ट होकर आए हैं. क्या ये कुछ रिप्रेजेंट करता है और डू यू थिंक ये सिर्फ एक हेडलाइन है जो मीडिया ने बना दी है?
1: नो, ये मीडिया में हेडलाइन बनाना इतना ही मात्र नहीं है, बल्कि ये एक बदलाव है समाज में. क्योंकि जब जेंजी का जो प्रोटेस्ट हुआ वो भी मैंने बेहद करीबी से देखा, क्योंकि उसके बाद ही मैंने फैसला लिया. रिसेंटली ही मैंने है जो मीडिया का छोड़ा, तो लेकिन मुझे ये अनुभव है कि उस टाइम जेंजी जो घर में जो जेंजी है उसको कैसे टैकल किया जाता है. फैमिली भी वो काफी समझदार है और मैंने समाज में भी देखा, मैंने खुद ने ये अनुभव किया. जब मैं गांव में जाती थी तो पहले के लोगों के जो एज लोग हैं उनके जो विचार हैं वो थोड़े अलग थे, लेकिन जैसे ही मैं उनके घर में एंट्री करती थी, मेरे गांव के अलग अलग घरों में, तो उनके जेंजी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती थी और वो ये कहते थे कि जो आप कहोगे क्या आप उस पर खरे उतरोगे, क्योंकि हमने पहले के नेताओं को नहीं देखा कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया. तो ये एक अलग विश्वास उनके मन में था कि जो एक ईमानदारी और एक फ्रेंडली वाइब भी थी कि ये हमें समझते हैं जो हम, क्योंकि मैं ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन होती थी. मेरे वार्ड नंबर 6 की जो थानागाजी नगर पालिका का है उसकी ऑनलाइन मीटिंग होती थी, सारा यूथ उसमें जुड़ता था इवनिंग में. लेकिन जो पहले के लोग हैं, जो एज्ड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो उसपे नहीं जुड़ पाते थे, कोई मिस कम्युनिकेशन भी होता था. लेकिन यूथ है वो आगे आता था, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करता था. और पहले के लोग हैं, कुछ प्रत्याशी जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, जो एज लोग थे वो तक इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाते थे और इस मीटिंग में.
0: जी जी नेहा, मुझे ये बताइए, आपने कहा जेन जी प्रोटेस्ट हुए उसके बाद आपने अपना मन बनाया कि अब आपको पॉलिटिक्स में कूदना है, लेकिन ये जितने जेन जी प्रोटेस्ट हुए ये ज्यादातर बीजेपी सरकार के खिलाफ हुए और आपने बीजेपी टिकट पर ये लड़ने का सोचा, कैसे?
1: बिल्कुल, देखिए खिलाफ होना एक अलग बात है, और उसमें खिलाफत कुछ गुटों ने की थी, कुछ ग्रुप्स ने उसमें खिलाफत करी थी। उनका मोटिव यही था कि जो जेंजी प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग उसमें स्टूडेंट भी शामिल थे, उनका मोटिव यही था कि शिक्षा नीति को सुधारा जाए। उनका ये मोटिव नहीं था कि हम बीजेपी के खिलाफ है, ना ही उनके फैमिली का ये मोटिव था। वो कुछ ग्रुप्स था, उन्होंने ये मोटिव बनाया था, बीजेपी के
2: हमने
1: खिलाफत
2: तो
1: उन्होंने करी थी।
2: एबीवीपी के प्रोटेस्ट भी देखे दिल्ली में, वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, द यूथ
1: तो
2: विंग ऑफ
1: बिल्कुल
2: बीजेपी।
1: उनका उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ शिक्षा नीति से थी। और उसमें मैं खुद भी एग्री करती हूँ कि शिक्षा नीति सुधरना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो हमारा युवा है, देश का युवा है, वो पढ़ाई के बलबूते पर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें शिक्षा नीति में सुधार होना बेहद जरूरी था
2: तो आप
1: और
2: भी
1: होना भी
2: चाहती थी
1: चाहिए।
2: धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन?
1: मैं ये नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ये जरूर चाहती थी कि अगर वहां पर जो लोग इकट्ठे हैं उनके साथ न्याय हो, लेकिन उन ग्रुप्स के साथ उनके उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ लोग वहां पर माइंड वॉश करने का भी काम कर रहे थे। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को जर्नलिज्म में भी देखा है, मैंने रिपोर्टिंग कवरेज के दौरान भी देखा है कि कुछ लोग हैं वो आग को बढ़ावा देते हैं और माइंड वॉश करने का काम करते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा काम किया, लेकिन ये पूरे देश में यही मांग थी कि शिक्षा नीति में सुधार हो।
2: जी, आप गई थी इन प्रोटेस्ट में?
1: मैं प्रोटेस्ट में गई थी और मैंने वहां पे समझा भी, और मैंने ये भी देखा कि वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारा ऐसा ग्रुप था, वो माइंड वॉश करने का काम कर रहे थे वहां।
2: अच्छा, पुलिस ने जो लाठी चार्ज करा उस पर आपका क्या ख्याल है?
1: देखिए, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, इनमें से कुछ लोग थे जो जिन पर ये चीजें गलत भी थी, लेकिन हाँ, कुछ लोग जो वहां पर ग्रुप्स हैं उनको रोका कैसे जाए। अब ये पुलिस के पास ये पावर थी कि कैसे रोका जाए उनको, क्योंकि वो अति कर रहे थे। आपने खुद सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे होंगे, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे, तो उन लोगों को कैसे रोका जाए। उनकी बात ठीक है, ऐसे लोग जो शिक्षा नीति को सुधारना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को कैसे समझाया जाए जो अभद्र भाषा में और ऐसी कुछ हरकतें कर रहे थे जो शोभनीय नहीं थी, तो उनके लिए वो
2: चलिए।
1: जरूरी।
2: नेहा, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि ये जो जेंजी लोग जीते हैं, जेंजी लोग में ऐसे बोल रही हूँ जैसे अलग स्पीशी, आई एम जस्ट सेइंग दिस, यंग पीपल जो जीते हैं, उन पे क्या आपको लगता है इस बार एक ज्यादा एक्सपेक्टेशन है? जनरली कहा जाता है कि जब आप सिविक बॉडीज में या किसी भी बड़े हाउस में आप इलेक्ट होकर जाती हैं, तो जो यंगर लोग होते हैं वो ज्यादातर बड़े जो सीनियर्स बोलते हैं उनकी बात जो होती है वो वीटो हो जाती है और आपको ज्यादातर मानना होता है। क्या आपको लगता है एक जेंजी कैंडिडेट होने के नाते इस बार आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन करें, कि आप पूछें और सिर्फ बड़ों की बात ना मान लें?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने ये खुद ने भी फील किया। जर्नलिस्ट रहते हुए कुछ दायरे होते हैं, हम खुद के माइंड से या सोर्सेस से खबर निकालते हैं और हम अपनी खबर देते हैं, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आई और फिर जेंजी, जैसा आपने कहा कि मैं वहां गई और लोग ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, लोगों को ये उम्मीद थी कि नेहा अच्छा काम करा सकती है। अगर आपको डेवलपमेंट कराना है, विकास कराना है गांव का, तो नेहा को वोट दो, खुले में कह रहे थे ये लोग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग यंग सब कह रहे थे, महिलाएं पुरुष सब ये कह रहे थे कि अगर विकास करवाना है और ईमानदारी से काम करवाना है तो नेहा को वोट दो। तो ये खुद कह रहे थे, ये मैंने खुद ने फील किया कि उनको ये लग
2: आपको
1: रहा
2: ये
1: था
2: नहीं
1: कि
2: लग रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, ये जितनी पार्टीज हैं, इनका एक अब एक जेंजी कोटा हो गया है? उन सबको समझ में आ रहा है कि अभी ट्रेंड चल रहा है यंग लोगों का, तो जैसे सबका SC ST विमेन कोटा होता है, एक यंग लोगों का जेंजी कोटा हो गया है, उसमें भी टिकट बांटे जा रहे हैं।
1: और ये जरूरी भी था, पॉलिटिकल पार्टी भी समझ चुकी है कि अब वो जो एक सीनियरिटी के हिसाब से या एज के हिसाब से है वो टिकट दिए जाते थे, उन्हीं को पॉलिटिकली जो एक्टिव किया जाता था, वो कहीं ना कहीं गलत भी था। ये रेशो, एक जो इक्वेलिटी है वो होनी ही चाहिए, समांतरता होनी
2: होनी
1: चाहिए।
2: चाहिए, पर आप अलग
1: क्या
2: क्या करेंगी? नेहा, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप अलग क्या करेंगी? एक बीजेपी का सीनियर नेता आपसे आके बोलेगा नहीं जी काम ऐसे ही होता है, आप क्या अलग करेंगी?
1: ये सवाल मेरे से पहले भी मेरे लोकल मीडिया ने पूछा कि अगर एक तरफ लीडर्स का है दबाव होगा और दूसरी तरफ, तो मैंने उनसे कहा कि पत्रकारिता मेरे जहन में है और जहां गलत होगा मैं बोलूंगी, क्योंकि जनता ने मुझे नेता बनाया है और पार्टी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि पार्टी ने भरोसा मेरे पर जताया है, लेकिन मैं जनता के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी और जनता के मुद्दे मैं हमेशा उठाऊंगी।
2: पर पार्टी को क्वेश्चन करेंगी?
1: करना चाहिए, जहां गलत है वहां क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, निर्णय लेना उनके हाथ में है, लेकिन जहां गलत दिखे वहां पर सवाल खड़े होना जरूरी है, तभी देश में बदलाव होगा।
2: ऑल राइट, नेहा शर्मा देयर, ऑल ऑफ 21 नाउ विल बी रिप्रेजेंटिंग द अलवर यू नो कंस्टिट्यूएंसी देयर, the Alwar you know ward over there as well. Neha, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी जाते जाते कि आप लोगों के ऊपर ज्यादा responsibility है, ज्यादा expectations है, so let's see a new crop of Gen Z politicians जो अब enter कर रही है वो कैसे system को बदलती है. So good luck to you.
1: Thank you so much. Thank you.
2: All right, joining me next is Sania Khanam. She is an independent candidate who has won in the Rajasthan civic polls. She's from the Bilwara seat over there. She, in fact, defeated the BJP candidate in the area. Sania, aapko bahut bahut mubarakbad. Aapki history se samajh mein aata hai ki aap independent zarur khadi hui hai, par aapki family mein legacy rahi hai politicians ki. Aapke grandfather Nazir Mohammed is a very well-known politician in the area. To mera sabse pehla simple sawal yahi hai aapse ki kya aap apne family ki legacy ki wajah se jeeti hain, ki aap Gen Z ki wajah se jeeti hain? What do you think is the factor that made you win this election?
3: Of course, both family की वजह से and Gen Z की वजह से थी. मुझे मुझे मेरे जनरेशन वालों ने सपोर्ट किया and बड़ों ने दादा की वजह से सपोर्ट किया.
2: ओके, सानिया बहुत इस बार बातचीत हो रही है Gen Z वोट के बारे में, लेकिन अगर आप टोटल अगर कैलकुलेशन देखें तो कुछ 4-5 कैंडिडेट्स का ही इन्फॉर्मेशन अभी आ पाया है जो Gen Z हैं इन अ कैंडिडेट लिस्ट जो 10,000 से ऊपर की जाती है, राइट? तो क्या आपको लग रहा है ये एक ट्रेंड है जो सिर्फ मीडिया ने कैप्चर करा है, और डू यू थिंक कि ये रिप्रेजेंट करता है यंग लोगों का जीतना, कुछ रिप्रेजेंट करता है इस इलेक्शन में?
3: हाँ बिल्कुल, यंग लोगों का जीतना रिप्रेजेंट करता है. We are also part of India. So, जब तक हम ही आगे नहीं आ रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स हम बेटर जानते हैं, तो उसके लिए हम खुद से आगे आना चाह रहे हैं और अपनी हर एक चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं,
2: इश्यूज पे करना चाह रहे हैं. क्या Gen Z के मुद्दे बाकी लोगों के मुद्दों से अलग है कि उनका तरीका अलग है?
3: तरीका अलग है.
2: जैसे क्या, समझाइए मुझे.
3: हर चीज मतलब तरीका अलग है, मतलब I'm sorry, I was so nervous.
2: Don't be nervous, tell me.
3: हर चीज के अंदर मतलब हमारा सोच, हमारा जो थिंकिंग होता है वो अलग होता है एंड पेरेंट्स का अलग होता है, तो इसी वजह से कभी कभी बीच बीच में हो जाता है हर चीज का. Like, हम करना कुछ और चाहते हैं एंड पेरेंट्स किसी और चीज के लिए करते हैं कि यार उसने ऐसा किया तो तू भी वैसा कर, एंड के लाइक वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों करूं, मेरा मर्जी होगा वो करे ऐसा.
2: ऑलराइट सानिया, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के इलेक्शन क्यों लड़ा, एक पार्टी को ज्वाइन करके क्यों नहीं लड़ा?
3: बिकॉज ये मेरी अभी से शुरुआत है, तो फिर मैंने सोचा कि इंडिपेंडेंट ही लड़ते हैं दोनों पार्टी में. दोनों पार्टी से दादा से भी मैंने तीसरी बार में सजेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट बेटर होगा, कि खुद समझे कौन सी पार्टी सपोर्टिव है एंड कौन सी नहीं.
2: राइट, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अभी जैसे एक डिसग्रंटलमेंट हो गया है थोड़ा सा यंग लोगों में पार्टी पॉलिटिक्स से, क्या आपको लगता है वो भी एक फैक्टर है कि इस बार राजस्थान सिविक पोल्स में इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट्स जीते हैं?
3: ऑफकोर्स है ये, क्योंकि सभी चेंजेस चाहते हैं, तो उनका पॉलिटिक्स से पॉलिटिक पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए, उनको उनके खुद से जो चीज वो करना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट बन के करे, कि किसी की दबाव में आके नहीं करे.
2: ओके, इंडिपेंडेंट बन के करे, दबाव में आकर ना करे. एक और मुझे बात बताइए, जैसे हर पार्टी में कोटा होता है, SC कोटा, ST कोटा, OBC विमेन कोटा होने लगा है, क्या आपको लग रहा है अभी ये जो माहौल चल रहा है एक तरह से एक Gen Z कोटा बन गया है, पार्टीज ने सिर्फ एक यू नो स्टैंप के नाम पर Gen Z's ko ticket baatne shuru kar diye. It's become like one of those things that political parties have to do.
3: Actually, उन्हें भी लग रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से, कि अभी बच्चे आवाज उठा रहे हैं अपने हर एक चीज के लिए, तो उन्हें भी पता है कि हमारी, हम जो चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स, हम जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स पेरेंट्स यूज भी करते होंगे तो भी वो सपोर्ट करेंगे. तो
2: जी, आखिरी सवाल सान है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके, आप अब जीत गई हैं, अपनी वार्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके फोकस में, और क्या इन मुद्दों में कुछ बदलाव आया है, कि इनकी इंटेंसिटी में, यू नो, सवाल उठाने की इंटेंसिटी में कुछ बदलाव आया है?
3: आप मेरी प्रायोरिटीज के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं अभी जी बन गई हूँ नेता, तो फिर मैं अपने बात के लिए क्या करूंगी? तो फर्स्टली मुझे सभी को इक्वली ट्रीट करना है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी उसको इक्वली ट्रीट करेंगे. एंड लाइक मेरे, जहाँ मैं रहती हूँ जाजपुर में, वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, तो मैं फर्स्टली जो नगर निगम की जो बोर्ड मीटिंग होती है वहाँ पे ये मुद्दा उठाऊँ, प्राइवेट लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी का.
2: Okay. All right, Sania, thank you so much for joining us. Good luck. And I hope आप जैसे young लोग जो आ रहे हैं वो अपनी बात उठा पाएं, और आप बड़े बड़े नेताओं से जब आप जाएंगी उस मीटिंग में, और बहुत सीनियर लीडर्स भी होंगे, उनसे बॉक डाउन ना हो. गुड लक टू यू.
3: थैंक यू सो मच. एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम, सो मैं थोड़ी नर्वस थी. अब नेक्स्ट टाइम मैं आप आओगे ना, तो मैं फुली कॉन्फिडेंट
2: होंगी. I can't wait for that. Thanks so much, Sania. All right, so you heard those two voices over there, two very different voices, but both sort of speaking about a kind of trend that's emerging. It's not a trend that is really being seen or can be a mover or shaker at the moment, but at least one that is worth watching out for. But having heard them out, let's try and go back to somebody who actually understands and was perhaps responsible for the making of this trend as well. Ashutosh Ranka, co-convener of the Cockroach Janata Party, is now joining us to, you know, talk to us a little bit more about this. Ashutosh, you heard both those new politicians over there, both trying to understand and how to navigate the system, both very raw. There's something nice about talking to young people like that, right? But let me come to you with a straight question. Itne protest hue, Gen Alpha ka protest Rajasthan mein, Gen Z ka protest, ye school band, wo school band, ek highway band kar diya, school ke bahar teacher ko nikal diya. Ye sab dekhne ke bawajood, बीजेपी फिर भी जीत गई. सो वॉट इज हैपनिंग, इज दिस प्रोटेस्ट नॉट टर्निंग इन टू द बैलेट?
4: नो, सी, कपल ऑफ थिंग्स हियर सोनल. नंबर वन, इफ यू जस्ट लुक एट द ओवरऑल डेटा, देयर वर टू थिंग्स दैट रियली स्टैंड आउट. नंबर वन, 25% ऑफ द सीट्स आउट ऑफ द 10,000 ऑड वार्ड्स हैव बीन वन बाय इंडिपेंडेंट. And I was just looking at the data from 2014-15. There has been a marked increase in the number of seats and vote share of independent in last 10 years. There is a clear trend that, you know, there is a disillusionment with both the political parties, the two major political parties in Rajasthan, number one. Number two, a big role still continues to be played by delimitation. And let me give you one specific example of Jaipur. So Jaipur, we had a delimitation that was done, 250 wards, two different municipal corporations merged into one, 150 wards. And even though Congress has garnered 13,000 more votes than BJP, delimitation has resulted in BJP winning 78 seats and Congress winning 53 seats. So there is a clear impact of delimitation also on some of these seats.
2: But Ashutosh, I'm not very sure about your... I'll come back to you, but because I don't think there's a... If you look at the last trend that came out of the civic body polls, there has been a trend in Rajasthan of independents winning, especially in the civic body elections. Also, the trend has been that whichever party is in power at the state level, the same party ends up winning the civic polls as well. This is the pattern. When it was the, you know, the Congress government, you had the Congress winning, you know, corporations and civic bodies. Now the trend has shifted. So effectively, have Gen Z protests, have new kind of thinking that we're talking about, new conversations emerging. Has it really had an impact, especially at a grassroots level?
4: No, absolutely, Sonal. See, number one, as I said, there is data to show clearly that the number of independents who have won and percentage of vote share of this of independents has increased. There's proper data to suggest that 2014-15 May, independent garnered about 23%, 22.6% vote, and that number has increased to almost 24%. 1.5%, you and I both understand, makes a marked difference in number of seats that are won. Number one. Number two, one of the biggest things that I also observed in this election is both the parties actually failed to field effective number of youngsters. I'm still looking for exact data on this, but I didn't see a lot of Gen Z counselors. I didn't see a lot of people who belong to the millennial age really contesting these elections, right? So in spite of what this country has seen in last few months, the candidates that are being fielded are still not reflective of the population. 65% of this population is under 35. 18 to 35, the voting age group represents 40% of the total voting population in Rajasthan. But that's not reflected in election results. And that's the reason I feel why there is still such a big shift towards independence. And two specific districts stood out for me. One was Education Minister's own district. And then the second was Chief Minister's district. In both of these districts, BJP has literally been wiped out. These are the two, ministries or ministers, if I may, who have been largely, at the receiving end of all the protests that are going on in the state. So yes, of course, it's a long, long path, and the fight was never to, defeat BJP in elections. But there are already clear trends that suggest that, there is a shift in the way people are voting in the state.
2: Okay, you spoke about protests, so let me jog your memory a little bit, Ashutosh, and take you back to 14th of August. You remember where you were on 14th of August? You were in Rajasthan. You were in Rajasthan, you were in the Jadavas school, and the school gates had been locked. The kids had said, we want justice, we want better infrastructure. So much protest had happened. It was, if I'm not wrong, the start of the entire Gen Alpha movement that we've covered so extensively here, where kids were trying to take back the conversation, the entire school chalo yatra as well, school theek karo, entire campaign that CJP ran as well. Despite that protest, you have lost that ward. What does that say?
4: I'm not even sure if that ward has already gone for elections, number one.
2: No, it has.
4: Because that
2: it
4: comes
2: has.
4: In a village panchayat and the panchayat elections are yet to be held. Anyway, see, again, Sonal, whenever people go out and vote, right, there are a whole lot of factors that come into picture, right? School is one of them. And we all know that there is not one single factor that results in people going out and vote. I don't know who the candidates from BJP were. I don't know who the candidate from Congress and other parties were. What I do know is that there is a macro trend that has clearly emerged from this picture, right? And that macro trend suggests that people seem to be disillusioned by both the mainstream political parties, at least in Rajasthan. And number two, the two ministries or the ministers that were at the receiving end have clearly been defeated in their districts. So those are the two big macro trends that I'm taking away from this. And the third, as far as Alwar district is concerned, the school which I visited, I was just looking at the data. 42 seats have either been won by Congress or independents. 28 have been won by BJP. Right. So even in that district, BJP has been defeated. So I think the macros clearly suggest a very deterministic picture that people are increasingly disillusioned with the mainstream politics, and then they are bracing up for change. And all the political parties, not just the ones in Rajasthan, these two, but all the political parties across the country really need to take stock of kind of people or candidates they are giving out tickets to.
2: Okay.
4: Because very soon, if people will start finding, better options, like the two cases which, just came, right, both from BJP and Congress, people will go out and vote for them. Because that's what,
2: Can I ask you a very obvious next question then, Ashutosh? You say people are disgruntled. I see that. I hear you. I'm hearing that from a lot of Gen Z as well. And you say they're out of options. CJP is not an option yet. You're saying people are not, young Gen Z people are not contesting elections. You've not given them a platform. You gave them a voice. You gave them a protest site. You've not given them a political party. Is that happening?
4: No, I mean, Sonal, this is a question we should be asking to a 120-year-old party and a 40-year-old party. We are still a three-month-old movement, and we have been very clear that our focus right now is to continue working as a pressure group. We want to create a platform where, you know, youth truly feels represented. And since last 3 months, even after Janta Mantra also, we have just continued focusing on issues that really impact the youth. And that continues to be our priority. But yes, we are keeping a very close watch on the way politics is shaping up in the country. We are very clear that we are out there to, you know, change the way politics is being run in the country. I, for example, come from Rajasthan, so I've been very keenly watching some of the political developments in the last 3 months. And some of the trends are, of course, welcome, but there is still a very long way to go. As I said, I didn't see a lot of Gen Z candidates or millennial candidates in these elections. I was expecting, right?
2: But you did keep an eye. You did keep an eye on elections that are emerging in two other states even before Rajasthan. I'm talking about UP and Punjab. You had a meeting with the Samajwadi Party chief over there. There is in UP now a full Gen Z outreach program that is being done across parties, from BJP to Congress to Samajwadi Party as well. What exactly will be Kokro Janta Party's role when it comes to the upcoming elections in both in UP and Punjab? I have a different question. I'll come to that.
4: So, Sonal, we, again, I mean, you selectively talk about UP and Punjab. I was there in Karnataka, for example, right? No one talked about it because probably it didn't fit a select agenda. There were my core team members were in Jharkhand for 10 days straight. No one talked about it, right? Deepke went to MP, Balaghat, he was there. No one talked about it. He's in Maharashtra. So, I mean, the point is for us, we are very clear that we want to cover the country. We are very clear that we want to talk about schools across the country, irrespective of the political parties in power. We are very clear that we are also open to dialogue wherever the government wants to. In Maharashtra, the education minister invited us, we went, met him. In Karnataka, the education minister invited us, we went, met him. In Punjab, the education minister invited us, we went and met him. Right? And these three states which I just named belong to three different political parties. Right. So we have one very clear single agenda right now, which is the focus on fixing the government schools, and we'll cover the country. Right. I understand that there are elections around the corner. So everything we do in those particular states will be seen with a different angle than the rest of the state. But if you look at our overall approach, we have been agnostic of which state is going in elections.
2: All right. I only asked it not because of any agenda, Ashutosh. It was just because these two states are... These two states are going into polls. So it's an obvious question to ask. So when you meet these leaders, you will be asked those questions, which is why the question popped up. So interesting to hear your views. Still a pressure group, not a political party, CJP. Ashutosh Ranka there clarifying. Let's see what comes out, and let's see if the upcoming election, the feedback changes that for them. We'll, of course, be watching this space very, very closely. Thanks so much for joining us.
4: Thanks.
2: All right, with that, we're going to slip into a very quick break. News continues on the other side. Stay tuned.

राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35 ए हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है। तीन तलाक की समाप्ति करकर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिया, ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारी सरकार की नीति है मातृभाषा को प्राधान्य देना चाहिए और राज्यों को भी कुछ मैंडेट संविधान ने दिए हैं। मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है, ये कुछ लोग अगर इसको उकसाते हैं तो कभी कभार कुछ घटनाएं हो जाती हैं, मगर राज्यों के पास अनुभवी नेतृत्व है, जरूर इससे रास्ते निकालेंगे।

0: मेरा नाम राजन हांडा है और मैं MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज द एक्सक्लूसिव पार्टनर टू मैन एंड हमल जर्मनी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड सर्विसिंग ऑफ देयर एयर फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया। मैन एंड हमल एक 85 साल पुरानी जर्मन MNC है जो 80 विदेशों से भी ज़्यादा में इस समय काम कर रही है। एयर पोल्यूशन इज नाउ एक्चुअली द प्राइस दैट वी पे फॉर डेवलपमेंट। जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रोड बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, मेट्रो है, कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, रेजिडेंसेस बन रही हैं, ये सब पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। द फैक्ट इज दैट वी आर डूइंग दिस कैंपेन इज रियली रियली रिमार्केबल बिकॉज वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इट इज जस्ट नॉट द गवर्नमेंट विच हैज टू डू दिस, इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन where we all must be aware of the consequences of pollution and b how we can mitigate those risks. ye jo product aap mere piche dekh rahe ho isko filter cube bolte hain, ye forced air circulation ke technology se istemal kiya jata hai, isme hawa aati hai force ki jati hai, jo hard koi bhi equipment ka hai wo filters, aur man and hamel ke paas jo filters ki technology hai, jo filters kis tarike se ban sakte hain from media to their coating to their layering is all the technology they have developed over 85 years and not only developed they have also tested it across the globe. to ye jo technology hai koi nayi nahi hai jo ki bahar ki hawa ko saaf karti hai, ye road ki dust ko dekhti hai, smoke ko dekhti hai, uske ilawa kuch jo gases hain jaise NO2 hai ya SO2 hai jo ki harmful hoti hain, ye usko bhi capture karti hai aur ye technology IIT Delhi ne bhi validate kari hai। और ये तब करी है जब 2 महीने सितंबर से नवंबर तक 2024 में इन द पीक पोल्यूशन पीरियड हमने एक स्कूल जो IIT का अंदर है प्रमाइसेस में उसको पूरा प्योर अपने इक्विपमेंट लगाया था और पूरे के पूरे हवा को साफ किया था। 60-70% की रिडक्शन आ जाती है इससे, जिससे कि एक नॉर्मल सिटीजन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सारा सामान जो इसके अंदर लगता है वो चाहे इंजीनियर दिल्ली जर्मनी में हुआ है लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है, असेंबल इंडिया में हो रहा है, इससे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत रीजनेबल हो जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और सर्विसिंग भी बहुत बढ़िया हो जाती है। देयर इज़ नो एक्सपेरिमेंटेशन गोइंग ऑन, देयर इज़ नो सच थिंग दैट वी हैव कम अप विद अ न्यू इनोवेशन, वी कैनॉट अफोर्ड अ न्यू इनोवेशन, वी आर फाइटिंग अ वेरी वेरी रियल प्रॉब्लम एंड वी हैव टू एड्रेस द रियल प्रॉब्लम बाय द रियल सोल्यूशन विच विल बी। In my opinion, this is not an exercise that you could carry for scientific development. It is an exercise that you have to carry keeping the health of the citizens in mind.
1: I am Priyanka Manocha, founding team of MRH Technologies Private Limited, and on my right is Pranav Kaushik from our partner company Man and Hamel, and he is Steven, another employee colleague from Man and Hamel. So together we bring to you the pollution ka solution that you see behind us, which is called as Filter Cube. Mother of a 9-year-old daughter, and she is today living in Delhi and smoking equivalent to 80 cigarettes a day. Mere bacche ka school band ho jata hai jab pollution badh jata hai, most of the time usko ghar pe apna padhai karna hota hai, aur ye jo uske early learning years hai jo uske shape kar rahe hai personality mein, उस वजह से उसको अपना घर पे अधिकतर टाइम बिताना होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टुडे व्हेन आई स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ यू, आई मे अपीयर टू यू एज अ यंग पर्सन, बट माय इनर हेल्थ टुडे हैज डिटेरियोरेटेड टू अ लेवल दैट आई हैव लॉस्ट 12 इयर्स ऑफ माय लाइफ।
2: इस एक मशीन से जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 17,500 मीटर क्यूब ऑफ क्लीन एयर एवरी आवर डिलीवर करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट इन लीटर्स और इफ आई वॉन्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ इट, एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जितनी हवा भर सकती है उतनी हवा हर घंटे ये एक मशीन क्लीन करके एरिया में डालती है। तो ऐसी मल्टीपल मशीन्स जब हम यूज करते हैं, सो वॉट वी ट्राई टू डू एक हम एक क्लीन एयर जोन क्रिएट करते हैं उस एरिया के लिए, ताकि वहां का जो लोकलाइज पोल्यूशन है वो लोगों के ब्रीदेबल लिमिट्स में आ जाए।
3: ये डिवाइस कितनी इंटेलिजेंट है, जब बारिश होती है दिस डिवाइस स्विचेस ऑफ, मीनिंग व्हेन इट रेन्स वी डोंट वांट द एयर प्यूरिफायर्स टू बी वर्किंग, सो द डिवाइस स्विचेस ऑफ ऑन इट्स इटसेल्फ व्हेन इट्स रेन्स एंड ऑल्सो व्हेन द रेन स्टॉप्स द डिवाइस स्विचेस ऑन इट्स ओन। ये डिवाइस में कई सारे ऑप्शन है, लाइक वी ऑल्सो हैव अ नाइट मोड, मीनिंग एट नाइट व्हेन वी डोंट हैव एनी डेंस पॉपुलेशन अराउंड वी कैन ब्रिंग डाउन द speed of the fan to around minimal where we don't need much clean air coming out of the system. ये भी है, it does all on its own and also अपने पास एक centralized dashboard रहेगा, meaning when we have 100 installations at different places, Connaught Place A block, B block, C block, कई सारी area में हम लगा सकते हैं, तब हम एक area में कैसा perform कर रहा है उसका भी dashboard हम दे सकते हैं। We can give your data on every product level, zone level and also as a city level.

0: कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इतनी सारी भाषाएं होना है, अपने साथ हर भाषा एक इतिहास, लोक परंपरा और जीवन दृष्टि को लेकर चलती है, जो हमारी नई पीढ़ी के संस्कार को भी आगे बढ़ाती है। यही भाषाई बहुलता भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त बनाती है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती है, हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने जन जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचार को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी

0: CSU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: देखिए, कुछ सांकेतिक चीजें भी होती हैं। आपने देखा ना, जैसे यूएई और ईरान की बातचीत ब्रिक्स में हुई कि नहीं हुई। वहां युद्ध भी हो रहा है, आपस की तो दूरियां भी हैं, कष्ट भी है एक दूसरे से, लेकिन बातचीत तो करी है। और बातचीत में कुछ सकारात्मक जो संदेश मिले हैं, जो संकेत मिले हैं, उनका भी सबने स्वागत किया है। तो ऐसा होता है जब कहीं पर अनबन हो जाती है और हम लोगों को एक दूसरे से कुछ कुछ कारणवश हमको दूरी बनानी पड़ती है, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो सब्सटेंटिव होती हैं, कुछ सांकेतिक होती हैं, लेकिन संदेश देने की आवश्यकता होती है कि संदेश कैसे दिया जाए। अब ये अगर क्रिकेटिंग बॉडी ने ये माना है, ये स्वीकार किया है कि इसको संदेश देने की आवश्यकता है और हम ऐसे संदेश देंगे, तो उस पर और क्या कहा जा सकता है। यही कहा जा सकता है कि उनका अपना निर्णय है और उचित निर्णय होगा, सोच समझ के किया होगा।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
2: एवरी स्टोरी फाइंड्स अ प्लेस, एवरी वॉइस गेट्स अ प्लेटफॉर्म, एवरी साइड हैज इट्स से। Your channel for every headline. Prime Team on India Today, India's only democratic newsroom.

0: Spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
2: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
1: इसीलिए सेनको इंडिया का
5: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
2: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार, अटूट भरोसा।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today, India's only democratic newsroom.

0: पहले सिया आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद आप ठीक हैं? एनी इंजरीज?
1: हाँ, मतलब मेरे को मेरी नीज में इंजरी आई है एंड मेरी पूरी बॉडी में लाइक बॉडी पेन है. मेरा बैक में और लेग्स में थोड़ा मसल पुल हुआ है. सो अभी मतलब फिजिकली आई एम स्टिल रिकवरिंग एंड
0: अभी मैं ठीक
1: हूँ. हाँ,
0: यू आर ओके अदरवाइज? मैं ठीक हूँ.
1: यस यस, आई एम फाइन.
0: आप ठीक है? बट व्हेन यू हियर सिया दी, व्हेन यू हर्ड टुडे दैट द पर्सन हु hit you in that car has been arrested, what was your first feeling? Because he had been he had virtually run away from the law. He was finally arrested today. What was your first feeling when you heard ki he's been arrested?
1: हाँ सी, मुझे मीडिया के ही सोर्सेस से पता चला एंड कि वो अरेस्ट हुए हैं. एंड सी, मेरा तो कितना इतना कोई लाइक कोई शॉकिंग इतना रिएक्शन नहीं था. किसी ने किसी को इंटेंशनली हिट करके और इतनी तेजी से हिट करके कि किसी की इंसान वहां पे ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी. तो अगर ऐसा इंसान उस इंसिडेंट के बाद भाग जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके आती है, तो ऑब्वियसली उस इंसान ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसलिए उसको अरेस्ट करा है. एंड अरेस्ट करना ही एक सेफ एक्शन नहीं होता. This is the first step, I think so, जो हुआ है. एंड इसके बाद भी जब तक उनको कोई मतलब सजा नहीं मिल जाती, उनको और उनके साथ के तीन साथियों को, तो तब तक मैं नहीं मानूंगी कि कोई मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है.
0: बट ये मुझे बताइए, एंड आई विल देन कम टू योर फादर, ये बताइए आज जब या उनका लॉयर कहता है नो इट वॉज सिया हु वॉज ड्राइविंग रैशली, शी केम इन द वे, I had nothing to do with it. I actually tried to avoid hitting her. क्या कहेंगे? सिया,
1: कुछ है पापा?
0: सिया, you want to respond?
1: आप मुझसे
0: ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ. Then I'll come to your father.
1: So जब उनके lawyer, okay, आप मुझसे पूछ लीजिए. जब उनके लॉयर से मैं यह बयान सुनती हूँ तो मुझे बहुत देखिए हंसी भी आती है और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है. मतलब कैसे वो ये चीज डिनाई कर सकते हैं कि उनकी गलती नहीं थी, और कैसे वो अपने क्लाइंट को सेव कर सकते हैं. जो आज पूरे देश भर में जो वीडियो चल रहा है कि कैसे इंटेंशनली वो मुझे फर्स्ट लेन से एकदम तेजी से अपनी गाड़ी लाके थर्ड लेन में आके मुझे इंटेंशनली हिट करके जाते हैं, मैं पूरे रोड पे काफी दूरी तक घिसटते हुए जाती हूँ. मतलब आज हर जगह से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, एंड दूसरी जगह वो अपने क्लाइंट को कैसे सेव कर सकते हैं. तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि कैसे वो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं ये सारी मीडिया पे.
0: रोशन चौहान, आप अपनी बेटी की कहानी सुन रहे हैं, गुस्सा आता है कैसे देखते हैं? बिकॉज शी हैज बीन इन अ वे, कुछ लोग कहते हैं आपकी, जब आप सुनते हैं कि सिया की गलती है, जिस तरह से लॉयर और जो अक्यूज्ड है कहते हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से एक तरह से आपके बेटी को टारगेट किया गया है, बल्कि कोई माफी नहीं मांग रहा उनसे?
2: जिस प्रकार से उनके लॉयर, जी, वो तो अपने गिल्टी महसूस कर ही नहीं रहे ना. मैं तो मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा, और जिस प्रकार से हमारी गाड़ी पे हमारा कैमरा लगा हुआ था और ये जो घटना उसके अंदर आ गई और वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चल गई, अगर वहां पे कैमरा नहीं होता और वो व्यक्ति हिट करके चला जाता, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं अगर वो आज पकड़ा नहीं जाता तो कल कहीं ना कहीं अपने गांव की चौपाल पे बैठ के अपने चार दोस्तों के साथ इस चीज का मजाक उड़ा रहा होता और दोस्तों से कहता कि मैंने आज एक बाइक वाले राइडर को टक्कर मारी और वो इस प्रकार से गिरा और मैं यहाँ बैठा हूँ. तो ये जो घटना हुई है ये मामूली घटना नहीं है, और जिस प्रकार से मैंने उसकी एक रील देखी थी, वो बोल रहा था मेरे को पता ही नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की, और जिस इंसान को ये भी ना दिख रहा हो और वो दूसरे की मांगी हुई गाड़ी, अपने दोस्त की मांगी हुई गाड़ी दो दिन से लेके चला रहा था, और इस प्रकार से गाड़ी मंगा के चला रहा था, और जिस प्रकार से उसने हिट करा है कि रील में कह रहा था कि भाई यू टर्न आ रहा था तो मैंने ऐसे काटा, जबकि यू टर्न के अंदर पॉइंट ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को स्लो करोगे, ना कि आप अपनी गाड़ी को रेस दोगे।
3: And Delhi airport witnessed chaotic scenes after two Delhi-Dubai flights were delayed due to operational reasons. Passengers staged a sit-in protest. One flight was delayed by over 25 hours before finally taking off, while the other flight was delayed by nearly 18 hours and was further rescheduled to Wednesday. Passengers stranded at the airport staged a sit-in and chanted SpiceJet Chor Hai slogans. Sources say no SpiceJet staff were initially present to address the passengers. Not only this, the passengers also entered into an argument with the airport official, who later objected to passengers taking videos. The official told the passengers to delete the videos or else they won't be allowed to board the flight. SpiceJet later released a statement saying both flights were delayed due to operational reasons, and the airline apologized and said it deeply regretted the inconvenience caused to passengers.

0: On the ground, devotees have mixed opinions on the issue.
1: अगर डीजे का किसी को तकलीफ हो रहा है, बूढ़ों को, बच्चे को, तो वो लिमिट में होना चाहिए. जितना लिमिट है उतना में बजाओ, मजा करो और अपना अपना काम करो.
2: हम लोग सब लिमिट में करते हैं, इसीलिए हम लोग को कोई कुछ नहीं बोल सकता. हम लोग बराबर टाइम में सब लिमिट में करते हैं.
3: नहीं, कॉटन वगैरह सब केयर किए मैंने. पापा सब ख्याल रखेंगे, कुछ नहीं होगा.
0: Ganesh mandals in Mumbai can use loudspeakers and amplifiers from 6 a.m. to midnight on four designated immersion days, September 15th, 18th, 19th and 25th. The High Court in August 2016 had directed the implementation of the Noise Pollution Regulation and Control Rules of 2000. According to that order, the sound limit has to be kept below 60 decibels in residential areas. With Mustafa Sheikh and Omkar Wable, Bureau Report, India Today.

0: On the ground, devotees have mixed opinions on the issue.
1: अगर डीजे का किसी को तकलीफ हो रहा है, बूढ़ों को, बच्चे को, तो वो लिमिट में होना चाहिए. जितना लिमिट है उतना में बजाओ, मजा करो और अपना अपना काम करो.
2: हम लोग सब लिमिट में करते हैं, इसीलिए हम लोग को कोई कुछ नहीं बोल सकता. हम लोग बराबर टाइम में सब लिमिट में करते हैं.
3: नहीं नहीं, कॉटन वगैरह सब केयर किए मैंने. पापा सब ख्याल रखेंगे, कुछ नहीं होगा.
0: Ganesh mandals in Mumbai can use loudspeakers and amplifiers from 6 a.m. to midnight on four designated immersion days, September 15th, 18th, 19th and 25th. The High Court in August 2016 had directed the implementation of the Noise Pollution Regulation and Control Rules of 2000. According to that order, the sound limit has to be kept below 60 decibels in residential areas. With Mustafa Sheikh and Omkar Wable, Bureau Report, India Today.

0: in places where there's lack of information, a lot of individual consumers end up paying the extra charge. So that is something the government will have to be careful about in order to ensure the right communication is passed on.
1: Okay. Karishma Asudani joining us with that piece of breaking news right at the very top. Appreciate you joining me here on the news today. Okay, let's turn from there to the big story that we've been tracking over the last couple of days. Remember, a viral hit-and-run video over the weekend has now led to an arrest in Gurugram. Police have arrested the alleged driver, Kalyan Baisla, from Rajasthan, and booked him for attempted murder, stalking and insulting a woman's modesty. The video had shown how the driver had knocked over a biker, Shivani Chauhan, who claims she survived a deliberate attempt on her life. Arvind Ojha now reports on that case, which has become a major test once again for hit-and-run cases. Take a look.
2: 2 days after the hit-and-run video posted by biker Shivani Chauhan went viral, Gurugram police finally swung into action and on Tuesday arrested the car driver. Kalyan Baisla was picked up from Dausa in Rajasthan and brought to Gurugram. The police have booked Baisla for attempt to murder, stalking and outraging the modesty of a woman.
3: ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्गुमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की. विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे.
2: शिवानी चौहान, हु आल्सो गोज बाय द नेम सिया, ब्रोक हर साइलेंस. शिवानी सेज शी सर्वाइव्ड a bid on her life, but will take some time to overcome the trauma.
4: हम बार-बार bike तेज कर रहे थे, slow कर रहे थे, और हम इनको pinch कर रहे थे. वो तो I think so. मेरी पूरी video में show हो रहा है.
2: She rejected attempts by Baisla to shift the blame for the hit and run and recounted the horror she faced.
4: तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है और उसमें पीछे भी दो लोग हैं क्योंकि गाड़ी के शीशे सारे काले से वो एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं तो मुझे डर था कहीं टक्कर मार के मुझे गिराना थे. क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर है ये तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस लड़के के अगेंस्ट.
2: Baisla, who claims to be a former Kabaddi player, had tried to defend himself earlier.
5: ये बार बार आगे जा रहे थे फिर स्लो कर लेते थे. ठीक है जी, मैं बताता हूँ कि क्या मैं मतलब लड़कियों की मतलब उनको ठोकता फिर रहा हूँ बाइकों को ठोकता तो पीछे से ठोक बचाई मैंने बहुत कोशिश करी बचाने की. इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़ बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हैं उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी.
2: रोड एक्सीडेंट्स किल्ड मोर देन 1.8 लाख पीपल इन इंडिया लास्ट ईयर रफली 500 अ डे. द गुरुग्राम हिट एंड रन इज अ ग्रिम रिमाइंडर of the risk motorists, riders of two-wheelers face on the roads. With Arvind Ojha, Anshul Singh, Neeraj Vashisht and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.